0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

107 FM पर मैं शिवम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रातः के 6:02 हो रहे और प्रतिदिन की तरह विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रथम पुष्प अर्पित करते हैं और आज की भक्तिभाव का कार्यक्रम पुष्पांजलि के साथ दिन का शुभारंभ करते हैं।

किसी पात्र की तरह नहीं है जिसे तथ्यों, मतों या उधार की बुद्धि से भर दिया जाए, अपितु मन तो एक जीवंत अग्नि है जिसे जिज्ञासा, चिंतन और सत्य के प्रेम से सदैव प्रज्वलित रखना चाहिए।

घर की कल्पना एक सूखी लकड़ी और लकड़ी के टुकड़े के रूप में करें। जैसे एक चिंगारी उस लकड़ी को छूती है तो आग पकड़ लेती है और हमें गर्मी देती है और प्रकाश भी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार मन को भी जिज्ञासा, जुनून और खोज की ज्वाला से प्रज्वलित करते रहिए।

ज्ञान जब केवल तथ्यों का संग्रह बनकर रह जाता है तो वह बोझिल और निष्क्रिय निर्जीव हो जाता है, पर जब वही ज्ञान समझ को जन्म देता है तो वह बुद्धि का रूप ले लेता है, जो सदैव जीवंत, प्रकाशमान और अनंत रहता है।

को व्यस्त रखना ही ईश्वर का मार्ग है। श्रम जिसे लोग कठिन समझते हैं, असल में वही ईश्वर का मार्ग है, क्योंकि परिश्रम से ही ईश्वर मिलता है, जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और आपको ज्ञात हो कि कोई काम बोझ नहीं होता है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद होता है।

शिरोमणि बलवान जब चले, श्री राम जी का करते हुए ध्यान जब चले, और रावण का तोड़ने को वो अभिमान जब चले।

पहुंच करके दिए वाटिका उजाड़, अक्षय कुमार को दिए धरती पे वो पछाड़। आया जो सामने दिए ककड़ी के जैसे फार, दुश्मन के घर में

व्यस्त मन कभी प्रलोभन से ग्रस्त नहीं होता, यह कमजोर मन वालों के लिए दोहरे लाभ वाला होता है। व्यस्त लोग जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, हमेशा भक्ति भाव में लगे रहते हैं, वे सबसे ज्यादा खुशी रहते हैं।

पुष्पांजलि से आप सभी से आरती हूं, पर उनका नाम जिनका नाम के बिना बड़ा से बड़ा यज्ञ, बड़ी से बड़ी पूजा अधूरी होती है, वो नाम का जयघोष जिनका नाम लेने भर से जीवन के सारे दुख क्लेश कट जाए, भोलेदानी महाकाल बाबा विश्वनाथ का नाम। जुड़िए मेरे साथ और कीजिए शिव को नमन, और मेरे साथ आंखें बंद करके बोलिए एक बार, ओम नमः पार्वती पते हर।

और खूबसूरत दिन, एक खूबसूरत एहसास, एक प्यारी सी मुलाकात, और इस मुलाकात को बनाता खास आज का दिन। जी हाँ, आज है बैसाख मास की 29वीं तिथि, शक संवत 1948 यानी दिन मंगलवार, 19 मई सन 2026। आज पूर्णिमा हाजिर है स्टूडियो में मॉर्निंग शो के साथ, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग।

ये सॉन्ग आप सिर्फ इस मॉर्निंग शो में ही नहीं बल्कि पूरा दिन एंजॉय करने वाले हैं हमारे तो चलिए जानते हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में। पुराने फिल्मी नगमों को एंजॉय करेंगे आप 8:30 पर सुरों की पुरानी महफिल इस प्रोग्राम के साथ। 90s का वो दौर और उस दौर की सुबह की बदली तस्वीर के साथ होंगे हम, जहां बदली है रंगत आज के वक्त के साथ। ये खास प्रोग्राम रसबहार एंजॉय करेंगे आप ठीक 9:00।

दरअसल हमारे दिल का जो हाल है वो आप सब जानते हैं। ये वो टाइम है, वो प्रोग्राम है जहाँ एक जगह आपको मिलती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, एंटरटेनमेंट के साथ।

जी हाँ, तो कानपुर की खास बात सोशल मीडिया के साथ। सोशल मीडिया की दुनिया में आज कानपुर ट्रैफिक पुलिस का एक खास संदेश चर्चा में है।

एक खास संदेश। जी हाँ, कानपुर नगर ट्रैफिक पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाने की जानकारी साझा की है। पोस्ट में बताया गया कि प्रमुख चौराहों पर ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग अभियान चलाया गया और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। तो कानपुर, अगर रात की मस्ती हो तो सुबह की जिम्मेदारी भी याद रखे। सुरक्षित ड्राइव कीजिए, क्योंकि कोई आपका इंतजार घर पर भी कर रहा है। हमारा अगला ट्वीट है, पीएम मोदी की हाल की विदेश यात्रा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विजन से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया पर चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश की, जिसमें भारत की बदली टेक्नोलॉजी और दुनिया में मजबूत होती पहचान की झलक दिखाई दी। अपने हालिया एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने यूएई के दौरे के दौरान भारत और यूएई के बीच टेक्नोलॉजी, एआई, ऊर्जा और इनोवेशन को लेकर हुए अहम समझौतों की बात साझा की। जी हाँ, संदेश साफ है दोस्तों, अब भारत सिर्फ अपने सपने नहीं देख रहा बल्कि दुनिया के साथ मिलकर भविष्य तैयार कर रहा है। और हाल ही में अभिनेता विकी कौशल ने सड़क सुरक्षा अभियान 2026 से जुड़कर लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का संदेश दिया। उन्होंने एक कैंपेन में कहा कि एक सही फैसला किसी की जान बचा सकता है। जब सेलिब्रिटीज भी रोड सेफ्टी को लेकर आगे आ रहे हैं तो हमें भी हेलमेट और सीट बेल्ट को सिर्फ रूल्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। एज हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरटेनमेंट को बनाए रखने की पहुंचा रहे हैं, निभा रहे हैं आप तक। जी हाँ, 102.2 की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, जहाँ आरजे पूर्णिमा है आज आपके साथ।

102.2 की साउंड वेव के साथ कनेक्ट हैं आप, और ये कनेक्शन है और भी प्यारा जब हम और आप हैं साथ। और साथ है अतीत के आईने में आज के दिन की खासियतें। तो चलिए जानते हैं और पलटते हैं इतिहास के पन्नों को।

इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया आज का दिन, जब 1743 में जिया पियरे क्रिस्टीन ने 1743 में सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित किया। 1971 में भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। आज के दिन यानी 19 मई चार सदियों की दास्ता और संघर्ष के बाद 2002 में पूर्वी तिमोर दुनिया के नए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। आज का ये दिन भारत में भारत भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन की खासियतों को जान लेने के बाद अब है बारी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग आप तक पहुंचाने की। रेनबो लिसनर्स मॉर्निंग रूटीन के साथ यूनियन रही है 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर, जहां एंजॉय कर रहे हैं आप इस वक्त ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
3: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
4: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
3: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
4: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
3: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
5: Hi, this is Udit Narain. You are listening 102.2 FM Rainbow, शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को।

जी हाँ, तो चलिए हमारे साथ देश विदेश की इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइंस के साथ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को कल यानी सोमवार को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी का ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। एक दिन पहले ही मोदी जी को स्वीडन के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और स्क्वाड्रन लीडर सानिया बनी है आईएएफ की पहली महिला फ्लाइंग

इंस्ट्रक्टर। और इन अपडेट्स के बाद अब बारी है हमारे प्रोग्राम में एक ब्यूटीफुल ट्रैक आप तक पहुंचाने की, तो कहीं नहीं जाना है। रेनबो लिसनर्स, रहना है ट्यून इन अपने मॉर्निंग रूटीन कामों के साथ और सुनते रहना है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

सो गाइस, अब बिजली बिल जमा करना हुआ आसान। जी हाँ, कानपुर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता अब अपना बिजली बिल 10 आसान किश्तों में जमा कर सकेंगे। और खास बात यह है कि इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही IIT कानपुर के स्टार्टअप ने ऐसा स्वदेशी ड्रोन तैयार किया है जो दुर्गम इलाकों में 200 किलो तक सामान पहुंचा सकेगा। सेना के लिए ये ड्रोन गोला बारूद, मेडिकल सामान और जरूरी उपकरण पहुंचाने में मददगार साबित होगा। और दोस्तों, बढ़ते टेम्परेचर से सिर्फ हम नहीं बल्कि पशु पक्षी सब हो रहे हैं बेहाल। और इसे देखते हुए कानपुर चिड़ियाघर में राहत देने के लिए बाड़ों में स्प्रिंकलर, फॉग और बर्फ से ठंडक का खास इंतजाम किया गया है। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बारी है ब्यूटीफुल ट्रैक को आप तक पहुंचाने की। ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर के साथ।

जी हाँ, और अब हमारे इस मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर में आ चुका है वक्त खेल की दुनिया से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। सो माय डियर लिसनर्स, आईपीएल का रोमांच बढ़ता जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ की रेस में अपनी उम्मीदें मजबूत कर ली हैं। वहीं ईशान किशन ने शानदार 70 की पारी खेली और जीत के साथ गुजरात टाइटंस को भी प्लेऑफ का टिकट मिल गया है। वहीं आज लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान को हर हाल में जीत चाहिए, क्योंकि प्लेऑफ की उम्मीद अब सिर्फ जीत पर टिकी है। एक और खास खबर, और भारतीय मूल के ब्रिटिश गोल्फर आरोन ने पीजीए चैंपियनशिप जीतकर नया इतिहास रच दिया है। शानदार प्रदर्शन के नाम जी हां के साथ ही उन्होंने विश्व रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई और भारतीय मूल के खिलाड़ियों का नाम रोशन कर दिया है। तो हम भी हमारे आज खेले जाने वाले मैच के लिए एक देते हैं ढेर सारी बेस्ट विशेस, और जिन्होंने जीत हासिल की है ना उनके लिए ये हम प्यारा सा ट्रैक प्ले करते हैं। ट्यून इन रेडियो रेनबो कानपुर की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ, जहां प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

का हाल, बाहर के मौसम का हाल जो भी हो, पर हमारे स्टूडियो से हम पहुंचा रहे हैं दिल के मौसम को कूल रखने वाले सॉन्ग ट्रेन मकानपुर से। तो चलते हैं और जानते हैं मौसम का हाल। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत और भारत मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 42%, हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। जी हाँ, वेल वेदर रिपोर्ट के बाद इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का है टाइम करीब। लास्ट ट्रैक को सुनने से पहले सुनिए ये प्यारी सी लाइंस। हर सुबह कुछ कह जाती है, हर धड़कन एक गीत सुनाती है, जो मुस्कुरा कर दिन की शुरुआत करते हैं उसकी दुनिया खुद ब खुद खिल जाती है। सो माय डियर लिसनर्स, इसी मुस्कान और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं और जी पूर्णिमा आपसे लेती हूँ इजाजत। एंजॉय द ट्रैक और इसी के साथ हम ले चलेंगे आपको हमारे दिल्ली केंद्र देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: नमस्कार, प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से

0: मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर

0: हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
1: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के

0: जिनकी यहाँ उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहाँ उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर

0: भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. एंड इन आईपीएल क्रिकेट सनराइज

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो चुके हैं आप। 8:30 का वक्त हो चला है, लेकर जाने वाला है ये वक्त आपको कुछ पुराने एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ, जहां रोमांस भी है उस वक्त का दिलकश अंदाज भी है। चलिए चलते हैं सुरों की पुरानी महफिल के साथ।

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो चुके हैं आप, प्रोग्राम सुन रहे हैं सुरों की पुरानी महफिल, और इस महफिल का ये पहला गीत आपने सुना मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाजों में, जिसके लिरिक्स लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब ये गीत सुनते हैं खुददार मूवी से, कुमार सानू की आवाज में और अलका याग्निक की आवाज में, राहत इंदौरी का लिखा गीत, अनु मलिक का संगीत।

102.2 की फ्रिक्वेंसी को ट्यून किया है आपने, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरों की पुरानी महफिल। इस प्रोग्राम को लेकर मैं आरजी पूर्णिमा हूं आपके साथ। और आइए अब सुनते हैं राजा बाबू फिल्म का ये सॉन्ग अभिजीत की आवाज में, जिसे लिखा समीर ने और संगीत दिया आनंद मिलन ने।

और अब सुनने वाले हैं आप सुरों की पुरानी महफिल में विजय पथ मूवी का ये सॉन्ग, जिसे लिखा जमीर काजमिल ने, संगीत दिया अनु मलिक ने और अपनी आवाजों से सजाया कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

इस प्रोग्राम का ये अगला गीत हम आपके हैं कौन इस फिल्म से, जिसके गीत के बोल लिखे देव कोहली ने और संगीत में पिरोया राम लक्ष्मण ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर की।

सुरों की पुरानी महफिल का ये आखिरी सॉन्ग हम अब तक पहुंचा रहे हैं उदित नारायण और अभिजीत की आवाज में, राहत इंदौरी का लिखा और अनु मलिक के संगीत से सजा। फिल्म का नाम मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और इसी के साथ आरजी पूर्णिमा को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की, पर आप ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर के साथ।

एक बार फिर से स्वागत आप सभी लिसनर्स का हमारी इस म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी पर, जहां एक प्यारी सी स्माइल के साथ मैं हूं आपकी अपनी आरजे पूर्णिमा। और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, जहां हर सुबह बनती है थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और दिल के करीब।

जी हाँ, और हमें मिला आपका साथ, फ्रेंड मुकानपुर का साथ, और दिल के करीब न जाने कितने रिश्तों का एहसास। जैसे हर सुबह, और दोस्तों आज की सुबह जरा खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे दो दौरों की। एक वो जब सुबह अलार्म से नहीं माँ की आवाज से खुलती थी, और एक आज की जहाँ आँख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन चमकती है। तो चलिए निकलते हैं यादों की उस गली में जहाँ 90s की सुबह में थी अखबार की खुशबू, रेडियो की मधुर धुन और आंगन में रखी चाय की प्याली। तो क्यों ना जो धुन जो सुर हमने सुने।

की मधुर धुन और आंगन में रखी चाय की प्याली। तो क्यों ना जो धुन जो सुर हमने सुने महसूस किए आज फिर से उन्हें सुने एक बार फिर से एक अलग अंदाज में।

जी हाँ, सॉन्ग के ओरिजिनल ट्रैक में कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों ने जो दिल तब चुराया था, आई एम श्योर आज भी दिल चुराया होगा अरुंधति रॉय की आवाज में इस ट्रैक के बदले अंदाज ने। और इस बदलते अंदाज को आपसे रूबरू करा रही हूँ मैं पूर्णिमा इस प्रोग्राम रस बहार में। That's why आज की थीम 90s की सुबह वर्सेस आज की सुबह। 90s का दौर वो दौर था जब हवा में एक अलग ही ताजगी थी, गलियों में पेड़ों की छांव, छतों पर बैठी गौरैया की चहचहाट और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज। पर आज शहर

शहर तेज हो चला। सड़कों पर गाड़ियों की शोर बढ़ गया। पेड़ों की जगह बड़ी बड़ी इमारतें नजर आने लगी। हवा में पहले जैसी ठंडक और साफपन थोड़ा सा कम महसूस होता है और मौसम पहले से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए। कहीं तेज गर्मी, कहीं अचानक बारिश, कहीं धुंध और पॉल्यूशन। पर गांव की तस्वीर में आज भी हम वो सुकून, वो ताजगी और अपनेपन के रंग साफ देख पाते हैं। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम रसबहार में वक्त एक रंग में रंग जाने का।

श्रुति राणे की आवाज के संग थिरकते हैं हम और आप। आई एम श्योर जब एंजॉय किया हमने आपके साथ ये ब्यूटीफुल ट्रैक। और ऐसे इस प्रोग्राम को और भी सारे प्रोग्राम्स को एंजॉय करने के लिए आपको रखना है अपना खास ख्याल। जी हाँ, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है ना, वो अपना रंग दिखा रहा है। टेम्परेचर बाहर का जो भी हो, पर हमारे स्टूडियो से हम पहुंचा रहे हैं आप तक कूल वाइब्स। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट, जहां इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम रसबहार।

वेल, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे हर पल एंजॉय करें और इसमें रेनबो कानपुर है हर पल आपके साथ। और आज है बात 90s की सुबह, और आज की सुबह की तो इस दौर की सुबह में एक अलग ही सुकून था, न जल्दी रील्स देखने की, न नोटिफिकेशंस की आवाज़।

सुबह सुबह घरों में दूरदर्शन की धीमी आवाज, रसोई में छौंक की खुशबू और कहीं न कहीं रेडियो पर बजता कोई प्यारा सा गीत। जहां बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हुए कार्टून सॉन्ग गुनाते थे, तो पापा जी अखबार पढ़ते हुए देश दुनिया की बातें सुनाते थे। एंड नाउ हम सुनवा रहे हैं आपको एक और ब्यूटीफुल ट्रैक। वन जीरो पॉइंट टू की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट है, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है रसबहार, पूर्णिमा है आपके साथ।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
4: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
3: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4-5 हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
5: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जो जगाऊं अगर तुम कहो।
4: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
3: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
4: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4-5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
6: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।

जी हाँ, खुला आसमां, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हर कोई इस खुले आसमां में उड़ जाना चाहता है। प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप रजबहार, और आज की सुबह देखिए ना, अलार्म नहीं रिंगटोन बजती है और आंख खुलते ही हाथ मोबाइल तक पहुंच ही जाता है, और साथ ही आंख खुलते ही उठते हैं कुछ दिमाग में ये सवाल कि बैटरी कितनी है, वाईफाई चल रहा है या नहीं, किसने किसने स्टेटस देखा, या मॉर्निंग वॉक पर लोग हैं कम पर ईयरबड्स हैं ज्यादा। चाय की प्याली पर अब अखबार की जगह सोशल साइट स्क्रॉल होती है, और इन सब के साथ साथ आज की सुबह की अपनी खूबसूरती भी है जनाब। आज लोग अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, ऑनलाइन दुनिया ने दूर बैठे लोगों को बहुत करीब ला दिया है। जी हाँ, वक्त बदला, सुबह का अंदाज बदला, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आज भी वैसी ही हैं। आज भी माँ सबसे पहले उठाती है, आज भी चाय की खुशबू दिल को सुकून दे जाती है, और आज भी ये खूबसूरत सॉन्ग सुबह खूबसूरत बना जाता है। नाइंटीज की सुबह में अपनापन थोड़ा ज्यादा था, और आज की सुबह में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा हैं। शायद सही बात यही है कि

वाल सुबह चाहे ट्रांजिस्टर वाली हो या स्मार्टफोन वाली, जरूरी ये है कि उसमें मुस्कान हो, अपनापन हो और थोड़ी सी पॉजिटिविटी हो, क्योंकि अच्छी सुबह पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है। सो माय डियर लिसनर्स, इसी खूबसूरत सोच और प्यारी यादों के साथ आरजी पूर्णिमा को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की। पर आप ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर के साथ, जहां संगीत भी अपना और बातें भी दिल वाली। और एंजॉय कीजिए हमारे प्रोग्राम का ये लास्ट ट्रैक। रखिए अपना खास ख्याल, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ आपसे विविधा में राग रंग प्रोग्राम के साथ।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

102.2 की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने और आइए अब विविधा में सुनते हैं प्रोग्राम राग रंग। शोभा गुर्टू की आवाज में ये दादरा।

और आइए अब सुनते हैं पंडित सीआर व्यास की आवाज में ये ठुमरी आए मोहनवा। और इसी के साथ आरजे पूर्णिमा को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम रागरंग को यहीं पर वाइंड अप करने की। मिलूंगी आपसे ठीक 11 बजे हमनवा प्रोग्राम में, आज मेरी हमनवा आरजे मालिनी के साथ।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा वहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इससे पहले 17 मई को स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया था। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य व बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम और सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात और व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखानों के सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव

कदम उठा रही है। वहीं कल एक प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की स्वच्छता और अविरलता बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने नदी में गिर रहे 6 प्रमुख नालों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को सभी नालों की शीघ्र टैपिंग, दूषित जल के शोधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जल निगम के अनुसार मंदाकिनी नदी के प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत से 10 MLD क्षमता की अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है। इस परियोजना में सीवेज का वैज्ञानिक ढंग से शोधन कर उपचारित जल ही नदी में प्रवाहित किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट से होगा। यह मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। गुजरात टाइटंस भी अंतिम 4 में पहुंच गई है, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पहले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: 100.7 FM रेनबो आपने ट्यून किया है, 10:05:29 हो रहे दोस्तों, और अब वक्त है सुपर हिट सॉन्ग्स का। तो अगले घंटे बैक टू बैक ट्रैक्स पे ट्रैक्स लेकर आई है आपकी सखी राखी। उम्मीद ही नहीं, यकीन है हमें कि इन ट्रैक्स को आप बहुत बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो सुनते रहिए 107 FM रेनबो, क्योंकि यही है धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

0: अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:36 हो रहे हैं दोस्तों, सुपर हिट सॉन्ग्स को यहीं पर करेगी वाइंड अप आपकी सखी राखी। लेकिन अगले प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में आपके साथ, हम जुड़ेंगे आपके ईमेल्स और फोन कॉल्स के जरिए। उसके बीच में होगा एक छोटा सा सॉन्ग और एक छोटा सा न्यूज ब्रेक, और उसके बाद फिर हम हाजिर होंगे। सुनते रहिए 100.7 FM रेडबो धड़कन लखनऊ की।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लिसनर्स हमसे जो कनेक्ट हैं, जो जुड़ चुके हैं हमनवा के साथ, उन सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में मैं आरजे पूर्णिमा हूं आपके साथ, और मेरे साथ साथ देने आ चुकी हैं स्टूडियो में आरजे मालिनी।
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई बहुत ही अच्छे होंगे मुझे मालूम है, लेकिन हाँ गर्मी से थोड़ा ज़रूर बेहाल हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म इन दिनों हो रहा है, एक दो दिन से, और बहुत ही ज़्यादा लू चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं बहुत सारे लोग।
0: मालिनी टेम्परेचर है जो बढ़ता ही जा रहा है, शायद दोपहर के टाइम ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा अगर हम घर से बाहर अपने आंगन तक भी जाते हैं ना, तो लगता है जैसे कि जो सूरज है ना वो बिल्कुल उसकी तपिश सीधा हमारी धरती पर आ रही है।
1: बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बात कही पूर्णिमा, अभी हम बाहर से ही आ रहे हैं और मैं देख रही थी कि ऑफिस का टाइम जब होता है तो सड़कों पे कितनी भीड़ होती है, लेकिन बिल्कुल काफी हद तक सड़कें जो है खाली मिली मुझे, तो मतलब लोग क्या करें, मजबूरी है इतनी ज्यादा, कहीं ना कहीं किसी तरह अपने या तो जल्दी ऑफिस चले जा रहे हैं, जैसे भी हो लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वाकई में गर्मी से बचने के लिए हमें अपना बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है ना वो सबसे बड़ी ज़रूरत होता है इस गर्मी में। थोड़ी थोड़ी देर में हमें प्यास लगती है, और बाहर निकले तो अपने साथ एक बॉटल लेकर हमें ज़रूर चलना चाहिए।
0: और सबसे अच्छी बात है कि बॉटल का जब आप चूज़ करें ना, तो प्लास्टिक की बॉटल को बिल्कुल अवॉइड करें, अपने साथ जो है स्टील की बॉटल रखें, और ध्यान रखें कि पानी की बॉटल आपको भूलनी नहीं है, ताकि आप अपनी केयर कर सकें, पूरा कवर अप करके खुद को चलें। और देखो इसी के चलते मालिनी हम सभी के मोबाइल फोन्स में रात में NDMA के मैसेज आए हैं हीट वेव अलर्ट के, तो इसीलिए है कि हम अपना पूरा ध्यान रखें, बहुत जरूरी हो तभी हम घर से बाहर।

0: निकले और 12 बजे से 4 बजे के बीच, तो भाई कहते हैं ना कि घर पर ही रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।
1: बिल्कुल, थोड़े से दिन कष्टों के काटने हैं हमें, क्योंकि अभी फिलहाल तो इस गर्मी से हमें निजात नहीं मिलने वाली है, ना लू से। हमें अपना अपनी सुरक्षा अपने हाथ से ही करनी है। और ऐसे सिचुएशन में ना, जब हम बाहर होते हैं तो पेड़ पौधे बहुत बड़ा सहारा होते हैं, तो कोशिश करिए कि आपकी जब बारिश का मौसम आए ना, जुलाई में बारिश हो, तो हमें एक पेड़ पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और उसका पेड़ बनने का इंतज़ार करना चाहिए। शायद कुछ हद तक आगे आने वाले समय में हमें इस तरह की गर्मी से काफ़ी हद तक मतलब हम बच सकेंगे, इस तरह की गर्मी से हमें नुकसान होने से सेफ रहेंगे हम।
0: बिल्कुल, क्योंकि रोड पर जब हम चलते हैं ना, तो बिल्डिंग्स के बन जाने से या फ्लैट्स के बन जाने से दूर दूर तक चलते चले जाते हैं मालनी, और कहीं हमें एक पेड़ नहीं मिलता,
1: नहीं
0: कि
1: मिलता।
0: हम रुक कर 2 पल सांस ले सकें। तो उससे बेहतर है कि हम खुद आगे कदम बढ़ाएं, और जो हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चला रहे हैं, एक पेड़ अभियान जो सबने चलाया, और जो
1: साथ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चल रहा है,
0: बिल्कुल,
1: तो उससे भी जुड़ सकते हैं। अपनी मेमोरी में एक पेड़ लगाएं, अपनी माँ के नाम, अपने फादर के नाम, किसी के भी नाम आप लगाइए और उसको, उसकी देखभाल करिए। बहुत अच्छा, मतलब एहसास बहुत अच्छा होता है। और आज बाकी रेडियो के माध्यम से हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जिससे आप बहुत अच्छी सी ताजगी महसूस करने वाले हैं।
0: बहुत सारे टॉपिक्स पर हम हर रोज आपसे बातें करते हैं, कनेक्ट होते हैं और बहुत सी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसी ही जानकारियों वाले प्रोग्राम के साथ हम, यानी मैं और मालिनी, आपके साथ जुड़ चुके हैं। और आज कुछ तो खास होगा मालिनी, जो
1: बिल्कुल खास होगा। देखो, अभी हमें बताने से कोई फायदा नहीं है ना, ये तो जब हम बात करेंगे तभी, लेकिन हाँ, हम टॉपिक शेयर जरूर करेंगे आपसे कि आज हम किस किस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे।
0: तो हम बात करने वाले हैं आपसे वर्ड पेयर प्ले डे के बारे में, साथ ही बच्चों में शब्दों के प्रति प्यार हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कि वो जो नन्हे मासूम बच्चे हैं वो वर्ड्स के प्रति एक जो लगाव है, नए शब्दों को सीखना और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब पर बहुत ही प्यारी सी बातें हमारी आपसे होंगी। साथ ही जयंती हम मनाएंगे नीलम संजीव रेड्डी की, और पुण्यतिथि भी है रजारी प्रसाद द्विवेदी जी की,
1: और आकाशवाणी के 90 वर्ष का सेलिब्रेशन भी होगा। कुछ लोगों की आवाजें आप तक पहुंचेंगी, उनके एहसास आप तक पहुंचेंगे कि वो रेडियो से कब से जुड़े हैं और वो आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और स्टार्टअप में भी बहुत अच्छी सी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, और रेसिपी हमारी जो है वो सरप्राइज है,
0: वो छोड़ देते हैं, आप सस्पेंस में रहिए। और साथ ही हमारे जो सवाल है आपसे, जिनका देना है आप जवाब, तो हमारा पहला सवाल है आपसे कि आप हमें बताएंगे कि आपके अपने पसंदीदा आरजे का नाम हमसे शेयर करेंगे, साथ ही रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने के इस जश्न में आप अपने क्या संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ये जरूर लिखकर भेजिएगा।
1: हाँ, और हमें मेल करिए, हमारा मेल आईडी है aarkansoemedia@gmail.com। तो हमें आपकी मेल का इंतजार रहेगा। फिलहाल एक कूल कूल सा सॉन्ग सुन लेते हैं, क्यों पूर्णिमा?
0: बिल्कुल।

0: बूंदों से बातें। और मालिनी, तुम्हारे प्ले के इस सॉन्ग के जरिए हमारे लिसनर्स ने कुछ पल के लिए सही पर इन बौछारों में जरूर इन बौछारों को महसूस किया होगा और दिल उनका जरूर खुश हुआ होगा,
1: और कहीं ना कहीं वो पुरानी यादों के दौर में भी पहुंच गए होंगे, जब होता क्या था गर्मियों में की छुट्टियां होती थी। देखो ना, बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं, तो वो होता क्या था, जब हम अपने एक यंग एज में थे तो उस वक्त हम लोग ग्रुप में जाते थे कहीं, जो तालाब होते थे या झरने होते थे वहां पे सुबह सुबह इन गर्मी के मौसम में डुबकी लगाते, तो पहले इतनी गर्मी भी नहीं होती
0: बिल्कुल। और मान ली कुछ ना सही, तो हम घर पर भी जब कभी पानी कोई भरता था तो रबड़ के आगे मतलब उसे उनकी बौछारों से खेलते थे, और हाँ, कितनी देर तक खेलते थे और वो खेलना कितना अच्छा था।
1: अरे यही गेम नहीं, शाम होते ही हम लोग बहुत सारी, देखो खो खो, कबड्डी और क्रिकेट और वो क्या बोलते हैं गेंदताड़ी
0: और ये सारे गेम ना हमें कहीं ना कहीं फिजिकली फिट भी रखते थे, और हमारा जो ये टाइम, हमारा जो हम आज बंद से गए हैं स्क्रीन में वो नहीं था, और हमारा जो दिल दिमाग था ना वो सब बिल्कुल दुरुस्त
1: हेल्दी रहता था बिल्कुल। मतलब हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते थे कि आज शाम होगी तो क्या। अच्छा, दिन में जब घर में होते थे ना तो हम लोग इंडोर गेम्स खेलते थे, कैरम बोर्ड है, लूडो है, चेस है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ बैठकर हमें एंजॉयमेंट भी देती थी और एक हमारे ब्रेन का जो है एक एक्सरसाइज भी होती रहती
0: बिल्कुल। और इंतज़ार होता था मालिनी की कब घड़ी जो है 5 बजे शाम की
1: और हम बाहर निकले,
0: मतलब एक ग्रुप के साथ पूरे बाहर निकल जाते थे। देखो आज भी लोग बच्चे जो हैं वो अगर छुट्टियां हो जाती हैं जब वेकेशंस के बाद शाम को निकलते हैं और फिर ग्रुप में खेलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो आज थोड़ी सी कम हो गई हैं वो पहले बहुत ज्यादा थी, और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट ये था कि वो ग्रुप में होने से एक प्यार मोहब्बत अपनेपन की भावनाएं भी थी और ये हमारी फीलिंग्स को स्ट्रांग भी बना रही थी।
1: और अभी देखो ना, लिसनर से हम लोग ने बहुत सारे पूछा है क्वेश्चन, उनकी मेल्स भी हमें शामिल करनी है, और अभी हम लोग बात कर रहे थे उसमें क्रिकेट की बात कर रहे थे।
0: और एक चीज और मान ली, जब ये सब चीजें खेली जाती हैं उसमें सबसे अच्छा होता है कि कोई चीटिंग नहीं करेगा,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल फेयर खेलना है, लेकिन जो आउट हो गया आउट निकल जाए, उसको दोबारा हमारे मतलब उस टीम में नहीं आना है, कोई चालाकी नहीं करनी है, कोई ऐसी दिमाग नहीं लगाना है कि आपने आउट होने के बाद भी किसी भी जरिए से आप उसमें अंदर आने की कोशिश करें, यानी कि पूरी तरह से वो जो गेम है वो फेयर होना चाहिए। और ऐसे ही दिन, एक खास दिन है आज, वर्ल्ड फेयर प्ले डे, इसका है यही उद्देश्य, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ कि वर्ल्ड फेयर प्ले डे यानी आज है ये दिन, और 19 मई को ये मनाया जाता है, और ये दिन खेलों में ईमानदारी, सम्मान, अनुशासन और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए ही समर्पित है।
1: बिल्कुल, देखो हम लोग बातों से कहां ट्रैक पर चले आए, मतलब एक अच्छे से टॉपिक को उठा लिया हम लोगों ने, वर्ल्ड फेयर प्ले डे।

0: मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि 2026 की खास जानकारी इससे जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 में आधिकारिक रूप से 19 मई को वर्ल्ड फेयर प्ले डे घोषित किया। 2026 इस दिवस का दूसरा वैश्विक आयोजन ये माना जा रहा है इस साल।
1: बिल्कुल, और इसका जो है मोटिव ये है कि खिलाड़ियों, कोच या युवा जो है वो निष्पक्ष यानी बिना किसी भेदभाव के खेल सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करें। और मान लीजिए जो दिन हम मना रहे हैं ना वर्ल्ड फेयर प्ले डे, इसमें ये शब्द फेयर प्ले इसका अपना कुछ ना मतलब है, बहुत ही गहरा मतलब है।
0: मुझे पता है, मैं बता दूं, फेयर प्ले का मतलब है केवल खेल के नियमों का पालन करना ही नहीं है बल्कि विरोधी टीम का सम्मान करना भी है, धोखाधड़ी और डोपिंग से दूर रहना, जीत और हार दोनों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना और टीम भावना और समानता को बढ़ावा देना या उसको महत्व देना।
1: क्योंकि भाई जब गेम है, दो टीम है, तो कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा, सबका एक रिस्पेक्ट है, सबके एक सम्मान है, सभी प्लेयर्स हैं, और कोई जब एक जीतेगा जो है, एक अगर हारेगा नहीं मान ली तो दूसरा जीतेगा कैसे,
0: सब जीत तो सकते नहीं।
1: बिल्कुल, तो ये आज के दिन ना कई अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन और स्कूल फेयर प्ले कंपेनियंस जो है चल रहे हैं और साथ ही खिलाड़ियों के प्रेरणादायक फेयर प्ले मोमेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी खेल भावना और सकारात्मक व्यवहार को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। और मान ली आजकल आईपीएल चल रहे हैं और देखो ना आईपीएल में भी ना इसका फेयर प्ले का बहुत ही एक खास मोटिव होता है। इस दौरान खेल पर यानी कि खेल के दौरान मैदान पर अनुशासन, शालीनता और अच्छी खेल भावना को बनाए रखना, और इसके लिए हम कई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें पहला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं
0: महेंद्र सिंह धोनी, इनका एक बेहतरीन, ये एक बेहतरीन उदाहरण है हम सबके लिए। धोनी हमेशा जो है ना शांत स्वभाव, विरोधी खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और ईमानदारी से ले लेते हैं और इसी के लिए वो जाने जाते हैं कि वो ईमानदारी से फैसले लेते हैं, और कई बार उन्होंने जो है अंपायर के फैसले का सम्मान करते हुए खेल भावना की मिसाल पेश की है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही एक और क्रिकेटर का हम नाम आपसे आपके सामने लेना चाहेंगे, वो है राहुल द्रविड़, जो क्रिकेट की दुनिया में ना द वॉल कहे जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ शानदार बल्लेबाज में नहीं बल्कि एक सच्चे फेयर प्ले खिलाड़ी के रूप में भी की जाती है। और मान ली सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें ना खिलाड़ियों को जो है इस जो ये फेयर प्ले है इसमें आईपीएल के दौरान जब टीम होती है इसमें खिलाड़ियों के मैदान पर आचरण, अंपायरों के फैसलों के सम्मान और खेल के नियमों का पालन करने पर इसमें कुछ अंक मिलते हैं, कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और इसके बाद ना टूर्नामेंट के अंत में कुछ होता है जो सरप्राइजिंग रहता है।
0: मैं बताऊं टूर्नामेंट के अंत में ना जिस टीम के फेयर प्ले पॉइंट्स जो है सबसे अधिक होते हैं उसे सीजन के अंत में फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और टाई होने की स्थिति में औसत अंकों पर विचार किया जाता है।
1: क्या बात है, यानी कि कहते हैं ना कि कोई चीज तब ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है जब उसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये अवार्ड न केवल खिलाड़ियों को मैदान के अंदर अनुशासित रहने का प्रेरित करता है बल्कि करोड़ों दर्शकों और युवा प्रशंसकों के सामने क्रिकेट की जेंटलमैन गेम की जो छवि है ना उसे भी बरकरार रखता है।
0: अच्छा, जीत से बड़ी मैं बता दूं, जीत से बड़ी खुशी होती है खेल की भावना से खेल को खेला जाना।
1: बिल्कुल,
0: और यही संदेश देता है वर्ल्ड फेयर प्ले डे, जहां सम्मान, ईमानदारी और इंसानियत ही असली जीत है।
1: बिल्कुल, तो भाई जो कुछ कोई कहे कहता रहे लेकिन आप बिल्कुल बिंदास अपने गेम को फेयर होकर खेलिए।

0: बिल्कुल मालिनी, ये वो गाने हैं जिन्होंने शॉर्ट वेव से आज रेडियो के जरिए एफएम तक का सफर तय किया और आज भी सुनने में ना बिल्कुल उतनी ही एनर्जाइज और सुकून भरे लगते हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि जो गाने होते हैं ना, गीत, वो चाहे किसी भी दौर से गुजर रहे हो, किसी भी रेडियो के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हो, कभी बूढ़े नहीं होते गीत, हमेशा यंग रहते हैं और लोगों में हमेशा एक ताजगी भरते हैं, लोगों को दिल से कनेक्ट करते हैं अपने तक।
0: तो क्यों ना मान ली आज हम अपने आकाशवाणी एट 90 वर्ष के इस जश्न में शॉर्ट वेव से मीडियम वेव तक के सफर, यानी एफएम तक के सफर का इसका एक पूरा सिलसिला जो है इसमें डिस्कस करते हैं।
1: बिल्कुल पूर्णिमा, तभी तो कहते हैं ना कि जो गीत होते हैं ना, वो वाकई में जब बजते हैं तो हम लगता है कहीं जश्न में बैठे हैं। और देखो ना, हम आकाशवाणी के 90 वर्ष का जश्न मना रहे हैं और शॉर्ट वेव से देखो मीडियम वेव तक आए और एफएम, और एफएम से अब हम मतलब AIR,
0: हमें भी नहीं पता।
1: हाँ, नहीं नहीं, हम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी तो है ना,
0: जहाँ दूर दराज से भी आप हमें सुन सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप हमें अपनी मेल्स भी भेज सकते हैं।
1: जी हाँ, हमारी मेल आईडी तो हमने बताई दी है, तो आप अपने जल्दी से हमें विचार भेजिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और पूर्णिमा, एक बात और है, याद आती है वो शॉर्ट वेव की सरसराहट, है ना, जब कभी ट्यून इन करते तो कितना डिस्टरबेंस रहता था, फिर मीडियम वेव ने जो घर घर में जो पहुंच करके रिश्तों को जोड़ दिया और एफएम की चमकती धुनों ने दिल को धड़कना सिखा दिया। तो आज जो है हर हिंदुस्तान के दिल में एफएम जो है बस रहा है और न्यूज ऑन AIR वो माध्यम है जो घर घर गूंज कर विदेशों में भी हिंदुस्तानी खुशबू रेडियो के माध्यम से बिखेर रहा है।
0: बिल्कुल, और आकाशवाणी का ये 90 साल का सफर आवाजों के उस जादू से भी सजा है जिसने हिंदुस्तान को जोड़े रखा है, है ना? तुमने आवाजों की बात करी मालिनी, तो याद आ गई अमीन सयानी साहब की वो दिलकश अदा, बहनों और भाइयों सुनते ही पास जैसे कदम ठहर जाते थे, और फिर यूनुस खान जैसी आवाजों ने किस्सों, गीतों और यादों को ऐसा रंग दिया कि लोग सुनकर मुस्कुरा उठते थे।
1: और पूर्णिमा, इतना ही नहीं, न्यूज रीडर्स की आवाजें, है ना, तुम्हें याद है कितने अच्छे अच्छे न्यूज रीडर की आवाजें जो होती थी, वो एकदम कितनी दिलकश लगती थी जब वो न्यूज पढ़ना शुरू करते थे, तो हम अपनी घड़ी भी मिलाते थे और रेडियो का वॉल्यूम तेज कर लिया करते थे कि ये ऑथेंटिक न्यूज भी है और ये ऑथेंटिक वक्त भी है, मतलब एकदम सही वक्त।
0: बिल्कुल,
1: तो न्यूज से हम लोग समय मिलाया करते थे।
0: और ये आवाजें जब रेडियो पर गुलजार होती है ना, तो हर खबर देश जो है, हर खबर ना देश की से रूबरू होता है। और मान ली ये प्रसारण सिर्फ प्रसारण नहीं था, ये एहसास, सुर और भरोसे का वो प्लेटफॉर्म था जिसने पीढ़ियों को एक ही तरंग पर जोड़े रखा अपनेपन से।
1: हमारे पास कुछ लिसनर्स हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज में मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं कि वो आकाशवाणी से जुड़ करके क्या महसूस किए हैं।
2: नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ। मैं उन श्रोताओं में से हूँ जिनका रिश्ता आकाशवाणी से शॉर्ट वेव और मीडियम वेव के दौर से जुड़ा हुआ है। वो समय आज भी याद है जब रेडियो की सुई घुमाकर दूर दूर के स्टेशनों को खोजा करते थे, कभी हल्की सी खड़खड़ाहट तो कभी साफ आती हुई आवाज़, लेकिन दिल का जुड़ाव हमेशा साफ और गहरा रहा। हमको भी याद पड़ता है जब सुबह 4 बजे भारत वेस्ट इंडीज मैचेस को रेडियो पे सुनने के लिए सुबह उठना पड़ता था। लता मंगेशकर जी के गीत, मोहम्मद रफ़ी साहब की मधुर आवाज़, किशोर कुमार जी की मस्ती और आशा भोसले जी के सुरीले नगमे, इन सबको आपकी आकाशवाणी ने घर घर तक पहुंचाया। और फिर समय बदला, मीडियम वेव से एफएम तक का सफ़र शुरू हुआ। आज ऑल इंडिया रेडियो और एफएम रेनबो जैसे चैनलों ने रेडियो को और भी युवा, ऊर्जावान और दिल के करीब बना दिया है। मेरे लिए रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और अपनों की आवाज़ है जो हर दौर में हमारे साथ रही है। आकाशवाणी के इस खूबसूरत सफर को दिल से सलाम, नमस्कार।
1: ये थे कृष्ण कुमार जी।
0: और ऐसी ही एक जो लिस्नर हैं शालिनी निगम जी, वो हमसे जुड़ी हैं, आइए सुनते हैं वो अपने अनुभव हमसे क्या शेयर कर रही हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी राय निगम उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिसका बचपन आकाशवाणी की मधुर ध्वनि के साथ बड़ा हुआ। तब घरों में मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे, तब आकाशवाणी ही हमारी सुबह की ताजगी, दोपहर की साथी और शाम की मुस्कान हुआ करती थी। समाचारों से लेकर गीतों तक नाटकों से लेकर विशेष कार्यक्रमों तक आकाशवाणी ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि हमें संस्कार, संवेदनाएं और समाज से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम भी दिया। और अगर बात FM रेनबो कानपुर की करूं, तो इसकी आवाज़ में हमेशा अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे परिवार का कोई अपना हमसे बातें कर रहा हो। इसकी प्रस्तुति, संगीत और श्रोताओं से जुड़ने का अंदाज दिल को छू जाता है। आकाशवाणी के 90 वर्ष सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि करोड़ों श्रोताओं की यादों, भावनाओं और विश्वास की कहानी है। मैं दिल से आकाशवाणी और FM रेनबो कानपुर की पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये आवाज़ यूं ही पीढ़ी

0: सदियों तक दिलों को जोड़ती रहे। बहुत बहुत बधाई।
1: बहुत अच्छी बात कही है और इतना मतलब लिसनर्स के मन में भी आकाशवाणी के प्रति इतना प्रेम देख करके लगता है कि वाकई में लिसनर्स किस दौर से और आज तक मतलब इतना शिद्दत से रेडियो से जुड़े हुए हैं। और देखो ना ये शिद्दत दिख रही है हमारी मेल्स में भी,
2: बिल्कुल दिख रही है। हमारे पास मैसेजेस दो, हमारा सवाल था कि अपने पसंदीदा आरजे का नाम आपको शेयर करना था, तो हमारे पास मेल्स आ रही हैं, साथ ही जो एक्सपीरियंसेस हैं आकाशवाणी के साथ वो भी हमसे शेयर कर रहे हैं आप सभी लिसनर्स। तो चलिए पढ़ देते हैं। ये भाई मूसा सिंह जी की मेल आई है, इन्होंने लिखा है, आदाब मैम, आप सभी आरजेस जो है वो खैरियत से होंगे, कानपुर आकाशवाणी के सभी आरजेस बेहतर हैं, लेकिन अगर किसी एक की बात की जाए तो मेरी पसंदीदा आरजे कौसर मैम है। तो कौसर मैम आप घर पर होंगी या जहां पर भी होंगी तो आप सुन रही होंगी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए कि आप की आवाज को पसंद किया जा रहा है। साथ ही सनावत शेख मूसा जी की ये मेल थी, इसी के साथ अगली मेल हमारे पास आई है।
1: अच्छा एक मेल ये भी आई है मेरे पास, उन्होंने आरजे रंजना यादव को अपना फेवरेट आरजे बताया है कि वो मेरी फेवरेट आरजे हैं, बट उन्होंने नाम नहीं लिखा है यहाँ पे अपना, कुछ कोड वर्ड में उन्होंने लिख दिया है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलो मैंने पढ़ दिया है। रंजना तक आपकी बात पहुंच गई है। और एक और हैं राधा नामदेव, ये लिखती हैं मेरी पसंदीदा आरजे विविध भारती के यूनुस खान जी हैं। तो बहुत अच्छा लगा, चलो आपने अपनी पसंदीदा आरजे का नाम लिखा है। और
2: तो
1: एक
2: हाँ,
1: एक बहुत अच्छी स्टोरी आई है, एक आकाशवाणी के 90 वर्ष के इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, आकाशवाणी से जुड़ी याद हमारी जहन में आज ताज़ा हो गई है, मैं उससे शेयर करना चाहता हूँ। ये है राधा जी लिखती हैं, ये लिखती हैं हमारे रिश्ते मतलब इनको देखने के लिए आए थे लोग, तो इनसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, हमने अपना नाम बताया राधा, तो वो तपाक से बोल पड़े कि आप वही राधा हैं जो रेडियो पर सुनाई देती हैं। तो हम तो राधा जी जो एकदम डर गई, वो सहम गई, फिर क्या था, उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर से बोला कि आपके लिखे लेख हम सुनते हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, है उन्होंने ये भी कहा। और इत्तफाक से जिन्होंने ये बात कही थी वो जिनसे राधा की शादी हुई ना वो उसके चाचा ससुर बने।
2: तो
1: बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है,
2: लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी उन्होंने शेयर की है राधा जी ने। तो और आप भी हमसे यूं ही कनेक्ट हो सकते हैं, तो जल्दी से हमें मेल कीजिए, मैसेज कीजिए। और इसी के साथ ही टीएस चंदेल जी हैं, उनका भी मैसेज आ चुका है, रिश्ता चाहे किसी से भी रखो पर हीरे की तरह होना चाहिए, देखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल, हमारा रिश्ता ऐसा ही रहा है, अनमोल हीरे के जैसा, आकाशवाणी कानपुर से जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी प्लेलिस्ट में सबसे पसंदीदा आरजे जो है वो कौसर मैम है, जो उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता हूँ और 2007 से सुन रहा हूँ आकाशवाणी कानपुर को।
1: वाह काफी मतलब लिसनर्स मेल किए हैं,
2: हाँ,
1: अच्छा लग रहा है। एक ये भैया मोनू सेठ हैं, ये लिखते हैं क्लास 7th में जब हम स्कूल जाते थे तो छोटा वाला मोबाइल क्रिकेट सुनने के लिए ले जाते थे, छुपके से सुनते थे, एक दिन छोटा वाला रेडियो बिगड़ गया, उस दिन मैच जो था भारत पाकिस्तान का था, फिर क्या बड़ा वाला रेडियो उठाया उसे अपने बस्ते में छुपा कर स्कूल लेकर चला गया, छुपके छुपके सुन रहे थे। वाह क्या बात है, क्या लगाव है। और आनंद के साथ जो है सुन रहे थे हम, और किसी ने मेरी शिकायत कर दी, मास्टर साहब ने मारा भी और हमारा रेडियो
2: मास्टर ने लिखा है कि मार खानी भी पड़ी।
1: अच्छा मार खानी भी पड़ी और मास्टर साहब को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन जब मैंने, अच्छा वो लिखते हैं कि जब मैंने रेडियो बाहर रख के बजाया तो मास्टर साहब भी उसके दीवाने हो गए और कमेंट्री सुन करके वो भी बहुत खुश हो गए और उन्होंने भी आनंद लिया। थैंक यू मोनू सेठ जी, आपने लिखा है खालिसपुर अमेठी से ये मेल हमारे पास आई है।
2: एक और हमारे पास मेल आई है कि हमारे पास मेल आई है, ये लिखा है कि ये है अनिल कटियार जी ने लिखा है कि मुस्कुराती मालिनी महोदय जी आपको सुप्रीम नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: साथ ही लिखा है कि हमारे जो पसंदीदा आरजेस हैं उनमें कौसर मैम, मालिनी मैम आप और पूर्णिमा मैम आपकी भी आवाज में बेहद पसंद है, तो आप सभी प्रोग्राम करती हैं तो वाकई बहुत अच्छा लगता है।
1: ये है ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से हैं। और एक और मेल आई है, भाई मेल्स का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा है, गाना कब सुनाएंगे, चलो जल्दी से पूर्णिमा ये मेल भी शामिल कर लेते हैं।
2: बिल्कुल ये मेल मेल हमें आई है, उन्होंने लिखा है कि प्यारी सिस्टर पूर्णिमा जी और मालिनी जी, आप दोनों को प्यार भरा आदाब। बिल्कुल, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: आप दोनों की आवाज बहुत ही मीठी है, मीठी मीठी आवाज जो है कानों तक पहुंच रही है। पसंदीदा आरजेज में कौशल मैम आप, और आप दोनों मैम ही

0: अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट कर रही हैं, बहुत अच्छी आवाज है। और इसी के साथ ही इन्होंने ये मेल हमें की है, और कोई और मेल
1: ये
0: हमारे
1: मेल
0: पास?
1: हमारे पास आई है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से है, और एक मेल हमारे पास और दिख रही है, ये कहाँ से आई है?
0: ये है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। इन्होंने लिखा है कि जो है सारी आरजेज हमें बेहतर लगती हैं, बहुत पसंदीदा इनके प्रोग्राम्स होते हैं, पर कुछ नाम हम बताना चाहेंगे जिसमें पूर्णिमा मैम आपकी आवाज़, मान लीजिए आपकी आवाज़, कौशल मैम आपकी आवाज़ और सारिका जी की आवाज़ इन्हें अच्छी लगती है। भाई क्या
1: और
0: बात
1: बहुत
0: है।
1: सारे मैसेज आए भाई, सब लोग आप लोग तारीफ कर रहे, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज आ गया है, ये लिखते
0: भाई
1: हैं
0: आप ये मैसेज हमें कर चुके हैं, भाई शेख मूसा जी हमें मैसेज कर चुके हैं।
1: अच्छा, शेख मूसा जी दोबारा
0: इनका
1: मैसेज
0: मैसेज
1: किए हैं,
0: हम पढ़ भी चुके हैं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं
1: आगे बढ़ते हैं और
0: हाँ
1: एक खूबसूरत से गाने से आपको जोड़ते हैं।
0: बिल्कुल,

0: तुम क्या मिले।
1: रेडियो के आने से वाकई में ऐसा लगता है कोई हमारे घर में आ गया है।
0: बिल्कुल, वो खालीपन लगता ही नहीं है। हाँ,
1: और देखो स्क्रीन पे मेल सभी भी आ रही हैं।
0: और एक और बड़ी प्यारी सी मेल हमारे पास आई है, ये आई है मास्टर अशोक कुमार वर्मा की। इन्होंने लिखा है, आकाशवाणी कानपुर की आरजे मालिनी जी की आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुकून देती है। आप बहुत जानकारी देते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी बातें हंसाती हैं, आपका शो जो है शो सुनकर मेरा दिन बन जाता है। भाई इतनी अच्छी बात लिखी है मालिनी,
1: ये सनावत से हैं अशोक वर्मा जी। अशोक वर्मा जी थैंक यू सो मच,
0: आप इतनी प्यारी प्यारी मेल्स,
1: हाँ इतनी प्यारी प्यारी मेल्स आप करते रहते हैं, आप कनेक्ट रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक और हमारे पास मेल आई है, ये है आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल, इन्होंने लिखा हुआ है, इनको
0: राशिद हुसैन अंसारी, हाँ
1: इन्होंने हमें बधाई दी है
0: आकाशवाणी के 90 हाँ, वर्ष की। बिल्कुल, तो हम और ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ साथ हम भी जश्न मनाते हैं जब हम आपसे कनेक्ट हो जाते हैं हम नवा प्रोग्राम के जरिए, और भी जो प्रोग्राम्स आप रेनबो पर प्रसारित होते हैं वो सब हमें बहुत एंटरटेन करते हैं। तो आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से शुक्रिया। और मालिनी एक
1: और मेल आ गई, हमारी रेगुलर लिसनर है नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से। भाई बड़ी लेट कर दी आज आपने मेल करने में। लिखती, मेरी फेवरेट वाली एंकर आरजे पूर्णिमा सिंह, आरजे मालिनी मैम के लिए दो लाइनें अर्ज करती हूँ। ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे, और सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी कोशिश ये है कि आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे। वाह क्या बात है, बड़ी गहरी बात इन्होंने लिखी है। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग प्यारी दोनों एंकरों को, आज के मॉर्निंग के कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगे, झक्कास शब्द लिखा है इन्होंने, पूर्णिमा तुम्हारे लिए लिखा है। ये रूपपुर चंदेला से हमारे पास मेल आई थी, और इसके बाद जो है अभी तो मेल स्क्रीन पर दिख नहीं रही है फिलहाल, हम
0: ये हमारे लिसनर्स हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के लिए बहुत ही बढ़िया सा जो जरिया है हमारे साथ हमारे प्रोग्राम हेलो कानपुर का, वो भी स्टार्ट हो रहा है कल से एक बार फिर, और
1: बता दें हाँ, वो कनेक्ट हो सकेंगे उससे भी हेलो कानपुर प्रोग्राम से,
0: और इसकी रिकॉर्डिंग भी कल
1: बुधवार से शुरू हो रही है,
0: बुधवार और गुरुवार को रिकॉर्डिंग होनी है 10 बजे से 12 बजे के बीच।
1: हाँ 10 से 12 तक रिकॉर्डिंग होगी, और हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए, हो सकता है इतने दिनों में शायद आप भूल भी गए हो, तो हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818
0: यानी 0512-254-1818। तो नोट कर लीजिए
1: और फोन जरूर करिएगा भाई।
0: जैसे आप हमसे बात करने का इंतजार, वैसे ही हमें भी है तहे दिल से आपका इंतजार। तो आगे बढ़े,
1: हाँ देखो ना अभी कितनी अच्छे अच्छे शब्दों में लोग बातें लिखे, और बहुत अच्छा लगा उनकी बातें हम पढ़े और मतलब प्रोग्राम में हमने शामिल करी, और जब बातों की बात चली तो शब्द वाकई में बहुत कनेक्ट करते हैं एक सामने वाले इंसान को।
0: और बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ भी नया सीखते हैं मालिनी, हर रोज हम हर मतलब जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इवन जो सीखने की शुरुआत होती है वो बचपन से जाती है, जब बच्चे होते हैं वो नए नए वर्ड्स को सीखना बोलना, भले ही वो तोतली भाषा में बोल रहे हों, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हम उनकी बातों को उनके शब्दों को पकड़ कर समझने की कोशिश करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में शब्दों के प्रति प्यार कैसे विकसित करें,
0: और प्यारा सॉरी हाँ, बहुत सही टॉपिक है।
1: और पूर्णिमा मैं देख रही हूँ कि ना जाने क्यों आज कल जो बच्चे हैं वो स्क्रीन से काफी कनेक्ट रहते हैं, है ना, तो वो बोलने से वही लैंग्वेज भी वही बोलने लगते हैं जो वो देखते हैं।
0: बिल्कुल, और माननी कहीं ना देखो ना, जब वो नए शब्दों को सुनते हैं किसी के जरिए, तो हम हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है या बच्चों के अंदर भी होती है कि हम तुरंत उन्हें सर्च करते हैं कि इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है या कहाँ पर हमें इसे इस्तेमाल करना है, कहाँ यूज करना है, किन वोकैब्स के साथ करना है। तो ये जो एक लगाव होता है उसी के लिए है सारी हमारी आज की ये बातें, और बच्चों में ये जो क्यूरियोसिटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा तुमने, शब्दों के जो एडवेंचर होते हैं ना उससे बच्चों को जरूर जोड़ना चाहिए, उन्हें मतलब उन्हें बोलने देना चाहिए। अगर आपको हंसी आ रही तो उस वक्त आप हंसी रोकिए, लेकिन बाद में जो है बच्चों के साथ आप कनेक्ट होइए, उनको सही मतलब उनको बताइए कि इसको सही तरह से कैसे बोलते, होता है ना कभी कभी बच्चे कई बार वो शब्द बोलते हैं तो हमें हंसी आती है और हम उसको सुनने के लिए उनसे बार बार वो शब्द बुलवाते हैं।
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: तो ये सारी चीजें ना, एक तो हमारा हम उनसे जो है कनेक्ट होते हैं, उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, और एक लगाव जो होता है वो साथ में बनता है। और देखो ना बच्चों पर कभी कभी ना कोई वैसे हमें जबरदस्ती कोई चीजें नहीं सिखानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, खेल खेल में चीजों को सिखाना चाहिए, करने देना चाहिए ताकि वो सीखते चले, और वो जो एक हेजिटेशन होता है, एक डर होता है ना, वो ना रहे। और पता है इस हम भी हमारे लिसनर्स को बहुत ही अच्छे से दो शब्द हैं वो जो सिखाने वाले हैं, है ना?
1: बिल्कुल। पूर्णिमा एक बात और है, मैंने सुना है कई जगह पर रीडिंग कॉर्नर और फैमिली रीडिंग टाइम भी शुरू किया गया, जहां बच्चों के साथ साथ माता पिता भी बैठकर पढ़ते हैं, और इस तरह से बच्चों को बचपन से ही ना आपस में कनेक्टिविटी महसूस होती है, तो वो माँ बाप को देखकर वही करते हैं, वैसी ही रीडिंग भी करने लगते हैं जैसे कि माँ बाप पढ़ रहे होते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, और ये सारा ही इम्पैक्ट है उन शब्दों का, शब्दों के कहते हैं ना वो जाल जो है उसमें हम कहीं ना कहीं नए शब्दों को सीखते हैं। और ये मोबाइल, मेरा मोबाइल की थोड़ी सी तारीफ यहाँ हम करना चाहेंगे, अब लोग ना मोबाइल के दुश्मन नहीं बल्कि लर्निंग टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऐप्स हैं जिनके जरिए बच्चों खेल खेल में जो है कुछ ऑडियो स्टोरीज के जरिए नए शब्द सीख रहे हैं, नए वोकैब्स के साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसे ही दो शब्द हम जो शेयर करने वाले थे मान ली, वो हैं लोगोफाइल और लोगोफिलिया, यानी कि लोगोफिलिया यानी कि वर्ड्स से प्यार करना, शब्दों से प्यार करना। और जो लोगोफाइल है वो ये है, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द जिन्हें भाषा शब्द या फिर नए शब्दों को सीखने से प्यार होता है, जिससे उनकी वोकैब्स में नए शब्द जुड़ जाते हैं। तो जरूर हमारे लिसनर्स ने ये शब्द सीख लिए होंगे।
1: अच्छा, होता क्या ना, कोई एक पर्टिकुलर शब्द जैसे कि प्रीफिक्स होता है, फिर उसमें सफिक्स कर दिया जाता है, तो शब्द वही शब्द होता है लेकिन उसका थोड़ा सा अर्थ चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो एक कनेक्टिंग होता है। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे जो है हमारे प्राइमरी वर्ड सीख जाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि प्रीफिक्स यानी कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय।
0: और हम सब ने बखूबी पढ़े हैं इन्हें, और लेकिन जब उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं तो वो और खूबसूरती से
1: बच्चे समझ लेते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो बच्चों को थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहिए मदर फादर को ऐसे में, और उनको थोड़ा सा ये सिखाते रहना चाहिए कि जो है मतलब हमें कैसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है,
0: कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ जिंदगी।
1: तो एक बच्चों का प्यारी सी आवाज में एक गाना सुन लेते हैं।

0: और हम सबको भी आपसे बहुत प्यार है. प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप, हम नवा आरजे पूर्णिमा और आरजे मालिनी के साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी से. और अब हम बात करने वाले हैं एक खास दिन जो समर्पित है हिंदी साहित्य के उस महान रचनाकार को जिन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उन्हें जीवन की गहराइयों से जोड़ा भी.
1: आज हम याद कर रहे हैं महान साहित्यकार, निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को. उनकी आज पुण्यतिथि पर हम जो हैं उन्हें पहले शत शत नमन करते हैं.
0: बिल्कुल, वो ऐसे सितारे हैं मालिनी

0: जिन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानवीय संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में बहुत खूबसूरती से पिरोया। उन्हें उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में देखें ना तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्रलेखा, अनामदास का पोता, अशोक के फूल जैसे मूल कृतियाँ भी शामिल हैं। और आप आज भी देखो ना कि जो एग्जाम्स होते हैं
1: आज जो एग्जाम होते हैं ना उनमें आज भी कुटज एक निबंध प्रसिद्ध निबंध है, यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो लोग आज भी पढ़ते हैं। और उनकी लेखनी की एक खूबसूरत भावना कुछ यूं महसूस होती है, मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उनकी
0: मनुष्यता,
1: हाँ उसकी मनुष्यता है। और कितनी ही मतलब इजी लैंग्वेज में वो इतनी अच्छी बात कह जाते थे।
0: हाँ, कहते हैं ना कि सरल सरल शब्दों में गहरी बात कह देना। और देखो ना, जब आज लोग भागदौड़ भरे लाइफ में बिजी हैं, रिश्तों में, संवेदनाओं से कहीं दूर हो जा रहे हैं, तो ऐसे में द्विवेदी जी के शब्द हमें इंसान बने रहने की सीख भी देते हैं।
1: और उनकी रचनाओं में जो है प्रकृति की बहुत सुंदर जो है रूप उन दिखाई देता है, यानी वर्णन मिलता है। अशोक के फूल में उन्होंने लिखा है कि प्रकृति कभी मनुष्य को निराश नहीं करती, यदि मनुष्य उसके पास सच्चे मन से जाए तो।
0: बिल्कुल, तो उनकी पुण्यतिथि पर हम सिर्फ याद ही ना करें माननी, बल्कि उनकी संवेदनशील सोच और मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। और इसी भावना के साथ हजार प्रसाद द्विवेदी जी को शत शत नमन है। साथ ही हम बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी की, जिनकी आज जयंती है।
1: आज ही के दिन यानी 19 मई को हर वर्ष राष्ट्र उनके महान स्वतंत्रता संग्राम और देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में दिए गए योगदान को याद करता है, और इस अवसर पर राजनीतिक हस्तियां और आम नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं।
0: और पता है मालिनी, वो भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, और उन्हें हम आज जो है याद कर रहे हैं, और इस याद के साथ उन्हें शत शत नमन भी करते हैं।
1: और अब पूर्णिमा, मैं घड़ी की ओर देख रही हूँ, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, तो क्यों ना इस समय स्टार्टअप की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आज मतलब स्टार्टअप में हम क्या बात करने वाले हैं।
0: बिल्कुल, तो हम आज बात करने वाले हैं जो शायद जिनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, मतलब ना बहुत उम्र का जो है एक्सपीरियंस चाहिए, ना बहुत पैसा चाहिए, ना मंच, लेकिन ये कहानी हमें मोटिवेट करती है। बेंगलुरु की सिर्फ 15 साल की एक लड़की मान्या, जिसने अपनी दादी को यादों को सिर्फ दिल में नहीं रखा बल्कि उन्हें खूबसूरत मिशन बना दिया।
1: बेंगलुरु की सिर्फ 15 साल की लड़की, वाओ क्या बात है मान्या। भाई ऐसे तो इनसे मिलने का मन हो रहा है। वैसे सोचिए जरा, वो साड़ियों का एक बिजनेस उसने स्टार्टअप डाला और आज उसने बिजनेस खड़ा कर लिया है। जो साड़ियां कभी एक माँ, दादी, नानी की यादों से जुड़ी थी, आज वही साड़ियां मतलब धरती को बचाने का जरिया बन रही है पूर्णिमा।
0: बिल्कुल, क्योंकि उन साड़ियों से जो है मान्या ने बैग्स बनाए, और ये बैग बेंगलुरु के कई घरों और स्कूलों तक पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात कि ये प्लास्टिक का जो इस्तेमाल करके हम हमेशा चल देते हैं ना, कि प्लास्टिक का थैला लिया, बैग लिया और अपना सारी शॉपिंग कर ली, उन्हें कहीं ना कहीं ये किनारा दे रही है।
1: बहुत अच्छी बात,
0: स्टार्टअप सिर्फ बैग नहीं रहा बल्कि लोगों को सिखा रहा है कि जिंदगी छोटी छोटी चीजों में भी छिपी हो सकती है।
1: और अब तक इस पल के जरिए लगभग उन्होंने 1.2 टन टेक्सटाइल वेस्ट को दोबारा इस्तेमाल में लाया है, और पुरानी चीजों को नया रूप देकर पर्यावरण को बचाने की एक शानदार कोशिश भी कर रही हैं।
0: बिल्कुल, तो यहाँ पर हम एक प्यारा संगीत आपको सुनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं हमारी हमनवा की रसोई से। आज क्या निकल कर आने वाली है रेसिपी।

0: और वायदे के अनुसार हम फिर से आ गए हैं अपनी रसोई के साथ। आज रसोई में क्या है खास?
1: आज बनाने वाले हैं हम सौंफ और इलायची का शरबत। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसकी सामग्री क्या क्या आप लेने वाले हैं। यानी कि मोटी वाली सौंफ लेनी है एक कप लगभग 100 ग्राम, 15 से 20 छोटी इलायची, 2 टेबल स्पून खसखस, 1 टेबल स्पून या 15 से 20 काली मिर्च, 400 ग्राम धागे वाली मिश्री, सब्जा के बीज यानी चिया सीड्स भी कहते हैं, सूखे गुलाब की पत्ती, आधा लीटर दूध 4 ग्लास के लिए या फिर आधा लीटर पानी, और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और 1 नींबू का रस।
0: अब आपको कैसे बनाना है चलिए बताते हैं। सौंफ और इलायची को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। इतना ज़्यादा भून लेना है अच्छी तरह से कि इसका सारा जो है मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि आप इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके यानी 5-6 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं। लगभग टाइम बता दे तो 3 से 4 मिनट तक इसे भूनना है। अब इलायची और सौंफ को दूसरे बर्तन में ठंडा होने रख दें। जब ये दोनों चीज़ अच्छी तरह से ठंडी हो जाएंगी तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून खसखस, इसी में 15 से 20 काली मिर्च भी डाल देंगे। अब इसमें 400 ग्राम धागे वाली कुटी हुई मिश्री भी डाल लेंगे। इन सभी चीज़ों की तासीर ठंडी होती है। अब इस मिश्रण को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिक्सी में डाल करके महीन पीस लेना है, एकदम स्मूथ पाउडर बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो आप इसको छान करके स्मूथ पाउडर इसका अलग कर लें और इसको एक सूखे कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। अब इसमें जब आपको बनाना है तो आपको आधा लीटर दूध लेना है, उसमें 4 टेबल स्पून ये पाउडर आपको अच्छी तरह से डालकर मिला लेना है, और फिर इसमें जो है जब आप चिया सीड जिसे हम बोलते हैं सब्जियां के बीज, ये जो है जो आपने भिगो कर रखे थे इसमें से 2 चम्मच डालने हैं। सूखे गुलाब की पत्तियाँ ये ऑप्शनल हैं, ये गार्निशिंग के लिए हैं, आप चाहें तो डालें, वैसे ये भी ठंडी तासीर की होती हैं। और बस सब चीज़ अच्छी तरह से मिक्स करिए, बर्फ डालिए और एंजॉय करिए। और इसी तरह पानी में जब आप बनाएंगे तो पानी भी आधा लीटर आपको लेना है, उसमें आपको डालना है 4 टेबल स्पून ये पाउडर डाल लेना है। फिर 4 टेबल स्पून इस पाउडर के साथ ही आप इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भीगे हुए सब्जियां के बीज, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा चम्मच काला नमक और 1 नींबू का रस। अच्छी तरह से मिक्स करके मिलाइए और 4 ग्लास में सर्व करिए और बर्फ डाल के एंजॉय करिए।
1: बिल्कुल चिल है ना।

बिल्कुल जस्ट चिल, क्योंकि गर्मी है ना बिल्कुल बेहाल करने वाली है, बदहवास करने वाली है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा चिल रखिए, अपने मूड को बिल्कुल मस्त होकर रखिए, क्योंकि इसे आपके साथ इस मौसम

0: के साथ ही चलना है। और साथ ही एक बढ़िया सी जो एक एनर्जाइज हमारे पास न्यूज़ है ना, ये कि हेलो कानपुर की रिकॉर्डिंग शुरू है, तो कल बुधवार और गुरुवार को होने वाली है रिकॉर्डिंग इसकी 10 से 12 बजे के बीच में।
1: तो आप फोन करिए, हमारा फोन नंबर है 2541818। सो गाइज, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन का। फिलहाल हम नवा प्रोग्राम से, मैं आरजे मालिनी
0: और मैं आरजे पूर्णिमा लेती हूँ इजाजत। रखिए अपना खास ख्याल, टेक केयर,
1: बाय बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद फंसे रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद यह छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। औरैया जिले में अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर बीती रात करीब 1:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर

पलट गई और इसमें बैठे कई लोग नीचे दब गए। हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। इटावा सफारी पार्क में खुशखबरी आई है। 9 साल के इंतजार के बाद रोहतक जू से 7 साल की रोशनी, क्षमा कीजिएगा, शेरनी सुधा इटावा पहुंच गई है। सोमवार को सफारी की टीम उसे सुरक्षित लेकर आई। सभी शेरनी को लायन हाउस 1 में 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। सीसीटीवी और डॉक्टरों की टीम उसकी सेहत पर नजर रख रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तानें। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी 12:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जी हाँ शत्रुपा का, जिसमें हर दिन की तरह कुछ ना कुछ खास लाई हूं मैं आपके लिए, और वो भी आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे आपके साथ, तो क्यों ना एक बेहतरीन सा ट्रैक भेज दें आप तक। तो चलिए ट्रैक भेजते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे बातें करते हैं कि आज दिन है ट्यूसडे और क्या बातें करते हैं हम ट्यूसडे के दिन। तब तक आप गेस करिए और एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक एंजॉय करिए।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। जी हाँ, वही फैशन जो हम महिलाओं की सुंदरता में लगा देता है चार चांद। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टाइलिश सलवार की जो आपके लुक को एनहांस करेंगे, साथ ही आपको देंगे एक बेहतरीन और गॉर्जियस लुक। तो वो कौन-कौन से सलवार हैं जिसको आप पहन के लगने वाली हैं स्टनिंग, तो उसके लिए कुछ देर वेट करना होगा और उससे पहले एंजॉय करना होगा ये बेहतरीन सा गाना जो मैंने क्यों किया है आपके लिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर, फिर आते हैं लौट कर और बात करते हैं कि किन किन स्टाइल्स की सलवार को आप कैरी कर सकते हैं इन समर्स में।

जी दोस्तों, 12:13 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा। और अभी आपने एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक सुना था, लो चाय उल्फत हो गया। जी हाँ, इसी गाने के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आज हम क्या बात करने वाले हैं, बस आपको बताने वाले हैं।

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

जी 12:21 का वक्त और बातें शुरू होने वाली हैं कार्यक्रम शत्रुपा में कि किन किन शलवार को आप कैरी कर सकते हैं इन समर्स। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टाइलिश सलवार के साथ आप दिखेंगी एलिगेंट। तो आपको बता दूं कि अगर आपके वार्डरोब में प्लाजो लेगिंग्स की भरमार है तो उन्हें फिलहाल पीछे रखना ही बेहतर है, क्योंकि फैशन बदलता है। जो आज ट्रेंड में है वो कल आउट ऑफ फैशन हो सकता है और लौट भी सकता है। जी हाँ भाई, जो फैशन होता है वो आउट ऑफ फैशन भी होता है और उसको लौटते हुए भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो प्लांट प्लाजो लेगिंग्स ने कुछ समय के लिए सलवार की जगह जरूर ले ली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पैंट लेगिंग और सलवार ने जरूर ले ली है लेगिंग्स ने जगह उनकी, लेकिन अब सलवार जो कि हमारी पहली पसंद हुआ करते थे आ चुके हैं नए और मॉडर्न अंदाज में। तो बातें तो अभी और भी, पर उससे पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक आ रहा है आप तक। तो चलिए एंजॉय करते हैं प्यारा सा गाना आप तक।

जी दोस्तों, 12:26 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो गया है शत्रुपा जी। हाँ, जो जिसमें हम बात करते हैं आपके फैशन को लेकर। जी आज का जो दिन होता है, आज का जो सेगमेंट होता है शत्रुपा में, वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है आपके लिए, लेकिन जो आज का सेगमेंट है मुझे लगता है उसमें सभी जितनी भी हमारी महिलाएं सुन रही है ना प्रोग्राम, बहुत ज्यादा रुचि होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जी हाँ, और वो है फैशन। और फैशन में जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है शलवार, कि किस तरीके की शलवार जो हम लोगों ने पहनना छोड़ दिया है, लेगिंग्स और प्लाजो की जो भरमार हमारे पास हो गई है, पैंट्स की भरमार हमारे पास हो गई है, और हमने कहीं एक किनारे शलवार को रख दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सलवार सूट एक ऐसा परिधान है जो हर उम्र, हर बॉडी टाइप और हर रंग रूप पर फबती है। वहीं अगर बात हो सलवार की, तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका आरामदायक होना। अच्छा, जब भी हम पहनते हैं, जैसे लेगिंग्स पहनी, प्लाजो पहनी या पैंट्स हम कैरी करते हैं, तो एक मन में कभी चीज हमारे चलती जरूर है कि अच्छा जब सलवार पहनते थे उसमें कितना कंफर्ट था। लेकिन जो ट्रेंड में है तो हम सोचते हैं कि नहीं, लेगिंग्स ही पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, प्लाजो पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, और हमने सलवार को बिल्कुल अनदेखा कर दिया।

और आपको पता है, ऑफिस, कॉलेज या कैजुअल आउटिंग, हर जगह यह आसानी से कैरी की जा सकती है। जो हम लोग पहनते थे, कभी एक टाइम था जो सबसे ज्यादा शलवार, सूट सलवार पहने जाते थे। क्योंकि आज हम महिलाएं ऐसे कपड़े चुन रही हैं जो स्टाइलिश होने के साथ साथ आरामदायक भी हों, और सलवार इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। तो जरा आज गौर फरमाइएगा कि किन किन स्टाइलिश सलवार को हम आज आपको बताएंगे, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको आप परचेज कर सकते हैं और स्टिच भी करवा सकते हैं, और उसको पहनकर आप लग सकते हैं गॉर्जियस। तो हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आने के लिए बेकरार है आप तक। तो चलिए ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सलवार आप पहन सकते हैं और उसको पहनकर आप लग सकती हैं बहुत ही ज्यादा प्यारी, खूबसूरत, और लोग कहेंगे

0: श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

और फिर हमने बात करी सिगरेट पैंट स्टाइल सलवार की। तो ये जो मैंने नाम बताए ना आपको, अगर आपने अभी इससे अवगत नहीं थी, आपको नहीं पता था, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए और इस तरीके की सलवार आप जरूर से ट्राई करिए। और भी चीजें हैं जो हमें आपको बतानी है और भी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन जब आप ये जो चार तरीके की हमने चीजें बताई आपको, फर्शी सलवार और धोती स्टाइल सलवार के बारे में, पैनल और ट्यूलिप डिजाइन के बारे में और सिगरेट पैंट के बारे में, तो जब आप इसको पहनेंगे ना तो लोग क्या कहेंगे जरा उसको सुन लेते हैं। वो कहेंगे चलते

जी 12:46 का वक्त और आपकी दोस्त शिखा है आज आपके साथ कार्यक्रम शत्रुपा में। और आज का जो टॉपिक है वो है फैशन डिजाइनिंग, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि किन किन स्टाइलिश सलवार को कैरी करके आप लग सकती हैं एलिगेंट। तो अभी हमने बात करी थी चार ऐसे सलवार के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया, डिस्क्रिप्टिव वे में बताया कि कैसे आप इसको कैरी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लाजो और शरारा वो भी कहीं पीछे नहीं है। जी हाँ, वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। और उभारते हैं आपकी पर्सनालिटी को। और अगर आपने अभी एक एंकल लेंथ सलवार नहीं ट्राई करा, जी हाँ एंकल लेंथ सलवार भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी तक अगर आपने एंकल लेंथ सलवार नहीं ट्राई करा है तो अब उसकी बारी है। जो सिंपल कुर्ती के साथ देता है लाजवाब लुक। तो बहुत ढेर सारी हमने सलवार के बारे में आज बात करी, और मुझे लगता है जो लोग नहीं भी जानते होंगे कि अरे इतने ज्यादा टाइप हैं सलवार में, हम इसको कैरी, अरे क्यों नहीं कैरी किया अभी तक, तो अभी भी मौका है। आप इन जितने भी सलवार मैंने आपको बताए, बहुत डिजाइनर लुक होता है, बहुत एलिगेंट, बहुत स्टनिंग दिखते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। जब सलवार की बात आती है ना दोस्तों, तो एक अलग से, मतलब आप इमेजिन करिए इतना कंफर्टेबल होता है ये, और ये जो गर्मी है, ओहो वो चिलचिलाती गर्मी, और उसपे लैगिंग और जीन्स पहनना तो एक कहीं हद तक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। तो जो पहले आराम हमें मिलता था और वही वो कहीं हमने छुपा दिया था बिल्कुल फैशनेबल दिखने के चक्कर में, लैगिंग्स को पहनकर, पैंट्स को पहनकर, जीन्स को पहनकर, तो वो तो आप कैरी करिए, अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये सलवार है ना, ये अपनी जो महत्वता है वो एज इट इज रखे हुए है, और वो कहीं भूल गया, वो आप लोग भूल गए थे, तो उसको अब आप ट्रेंड में लाइए। और ये जो मैंने जितने भी टाइप्स बताए हैं इसको एक बार ट्राई जरूर से करिए। तो देखिए आज हुई ना कितनी काम की बातें इस सेगमेंट पे, और अभी और भी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे फैशन टिप्स हैं जो आपको देने हैं भाई। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि बने रहना है अपनी दोस्त शिखा के साथ और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। और रंगों की बात करें तो आप रंगों में पेस्टल शेड, सॉफ्ट प्रिंट्स और न्यूट्रल टोन को अपनी पसंद में शामिल कर सकती हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो अगर आप एक परफेक्ट आउटफिट चाहती हैं तो परंपरा और ट्रेंड का सही मिश्रण बहुत जरूरी है। तो शलवार के ये जो जितने भी स्टाइल्स आपको आज हमने बताए तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और इस बार इस समर्स आपको जरूर से ट्राई करना है, और देखिएगा तो भाई आप एक बार ये जो सेगमेंट है ना आज का, उसको याद जरूर करेंगे कि वाह क्या सेगमेंट था उस दिन का और क्या हमें टिप्स मिले। तो इसी के साथ अब हम प्रोग्राम शत्रुपा को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और लेकिन आपको कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि शिखा अभी आपके साथ रहेगी प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से मुलाकात और भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलेंगे। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल इंडस्ट्री के अनुसार प्रदेश भर में सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के संचालित हो रही है। राज्य में वर्तमान में 13,168 पेट्रोल पंप और 28 सप्लाई डिपो सक्रिय हैं। डिपो और रिटेल आउटलेट्स पर इतना स्टॉक मौजूद है कि औसतन 14 दिनों तक की मांग पूरी की जा सकती है। साथ ही रिफाइनरियों से लगातार नए स्टॉक की आपूर्ति भी जारी है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 8 लाख एलपीजी रिफिल उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही हैं। तेल कंपनियों ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की उपलब्धता संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर आज लखनऊ के हनुमान मंदिर बजरंगबली के जयकारों से गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए पंखे, कूलर व टेंट के खासे इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में उपभोक्ताओं की ओर से सैकड़ों संख्या में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। इन भंडारों पर शाम तक अलग अलग मेन्यू के हिसाब से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी दोस्तों, 1:05 का वक्त और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का, जिसे लेकर आज मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ। और इस प्रोग्राम में हर दिन बात करते हैं हम किसी न किसी के स्पेशल टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं कि उस टॉपिक पर आपकी क्या राय है। तो हम आपको आज का वो विषय बताएं उससे पहले एक बेहतरीन सा ट्रैक बिल्कुल रेडी है आप तक आने के लिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना, फिर आते हैं लौट कर और बात करते हैं कि आज का क्या टॉपिक है और किस टॉपिक पर आपको अपने व्यूज भेजने हैं।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी ट्रिपल एस सी 2024 के तहत मुख्तलिफ ओहदों पर सिलेक्टेड 932 उम्मीदवारों को तकर्री लेटर तकसीम किए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में 9 लाख से ज्यादा नौजवानों को तकर्री लेटर तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ रियासत को मुख्तलिफ हल्कों में आगे बढ़ाने में रियासत के होनहार नौजवानों ने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में आज रियासत मुल्क के ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है।
1: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: हुकूमत ने कहा है कि मगरबी एशिया तनाज़ु की वजह से दरामदाद में रुकावट के बावजूद मुल्क की तेल रिफाइनरी फैक्ट्री मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं और हिंदुस्तान के पास खाम तेल का वाफिर ज़खीरा है। मगरबी एशिया में हाल के हादसात पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का वाफिर ज़खीरा है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: दरअसना हुकूमत ने यूट्यूब के उन वीडियो की तरदीद की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 9 दिनों के तेल का जखीरा बचा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट जांच यूनिट ने दावा को खारिज करते हुए बताया है कि मुल्क में तकरीबन 60 दिनों के खाम तेल का जखीरा है। दरअसना उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की फराहमी पूरी तरह मामूल पर है। अवामी जुमरे की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने वाजे किया है कि रियासत में ईंधन वाफिर मकदार में है और किसी भी तरह की घबराहट या ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की दस्तयाबी से मुतल्लिक जानकारी सिर्फ सरकारी जराए से ही हासिल करें। जेठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर दारुल हुकूमत लखनऊ के मंदिरों से लेकर जगह जगह बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का इनेकाद हो रहा है। मंदिरों में भंडारों के साथ ही भक्तों की जानिब से पूरे शहर में सैकड़ों भंडारे मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर आज आकाशवाणी लखनऊ में भी बजरंग बली की पूजा के साथ भंडारे का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ शाम तक प्रसाद तकसीम किया जाएगा। रियासत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से 22 मई तक रियासत के बेशतर अजला में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई अजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री के पार जाने के इम्कान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया को पूरी तरह अलर्ट रहने के अहकाम दिए हैं। इस दौरान मरकजी वजारत आयुष ने शदीद गर्मी और लू के हालात से निपटने के लिए आवाज

0: सेहत मशावरात जारी किया है।
1: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दरियस्ता महकमा मौसमियात ने आज से चार दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की, जबकि कम से कम दर्ज हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने आगरा, औरैया, बलिया, बांदा, भदोई, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कौशाम्बी, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली और वाराणसी के कई मकामात पर हीटवेव से लेकर शदीद हीटवेव चलने के इम्कान ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग। जब
1: एक बजकर 17 मिनट का वक्त और एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम होठों पे तेरी बात में, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। दोस्तों कहते हैं, चाहे जितनी सख्त हो गर्मी की मार, एक ठंडी आंधी दे जाती है करार। बस हौसला रखो दिल में अपने, सावन आएगा लेकर ठंडी बयार। तो इन बेहतरीन लाइंस ने कितना कुछ कह दिया। जी, इन बेहतरीन लाइंस में कितना लाइंस में कितनी चीजें संजोई हुई थी अपनी ये लाइंस, और इन लाइंस से काफी चीजें हमें सीखने को भी मिली होंगी। तो दोस्तों, इन लाइंस को सुनकर शायद आप थोड़ा बहुत भाप चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। और अगर नहीं गेस कर पाए तो भाई हम हैं ना यहां पर आपको बताने के लिए। तो बताते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक ये है कि

हर सीजन अपने में कुछ ना कुछ संजोकर लाता है जिसे हम उस सीजन की स्पेशलिटी मान लेते हैं। तो आज आपको बताना है ये कि ये जो गर्मी का सीजन आया है उसमें आपको क्या चीज पसंद है, जी हाँ उसकी कौन सी खासियत है जो आपको अच्छी लगती है। तो मैं एक बार टॉपिक फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज का टॉपिक ये है कि हर सीजन अपने में कुछ ना कुछ संजोकर लेकर आता है और हर जो सीजन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी स्पेशलिटी होती है। तो गर्मी के जो सीजन में आपको कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी लगती है, जो आपको रहता है गर्मी का इंतजार। तो ये टॉपिक है आज का और इस टॉपिक पर आपको अपने व्यूज हमें भेजने हैं और व्यूज आपको भेजने हैं हमारी ईमेल आईडी पर। और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। तो आप हमें अपने मेल्स भेजिए इस टॉपिक पर और हम भेजते हैं आप तक एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना। तो आप भी इंजॉय करिए और मैं भी इंजॉय करती हूँ यहाँ पर। तो चलिए दोनों इंजॉय करते हैं और साथ ही भाई मेल्स जरूर से लिख भेजिए कि क्या आपको पसंद है इस गर्मी के मौसम में।

जी 1:25 का वक्त, और देखिए ना जो हमने आपको टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड हमारे पास व्यूज भी आना शुरू हो गए, और हमारे पास मेल आ चुका है सुधान बाबा जी का। इन्होंने लिखा है, गर्मी का आम अच्छा लगता है, अगर भी क्या गर्मी तो और अच्छा लगता है। मजे की बात, बातें की रेडियो बंद होते हैं तुरंत चालू कर देते हैं लोगों ने। हम लोग 3 लोग हैं और बहुत ही ज्यादा रेडियो सुनते हैं, मुझे लगता है इन्होंने लिखा है। थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट, बजे से लेकर 12 बजे रात तक, अच्छा 6 बजे से जब तक रेडियो स्टार्ट होता है तब तक ये जो है रात तक रेडियो सुनते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप इतने प्यार और एहसास से हमसे जुड़े हुए हैं, और लिखा है सो जाते हैं कभी कभी तब भी रेडियो चलता रहता है, 12 बजे के बाद ही रेडियो बंद होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे से हमारे प्यार और एहसास से हमसे जुड़े हुए हैं। और इन्होंने सुधान बाबा नरेश पंडी और पप्पू जी का नाम लिखा हुआ है, और इन्होंने लिखा है कि हमें गर्मियों में आम अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ वही मैंने कहा कि हर चीज की कुछ ना कुछ, हर सीजन की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, तो इनको आम बहुत पसंद है गर्मियों में। और हमारे पास शिव पूजन लाल जी का मैसेज आ गया है, मेल आया है। इन्होंने लिखा है, हेलो डियर रॉकिंग शिखा मैम जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप? भाई आपको भी गुड आफ्टरनून, और मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं शिव पूजन फ्रॉम विलेज सनी गावा लखीमपुर खीरी से। आज का टॉपिक बहुत अच्छा लिया है, टॉपिक गर्मी का सीजन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में आइसक्रीम, तरबूज, लीची आदि खाने को मिलते हैं, और गर्मी की छुट्टी स्कूल में मिलती है, और खास बात ठंडी जगहों पर घूमने में मजा आता है।

और विकास जी ने हमें मेल कर दिया है। हेलो मैम नमस्कार, मैं विकास गांव सलीद तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं। मैम मुझे गर्मी के मौसम में आम खाना अच्छा लगता है, नाना नानी के घर जाना घूमना अच्छा लगता है। और रवि कुमार राहुल जी का मेल आया है हमारे पास, इन्होंने कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से मेल किया है और इन्होंने टॉपिक से रिलेटेड नहीं लिखा है, इन्होंने कुछ नाम लिखे हैं तो मैं जरूर से पढ़ दूंगी। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। तो आपको बता दूं रवि जी कि आपको मेल से मतलब जो आज का टॉपिक है उससे भी रिलेटेड कुछ लिखना चाहिए था और मुझे लगता है कि टॉपिक सभी को समझ में आ गया था। ईजी, बहुत ईजी टॉपिक है कि आपको ये बताना है कि जो ये गर्मी का सीजन चल रहा है उसकी स्पेशलिटी क्या है और वो स्पेशलिटी में आपको क्या अच्छा लगता है। तो हम और भी मेल पढ़ेंगे।

लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अच्छा सा गाना मैंने लगा के रखा है, तो चलिए इंजॉय करते हैं। ये बेहतरीन सा ट्रैक आप तक आ रहा है और मैं भी साथ में इंजॉय करूंगी।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: जी 1:36 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उठो पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। और हमारे पास अजमत अंसारी जी ने मेल किया है और इन्होंने आई थिंक कुछ लिखा नहीं है, मेल किया है इन्होंने। और हमारे पास रामेश्वर जी ने मेल किया है, होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन जी को सप्रेम नमस्कार, प्रणाम नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, हमें बेहद अच्छा लगता है और बेहद अच्छी प्रस्तुति होती है, और बेहद अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, हमें नींबू पानी की CNG अच्छी लगती है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ग्राम व पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधू निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, बेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे पास मेल आया है वकील अहमद जी का, इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों के सीजन में तरबूज, खीरा, ककड़ी और गर्मी वाले फल खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर जाहिद अली चाचा साइकिल बना रहे हैं, गर्मी हमारे यहाँ बहुत तेज हो रही है। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी महक। तो आपको बता दें भाई, गर्मी यहाँ भी बहुत हो रही है और आपको इस गर्मी में अपना ख्याल भी रखना है, चीजें तो आपको एंजॉय करनी ही करनी है, क्योंकि जो सीजन है वो अपने में काफी कुछ संजो कर लेकर आता है और उस सीजन हमको वो चीजें बहुत अच्छे से उसका यूज करना चाहिए और अच्छे से खाना पीना चाहिए, जो भी चीजें उससे बहुत अच्छे से आनंद लेना चाहिए। और आपको बता दूं, लेकिन ये जो सीजन है ये अपने साथ साथ बीमारी भी बहुत लेकर आता है, तो इस चीज के बारे में भी आपको बहुत ध्यान देना है। घर से निकले तो अच्छे से अपने को कवर करके निकले, पानी की बॉटल साथ में जरूर रखें और बहुत जरूरत हो तभी घर से निकले। जी मीका जी का हमारे पास मेल आ चुका है, इन्होंने राजाजीपुरम से हमें मेल किया है, इन्होंने लिखा है कि मैं प्रोग्राम सुन रही हूं, बहुत अच्छा लग रहा है और गर्मी के

बारे में मैं कहना चाहती हूँ, मैम गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, घर के अंदर भी लगता है एसी काम नहीं कर रहे हैं। तो गर्मी तो सच में है और बिल्कुल सही बात है कि लगता है कि एसी भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चीजों को इंजॉय करना है, चीजें होती हैं, बस थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है। और इन्होंने लिखा है कि मुझे गर्मी की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि आपको कहीं भी जाना है कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी कपड़े पहन लीजिए और आप चले जाइए, लेकिन ठंड में निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, शॉल ले ली, स्वेटर ले ली, ये कर ले, वो कर ले। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो चीजें अपने में हैं, हर सीजन अपने में कुछ ना कुछ बेहतर लेकर आता है, तो हर सीजन की अपनी स्पेशलिटी है। तो बहुत अच्छा है कि आपने अपने व्यूज हमसे शेयर करे। और रविंद्र जी ने भी हमें मेल कर दिया है, इनका मेल हमें बाराबंकी से आया है। इन्होंने लिखा है कि मैम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक गीत हम सुन रहे हैं। और गर्मी के सीजन में मुझे कुल्फी खाना बड़ा अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली नहीं तो हर दूसरे दिन खाऊं जरूर कुल्फी, क्योंकि ये जो सीजन है बड़े मस्ती वाला होता है और ठंडी चीजें हम इसी समय इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात करी। और बोल रहे हैं कि साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन अपनी फैमिली को भी बाहर ले जाऊं और उनको कुछ अच्छा खिलाऊं और साथ में कुल्फी का आनंद तो जरूर लूं। और एमन नवाब जी ने हमें मेल कर दिया है, हेलो शिखा दी, गुड आफ्टरनून, गर्मी में मुझे खाना खाने के बाद आम तरबूजा खाना बहुत पसंद है, खाना तो बस मैं फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए खाती हूँ। बेल का शरबत बहुत फायदेमंद होता है, रूह अफ़ज़ा का शरबत पीती हूँ, गर्मी की स्पेशलिटी है। गर्मी में ठंडी ठंडी एकदम फ्रीजिंग कोल्ड आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। और बताऊँ मुझे गर्मी में क्या पसंद है दीदी, आप हंसोगे, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, एकदम कूलर के आगे मुंह करके हवा खाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए ना कितनी मजेदार मजेदार चीजें हैं ना, जो हम लोग अपने में करते तो हैं लेकिन दूसरों को नहीं बता पाते, लेकिन जब इस तरीके के टॉपिक आते हैं तो आप जब दिल खोल के अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल हंसने वाली बात है। और मैं भी कभी कभी जब मतलब बहुत गर्मी लगती है तो मैं भी ऐसा करती थी।

जी, और हमारे पास निहारिका जी का मेल आ चुका है। इन्होंने सफेदाबाद से मेल किया है। इन्होंने लिखा है कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे अपने व्यूज शेयर करी हूँ और मुझे आपको प्रोग्राम में आने का इंतजार रहता है। तो बढ़िया, ये लीजिए, मैं आज हूँ आपके साथ, तो बढ़िया एंजॉय करते हैं प्रोग्राम, आप भाई बने रहिएगा हमारे साथ। और इन्होंने लिखा है कि मुझे घूमने जाना बड़ा अच्छा लगता है। जब शाम का टाइम होता है तो मैं सारे काम वाइंड अप करके घूमने निकल जाती हूँ। अगर बहुत दूर नहीं जाती तो आसपास के मंदिर में चली जाती हूँ, मतलब थोड़ा सा वॉक करती हूँ और शाम का एक मेरा एक रूटीन बन जाता है गर्मी में ये करने का। तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी और सब आपने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज शेयर करे। तो एक मैं सोच रही हूँ कि एक गाना भी भेज दूँ आप तक, क्योंकि गाना अभी बहुत ज़रूरी है आप तक आने के लिए, मतलब सुनने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम और 100.7 FM रेनबो हो तो भी क्या बात है ना। तो चलिए इन्जॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

तो देसी दोस्तों, हमारे पास देखिए मेल आ चुके हैं। श्रेया मिश्रा जी ने हमें मेल किया है। हेलो मैम, मेरा नाम निहाल है। मुझे वाटरमेलन खाना पसंद है। मतलब इन्होंने तीन लाइंस में अपनी पूरी एक्सप्रेस कर दिया है कि इनको गर्मी के सीजन में तरबूज खाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, सही बात है, तरबूज को जब आप काला नमक डाल के जो है इंजॉय करिए ना, तो एक अलग ही आनंद आता है। तो इंजॉय करिए बस आप सीजन। अजमत अंसारी जी ने, हेलो मैम, मुझे गर्मी में बाग में बैठना पसंद है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बाग में जब गांव का जो मौसम होता है, बाग में जाना और वो इमेजिनेशन करिए ना, बहुत अच्छा लगता है। तो सही बात है कि इतनी चीजें आप जो बता रहे हैं, मुझे भी कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ। सॉरी शिखा जी, गुड आफ्टरनून। होठों पर दिल की बात, होठों पर तेरी बात कार्यक्रम, इन्होंने लिखा है दिल की बात। तो सच में दिल की बात ही तो है जो आपकी हम पढ़ते हैं और आप अपने व्यूज हमें शेयर करते हैं। कार्यक्रम काफी अच्छा चल रहा है। विनोद कुमार गुप्ता गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी में, आपका प्रोग्राम प्रतिदिन सुनता हूं। कूलर से जब पानी की छींटे आने लगती हैं तो बड़ा मजा आता है। मैं आपका प्रोग्राम, अजय कुमार मिश्रा मेरे मित्र हैं, उनके साथ सुन रहा हूं। तो बहुत अच्छी बात है भाई, फ्रेंड्स के साथ कोई भी चीज एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है। सुनील पाठक जी ने हमें मेल कर दिया है और इन्होंने लिखा है कि आज इनका मेल आया। अच्छा, इन्होंने गाने की फरमाइश करी आई थिंक। तो गाने तो हम आपके अभी प्ले करेंगे ही सच में, लेकिन अभी तो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात, उसमें हम आपकी जो बात है आप कहना चाहते हैं, हम उस चीज को पढ़ते हैं। नमस्कार, गर्मी के दिनों में आम को आग पर पक्का कर फिर बीट नून पानी के साथ घोल कर पीना अच्छा लगता है। बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मेल किया है। छाछ जो दही से बना है, अच्छा इनका जो आग पर भून के वो जो पना बनता है ना, हाँ सच में पना पना का जो टेस्ट है ना, वो एक अलग ही होता है। बहुत इंजॉय करने का बहुत मन करता है और हर चीज अपने में कुछ ना कुछ संजोए हुए होता है। और चलिए, इन्होंने लिखा है बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से इन्होंने हमें मेल किया है। और अब गाना एक हम सोच रहे हैं आप तक पहुंचा दें, बहुत अच्छा सा ट्रैक है, वो आ रहा है आप तक।

जी 1:56 का वक्त और ये वक्त कह रहा है कि भाई अब टाटा बाय बाय करना होगा प्रोग्राम होठों पे तेरी बात से। जी हाँ, इजाजत तो लेनी होगी प्रोग्राम से, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि आपकी ये दोस्त अभी रहेगी आपके साथ अगले प्रोग्राम में। जी हाँ, रेनबो हॉटमेल, और उसमें करना क्या है, उसमें आपको अपने ट्रैक्स भेज रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और अभी खूब ढेर सारी बातें भी होंगी। तो चलिए हम टाटा बाय बाय करते हैं इस प्रोग्राम से, लेकिन मिलते हैं अगले प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल में। तब तक के लिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर।

0: evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले तीन दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टुन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओरपो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक

0: संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि

0: धर्म के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम

0: बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी 2:32 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेनबो हॉटमेल, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखाए आपके साथ। और हमारे पास मेल आ चुके हैं और ये मेल हमारे पास जो लाइन लगी हुई है वो हमसे कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए मेरा नाम। जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो बिल्कुल बेकरार हो रहे हैं कि भाई उनका नाम ले लिया जाए। तो तुलसी मस्कीन जी ने हमें मेल किया है। रिस्पेक्टेड होस्ट मैम जी नमस्कार, किसी भी गीत में मेल पढ़े, थैंक यू सो मच। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना और रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना। और हमारे पास मेल आया है बबलेश पनवार जी का। बबलेश जी ने लिखा है, इन्होंने गाने की फरमाइश करी है और लिखा है पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब से इन्होंने मेल किया है। गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा, दिनेश चौहान ने, और डांगरी से बाबू राम जयपाल। तो थैंक यू सो मच आपने मेल किया। और हमारे पास रामेश्वर जी ने मेल किया है, हॉट मेल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता आरजे शिखा बहन जी को नमस्कार, हम आपका लोकप्रिय कार्यक्रम हॉट मेल बराबर सुन रहे हैं, हमें बेहद अच्छा लगता है बहन जी, अच्छी प्रस्तुति है बहन जी, शिखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहन जी। मेल बार बार बहन जी कर रहे हैं तो मैं थोड़ा वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रहा है। बहन जी मेल जरूर शामिल कर लें, धन्यवाद आपको, हमें कोई भी गीत में शामिल जरूर करें, मजबूरी में दूसरा मेल कर रहा हूँ प्लीज, लेकिन ये बिल्कुल भी शिकायत इस तरीके से मत करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, मेल्स हम आपके ही पढ़ते हैं और ऊपर नीचे मेल्स हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है इतने ढेर सारे मेल एक साथ ही और एक ही इंसान कई कई बार मेल कर देता है, तो आपकी मेल्स हमारी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि भाई दिल के अजीज जो लोग होते हैं उनका मेल तो भाई पढ़ना बनता है, और सभी आप लोग हैं बहुत ज्यादा अजीज। कोई भी गीत सुनवा दीजिए। शहरूर नूर अंसारी ग्रामा पोस्ट हरहरपुर मचकली जिला बरेली से, और इन्होंने राजू मिगलानी जी ने हमें मेल किया है। प्रोग्राम हॉट मेल पेश करता जी प्यार भरा नमस्कार। इन्होंने

एक बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश करी है, तो हमारी पूरी कोशिश है हम आप तक वो गाना जरूर पहुंचाएं। और हमारे इन्होंने लिखा है, इन्होंने डेडिकेशन लिखा हुआ है, दुर्गा राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, शुक्रिया मेहरबानी जी। और हमारे पास सुधान बाबू, बाबा जी प्लीज मेरा मेल पढ़ें। तो भाई आपका मेल तो मैंने पढ़ लिया है, आई थिंक पढ़ भी लिया था, और कोई भी स्किप नहीं करते हैं, कोशिश तो यही रहती है। और मोहम्मद सादिक जी ने हमें मेल किया है, मोहतरमा शिखा जी आपको दिल से आदाब, आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत हमें सुनवा दीजिए। फरमाइश करते हैं पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद सादाब खत्री, मोहम्मद रोड गोगावा से। और मनोज बंसल जी ने हमें मेल किया है, मोहतरमा शिखा जी आपको दिल से आदाब। और आई थिंक मैंने इनका दोबारा मेल पढ़ दिया, एक एक एक एक बार मेल स्किप हो जाता है। साई साई गायकवाड़ जी ने हमें मेल किया, हॉट मेल सादर करने प्रस्तुत करता वने शिखा दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून जी। हमें एक गाना इन्होंने लिखा है, बिल्कुल हम सुनवाने की कोशिश है हमारी कि वो गाना आप तक हम जरूर पहुंचाएं। और बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मेल किया, नमस्कार, फिल्म एक गाना लिखा है इन्होंने, और दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री, और बहुत ही प्यारा सा मेल इन्होंने भेजा है, पियारा बाजार झुमरी तलैया से शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, खदान कोठी, बोरा पारा चौक बसबेरिया, और वसंत लाल साव, हीरा मोती, पन्ना लाल साव, बी के सिन्हा, थैंक यू। और थैंक यू आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से मेल करते हैं और इतना डेकोरेटिव मेल करते हैं कि दिल तो आपसे बात करके वैसे भी खुश रहता है, लेकिन जब मेल पढ़ते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है कि इतना प्यार और एहसास आप अपने मेल में सराबोर करके भेजते हैं। तो एक प्यारा सा गाना है, वो आपकी ही पसंद का है, तो चलिए एंजॉय करते हैं हम और आप ये प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, हमारे पास देखिए मेल आ चुके हैं, बहुत ढेर सारे मेल आए हैं और शंकरलाल जायसवाल जी ने हमें मेल किया है। इन्होंने लिखा है फिल्म, एक प्यारी सी फिल्म लिखी है, वो बहुत अच्छी फिल्म है और गाना भी बहुत अच्छा है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक जरूर वो गाना पहुंचाएं। जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मेल किया है। शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल इन्होंने हमें मेल किया। राजकुमार दूधी ने हमें मेल किया है गांव फ्रांसी हिसार से। राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी जी का इन्होंने हमें मेल किया है। कोई भी गीत में शामिल कर लीजिए। नरेश जी ने हमें मेल किया है। नमस्कार जी, आरजी जी, शुक्रिया कहना तो भूल गए थे, आपका शुक्रिया। शुक्रिया ईमेल नाम शामिल करने के लिए नहीं भेजा है दीदी जी, सदा खुश रहिए। आप शामिल नहीं करना हमें दीदी जी, प्लीज, लगता है आप शामिल नहीं करोगे, बस आपनों को शामिल करेंगी, ईमेल भी नहीं भेजेंगे, भी शामिल नहीं करेंगे। अरे मतलब इतना गुस्सा क्या ही है, गुस्सा तो होना बिल्कुल भी जायज नहीं है, अपने अपने अपनों से गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए आपका मेल शामिल हो गया और कोशिश हमारी रहती है कि आपके जितने भी आप लोगों ने हम लोगों से फरमाइश करे है गाने की, हम आप तक जरूर पहुंचाएं, तो नाराजगी बिल्कुल भी, अच्छा ये भी कह सकते हैं नाराजगी अपनों से ही जाहिर करी जाती है, हम आपके अपने हैं तो आप नाराजगी जाहिर कर लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपका मेल शामिल हुआ और मैं फिर से कह देती हूँ, भाई नरेश जी ने हमें मेल किया है और बहुत प्यारा मेल करा है, फ्लावर्स भेजे हैं, तो आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, गुस्सा करते हुए नहीं अच्छे लगते। और हमारे पास लालगिरी जी ने मेल किया है, कार्यक्रम हॉटमेल पेश करता आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हो दीदी जी, आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गाना इन्होंने भेजा है तो हमारी पूरी कोशिश है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से इन्होंने मेल किया है, लालगिरी गोस्वामी हेमलता। और रामकिशोर यादव जी ने हमें मेल किया है, हेलो एफएम रेनबो लखनऊ, लखनऊ की ट्रैफिक और हमारी लाइफ दोनों एक जैसे हो गए हैं, ना स्पीड मिल रही है ना ही डायरेक्शन, प्लीज एक धमाकेदार गाना प्ले कीजिए। तो चलिए बिल्कुल रेडी है एक धमाकेदार गाना आप तक आने के लिए और आपकी ही पसंद का वो गाना है, तो चलिए हम एंजॉय करते हैं।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

जी हमारे पास मेल आ चुके हैं, बहुत ढेर सारे मेल हैं और हमारे पढ़ने का टाइम भी हो रहा है भाई, क्योंकि धीरे धीरे टाइम कह रहा है कि वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम को, लेकिन हमारे पास 6 मिनट है और कोशिश रहेगी कि हम आपके जितने भी मेल आए हैं उनका उनको हम पढ़ जरूर लेंगे। रविन्द्र मोहन जी ने हमें मेल किया है, कोई गीत सुना दे किशनगंज बिहार से, रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी। और रोजी डिकैस्ट्रो जी ने हमें मेल किया है, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड होस्ट, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, और गाना इन्होंने एक भेजा है, कोशिश है कि प्ले कर दें। अनंत राम मिश्रा जी ने, शिखा जी आपने आज तक अपने कार्यक्रम में कभी मेरा नाम शामिल नहीं किया, ये लीजिए भाई आपका नाम शामिल हो गया, मेरा मेल शामिल करते हैं मगर आपने

कभी शामिल नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ले लीजिए अनंत राम जी, आपकी आज जो ये गलती थी, मतलब गलत फहमी थी कि मैंने आपका मेल नहीं शामिल किया, आज आपका मेल शामिल हो गया। आज के बाद आप जिस कार्यक्रम में होंगी मैं मेल नहीं करूंगा। भाई गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा कि अपने लोगों से गुस्सा होइए लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा मत होइए, और आप सब तो हमारे बहुत ही ज्यादा दिल के करीब हैं। सिद्धार्थ जी ने हमें मेल किया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से, और अब हमारी कोशिश है कि हम सबके नाम पढ़ लें जल्दी जल्दी से। रोजी डिकेस्ट्रो, सिद्धार्थ गुनाने और शहरू नूर अंसारी, रोजी डिकेस्ट्रो, रविंद्र मोहन दास जी, अनंत राम मिश्रा, ताज मोहम्मद जी ने हमें मेल किया है, स्वरण सिंह जी ने मेल किया है, बोधराज कोरवाल जी ने मेल किया है, और रविंद्र मोहन दास नरेश जी ने मेल किया है, अशोक कुमार जी ने मेल किया है, अहमद फुलवाले जी ने मेल किया है, और मोहम्मद सादिक जी ने मेल किया, संदीप मकर जी ने मेल किया है, ताज बहादुर यादव जी ने मेल किया है, अहमद फुलवाले, रविंद्र मोहन दास, विजय महोबिया और अजमत अंसारी, संदीप मकर, रविंद्र मोहनदास, जाकिर और रविंद्र मोहनदास जी, सतीश अनेजा, पिंकू सोनी और लालगिरी, संजय ढींगिया, और भी बहुत से लोगों का मेल आया, और हमने कोशिश करी है कि आप सभी के नाम ले लिए हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई गुस्सा मत हुई है, और पूरी कोशिश रहती है कि आपके सॉन्ग आप तक पहुंच जाएं, और अगर नहीं पहुंच पाए तो उसमें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम रोज आता है, तो आज आपका अगर नहीं हो प्ले हो पाया तो कल जरूर से प्ले होगा। और सभी गाने मुझे लगता है कि इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आप ही के सब लोग हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं दिल के तार जरूर जुड़े होते हैं, तो एक से बढ़कर एक गीत जो पहुंचते हैं ना वो बहुत अच्छे अच्छे, जितने आप लोग जो मेल करते हैं सब बताते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, अच्छे गीत सुन रहे हैं, तो सब लोग जो भी चीजें हैं बस उसको इंजॉय करिए, हर पल कहते ना इंजॉयमेंट भरा होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से एक बहुत ही प्यारा गाना आप तक भेज देते हैं, और गाना आ रहा है आप तक।

तो 2:57 का वक्त और इसी के साथ अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत कार्यक्रम हॉटमेल से, लेकिन अगला प्रोग्राम रे सतरंगी दुनिया भी आप एंजॉय करेंगे अपनी दोस्त रेखा के साथ। तो बस ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ देसी वेलनेस एंड गोल्डन मेमोरीज। जी हाँ, जहाँ पुरानी आदतों की खुशबू में छिपा है हेल्दी लाइफ का असली राज। जनाब, ना कोई जिम, ना कोई प्रोटीन शेक, ना मोबाइल की स्टेप काउंटिंग्स, फिर भी लोगों के चेहरे पर चमक, शरीर में फूर्ती और दिलों में सुकून होता था। क्योंकि जनाब, पुराना वक्त वो दौर था जहां लाइफ हेल्दी थी। नानी के हाथ का सत्तू, आंगन की धूप, कुएं का पानी, जी हाँ ठंडा ठंडा पानी, और सुबह सुबह की वो देसी दिनचर्या। जी हाँ, म्यूजिकार प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं आप, और आज बात हो रही है हेल्दी लाइफ के देसी अंदाज की। तो चलिए बात करते हैं हम और आगे। जी हाँ, हेल्दी लाइफ का देसी अंदाज क्या था, यही तो थी मतलब एक खूबसूरत सी दिनचर्या जो बिल्कुल देसी स्टाइल में थी, और यही तो है असली फिटनेस का मंत्र। आज चलिए इस खास महफिल में पुरानी यादों की गठरी खोलते हैं और खोजते हैं कुछ हेल्दी लाइफ के देसी अंदाज को, जहां पुरानी बातें सिर्फ यादें नहीं बल्कि आज की जिंदगी के लिए सीख है। हेल्दी लाइफ के देसी अंदाज के साथ मैं हूं आरजे मालिनी।

यादों की अलमारी। जी हाँ, यादों की अलमारी जब खुलती है ना, तो दोस्तों उसमें सिर्फ पुरानी तस्वीरें नहीं मिलती, बल्कि हमारे कुछ ज्वेलरी, पुरानी कपड़े और उनसे जुड़ी हुई यादें और पुरानी मेहनत की आवाज तो बिल्कुल सुनाई देती है हमें। जी हाँ, उन चीजों से जो है हमारी पुरानी मेहनत की आवाज सुनाई देती है, वो हाथों से चलने वाली चक्की आपको याद है, जिसमें न सिर्फ गेहूं ही पिसता था, जी हाँ उसमें गेहूं पीसा जाता था, पूरे घर के लिए आटा तैयार किया जाता था और पूरे परिवार की सेहत और अपनापन उस आटे में घुला होता था। और सुबह सुबह घर में दादी माँ और चाची का मिलकर चक्की चलाना और साथ में होती थी लोकगीतों की मीठी मीठी सी तान, और ये सब मिलकर के साथ एक्सरसाइज भी हो जाती थी और घर में ना खुशियों भरा संगीत भी गूंजता था। आज मशीनों ने बेशक काम को आसान कर दिया है, हमारा काम बहुत आसान हो गया है, ये आप भी जानते होंगे, लेकिन उस दौर की जनाब जो मेहनत थी ना, उसमें तंदुरुस्ती के साथ साथ रिश्तों को भी मजबूती प्रदान की जाती थी। जी हाँ, तंदुरुस्ती तो बनती थी, साथ साथ रिश्ते भी मजबूत होते थे। और दोस्तों, आप भी म्यूजिक आर प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो बताइए, क्या आपने अपने घर में महिलाओं को हाथ से चक्की चलाते हुए देखा है, या खल मूसल में मसाला कूटते हुए देखा है, या सिलबट्टे पर चटपटी सी चटनी को पीसते हुए देखा है, तो आप बताइए और हमें मेल करिए हमारे मेल आईडी पर। जी हाँ, देखिए खल मुसल की आवाज आने लगी ना, हमारा मेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। तो जल्दी से बनिए प्रोग्राम का हिस्सा और चलिए यादों की अलमारी की ओर एक बार फिर चलते हैं।

बैगन परा।

तो दोस्तों हमें आपकी मेल्स का इंतज़ार है कि आपने अपने घर में किसी भी पुरानी महिला को, अपनी दादी नानी को, किसी को भी चक्की चलाते हुए, गेहूँ पीसते हुए या खल मूसल में जो है मसाला कूटते हुए या फिर सिलबट्टे पर चटनी पीसते हुए देखा है कि नहीं, तो मेल जल्दी जल्दी से हमें करिए। हमारा मेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट है हम। म्यूजिक आर में आज बातें हो रही हैं हेल्दी लाइफ के देसी अंदाज की। क्या है हेल्दी लाइफ का देसी अंदाज? जी हाँ, तो आप हमें शेयर कर रहे हैं, हमें आपकी मेल्स का इंतजार है। और अभी जो गाना आपने सुना ना, नमकीन फिल्म का सॉन्ग था, उसमें मसाला कूटती हुई मुस्कुराती हुई महिलाओं को देखकर ना बड़ा आनंद आता है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी हो तो देखिएगा जरूर। खल मूसल में साथ मिलकर मसाला कूटती मुस्कुराती महिलाएं दिख रही हैं, और महिलाओं के हाथों में मेहनत की लय, होंठों पर हंसी की खनक और दिलों में अपनापन है। जी हाँ, ये वो दौर था जनाब जब काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक खूबसूरत उत्सव हुआ करता था। और दोस्तों कमाल देखिए ना, साथ मिलकर काम करते करते सेहत भी अच्छी रहती थी और रिश्तों में मिठास भी घुलती थी। जी हाँ, वो लम्हे बड़े ही सुनहरे हुआ करते थे जब हम अपनों के साथ रोज टाइम स्पेंड करते थे। उन्हीं सुनहरे रंगों और मीठी यादों के साथ बढ़ते हैं अगले से शानदार गीत की ओर। सॉन्ग कनेक्ट करेगा पुराने दौर से।

भाई इस गाने ने गर्मियों में ठंडे ठंडे पानी की, जी हाँ, मटके के पानी की याद दिला दी। मटके की यानी कि समर, धूप, पसीना, और इसके बाद अगर ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो जनाब गला राहत से भर जाता है। तो चलिए बात करते हैं उस दौर की जब पानी सिर्फ जरूरत नहीं, रिश्तों और सेहत से जुड़ी खूबसूरत कहानी हुआ करता था। गांव के घरों में नल नहीं होते थे, अक्सर महिलाएं ना सुबह सुबह सिर पर घड़ा लेकर दूर हैंड पाइप या कुएं तक जाया करती थी। रस्सी से कुएं से पानी खींचना, घड़ा भरना, सिर पर रखकर दूर दूर तक चलना, और पता है ये वॉक जो होती थी ना, ये उनकी नेचुरल एक्सरसाइज हुआ करती थी। और साथ में ना रास्ते में, जी हाँ रास्ते में, वो हंसी ठिठोली भी करती थी, यानी कि उनका जो दिमाग था ना वो भी कूल हो जाता था इस हंसी ठिठोली के साथ, और ढेर सारी बातें, और इन सब बातों के साथ ना थकान भी मुस्कान बन जाया करती थी। बेशक वो दौर सुविधाओं में थोड़ा पीछे जरूर था, लेकिन अपनेपन और सुकून में सबसे आगे था। थकान मिट्टी थी मटके के सोंधे पानी से।

दोस्तों जल्दी से आप मेल करिए, हमें आपकी मेल का इंतज़ार है। आप इस प्रोग्राम का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बताना है कि आपके भी घर में आपने किसी ऐसी महिला को देखा है अपने घर में जो जिसने मतलब चक्की से आटा पीसा हो, या जिसने सिलबट्टे पे चटनी पीसी हो, या खलमूसल में मसाला कूटा हो, या हाथ वाला पंखा चलाया हो। जी हाँ, तो आप हमें मेल करिए। हमारा ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com और बनिए हमारे प्रोग्राम यानी म्यूजिक आर प्रोग्राम का हिस्सा। और म्यूजिक आर में आज बातें हो रही हेल्दी लाइफ के देसी अंदाज की। वाकई क्या दिन थे वो दिन भी दोस्तों। आपको चूल्हा याद है? जी हाँ, घर के चूल्हे को जब हमारी माँ या दादी फुकनी से धीरे धीरे मारकर आग सुलगाती थी और घर वाले पास बैठकर भोजन को पकते हुए देखते थे, यानी इंतजार करते थे कि कब भोजन पकेगा और हम जल्दी से भोजन खाएंगे। जी हाँ, एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि चूल्हे की आग को लगातार जलाए रखने के लिए हमारे घर की जो महिलाएं हुआ करती थी वो फुकनी का इस्तेमाल करती थी। फुकनी से फूंक मारती थी और जब आग सुलग जाती थी तो भोजन पकाना शुरू कर देती थी। अच्छा, आपको पता है फूंक मारना भी ना कहीं हमारी सांसों की एक्सरसाइज हुआ करता था। योग में जैसे प्राणायाम होता है ना, बस वैसी ही गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ने की प्रक्रिया। जी हाँ, फुकनी के द्वारा फूंक कर चूल्हा जलाया जाता था और इस प्रक्रिया से जैसे ही चूल्हा जल उठता था चेहरे पर अपने आप एक छोटी सी जीत वाली मुस्कान आ जाती थी। आहा, आग जल गई, बस रोटी पकाना शुरू हो जाता था और चूल्हे से निकलने वाले धुएं में भी ना घर की खुशबू बसा करती थी उस वक्त।

0: आंसू की रोटी।
1: जी हाँ, रोटी और मटके का ठंडा ठंडा पानी खा कर वाकई में मजा तो आता है। कभी आप भी खा कर देखिएगा, इसका स्वाद जरूर चखिएगा। और मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ एक मेल हमारे पास आ चुकी है सुधाकर जाधव की। ये मेल आई है देशमुख वायाल परिवार पूरा लिखते हैं, और ये मेल करे हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से है। ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम इसको लाइव सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और गाने इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि आपके घर में कोई ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी चक्की चलाती हैं, या आज भी कभी आपने घर में कोई चक्की रखी हुई देखी हो, या फिर आपने खलमुसर देखा हो, या फिर आपने सिलबट्टे पे चटनी पीसती हुई महिलाओं को देखा हो, या हाथ से पंखा झलती हुई। तो जल्दी से आप हमें मेल करिए और कनेक्ट रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट से। जी हाँ, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आप टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
5: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
7: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
6: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपके पसंद

0: 102.2 FM रेनबो द म्यूजिकल हार्ट बीट।
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है
0: AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
2: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।

वेलकम बैक टू द शो म्यूजिकार। म्यूजिकार में आज बात है हेल्दी लाइफ के देसी अंदाज की। जी हाँ, और इन्हीं पुरानी बातों के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी।

हमारी स्क्रीन पर एक मेल और आ चुकी है जो हमारी रेगुलर लिसनर हैं नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से। लिखती हैं कि हमारे घर में दादी मम्मी चक्की में आटा पीसती थी और चने का बेसन डालकर उसमें आटा पीसती थी और उसके बाद जो है धान कूटा जाता था खलमूसड़ में। अपनी मम्मी के साथ सब कुछ हमने काम किया है और कुएं से पानी भरकर नहाने में बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा।

लगता था, ठंडा ठंडा पानी होता था। पहले के टाइम की तो बात ही अलग थी। मैंने अपने हाथों से बहुत सारे जो हैं बेना बनाकर अपनी दोस्तों को गिफ्ट भी किया है। आई थिंक बेने का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया नीलू जी। खैर कोई बात नहीं, आप समझ गई हैं और हो सकता है बहुत से लोग समझ भी गए हों। और मेरे घर में चूल्हे पर आज भी खाना बनता है, सिलबट्टी पर मसाला पिसता है और चटनी आज भी पीसी जाती है। बहुत अच्छी मेल थी, थैंक यू सो मच नीलू जी। और अभी जो गाना हम सुन रहे थे, चप्पा चप्पा चरखा चले, जी हाँ, इसकी आवाज़ काफ़ी लोगों की मेमोरी में होगी, है ना जी हाँ। कुछ लोगों ने तो शायद देखा भी हो, घर के आंगन में घर घर गूंजती आवाज़ें चरखे की होती थी। जी हाँ, चरखे से ना हाथों से सूत काटा जाता था। कितना गर्व होता था उस वक्त जब हम अपने देश में बने सूत का कपड़ा पहनते थे। जी हाँ, ये कपड़ा नहीं, ये प्यार का ताना बाना होता था। और ये काम नहीं होता था, ये आत्मनिर्भरता की पहचान भी थी। चरखा घूमता था तो हाथों के साथ साथ मन की भी कसरत होती थी। मन धीरे धीरे उलझनों से निकलकर एक लय में आ जाता था और हाथों की कसरत पर, देखिए मुझे याद आया कि हाथों की असली ताकत तो सिलबट्टे पर नजर आती है। जी हाँ, सिल पर पिसी चटनी जितनी तेज बट्टे से पीसी जाती है, जी हाँ, चटनी उतनी ही महीन होती है। धनिया, लहसुन या फिर पुदीना, अमिया की चटनी की खुशबू का, जी हाँ, इसका सिर्फ नाम लेने मात्र से ही भूख बढ़ जाती है। और अगर इसका स्वाद चख लीजिए तो ये हमारे हाजमे को भी दुरुस्त कर देती है। और पता है, इन बातों में ना देसी सोच के साथ साथ एक्सरसाइज भी पूरी देसी तरह से होती थी। सिल की चटनी की खुशबू रेडियो और मोबाइल सेट्स के जरिए पहुंच रही है फिलहाल आप तक।

वाकई में सॉन्ग था गेट अप एंड डांस करने वाला। जी हाँ, और चटनी का पूरा मजा दे गया सॉन्ग। और देखिए, हमारे जो प्रोग्राम को सुन रहे हमारे लिसनर्स, वो हमें मेल भी करने लगे हैं। एक और मेल स्क्रीन पर आई है, लिखते हैं सुधाकर जाधव जी हैं ये, कहाँ से इन्होंने लिखा है, ये ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इन्होंने मेल की है। आज भी हमारी माताजी पुरानी चक्की घर में रखी हुई हैं, हमारे घर आज भी कभी कभी आटा उस पर पीसा जाता है, चटनी सिलबट्टे पर ही पिसती है। और लिखे हैं उसको अभी भी हमारी माताजी और उनके ऊपर माताजी, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, माताजी उस पर चटनी पीसती हैं और आटा भी चक्की पर पीसा जाता है, और लाल मिर्ची की चटनी इन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी बनती है सिलबट्टे पर। तो चलो, इनकी लाल मिर्च की चटनी का स्वाद भाई हमारे स्टूडियो तक आ गया है, बहुत ही तीखी और चटपटी सी होती है यह चटनी, और सिलबट्टे पर पिसी चटनी का तो वाकई में स्वाद निराला ही होता है। जीभ की कसरत तो होती है और साथ ही साथ ये उंगलियों और हथेली के तालमेल का भी कमाल का जो है तालमेल रखती हैं, और ये तालमेल ना ठीक वैसा ही तालमेल है जैसे कि कभी सलाई ऊन से स्वेटर बुनते वक्त उंगलियां अपनी धुन में चलती थी और दिमाग हर फंदे का हिसाब रखता था। स्वेटर हाथ से बनाते वक्त ना महिलाओं को मानसिक शांति तो मिलती थी और साथ ही साथ रचनात्मकता भी बढ़ती थी और जोड़ों की समस्या से भी बचाव काफी हद तक होता था। और सलाई चलाने से और ऊन के फंदे गिनने से ना महिलाओं का ध्यान घर परिवार की चिंताओं से हट जाया करता था। आपको एक खास बात बताएं, एक वैज्ञानिक अध्ययन में ये साबित भी हो चुका है कि बुनाई करने से ना तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर जो है घटता है और खुशी देने वाले हार्मोन का प्रवाह जो है बढ़ता है। फंदों और पैटर्न को याद रखने से दिमाग की कसरत होती है। जी हाँ, और दिमाग की कसरत होने की वजह से ना डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कमजोर होने का खतरा भी कम होता था। पुरानी सी मीठी यादों के एहसास के साथ चलते हैं एक और सॉन्ग की तरफ।

वाकई में एक वक्त हमें मिल जाए कि हम अपने ख्वाबों को पूरा कर लें तो शायद पुराने दौर में एक बार फिर से हम सब जाना चाहेंगे। भाई सुकून भरे दिन में फुर्सत के वक्त जनाब जब बड़ी ही मुश्किल से हमें मिलते हैं आज, तो उस समय हमें कितने अच्छे वक्त मिला करते थे। जी हाँ, ना तो कोई मोबाइल का टेंशन होता था, ना कोई बाहर के काम की चिंता होती थी, सिंपल लाइफ और सबके साथ घुल मिल के रहना। बट आज के समय में ना फिजिकल एक्टिविटी की तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से गायब सी हो गई हैं, या दिखती हैं तो कभी कभार गाँव में दिख भी जाती हैं। एक आध जगह दिखती हैं तो उनके महत्व को बहुत सारे लोग जान भी नहीं पाते हैं। उनमें से साइकिलिंग करना, जी हाँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और बेस्ट एक्टिविटी है।

आज हमारे देश में साइकिलिंग करने के लिए लोग जागरूकता से जुड़ जरूर रहे हैं। साइकिल का एहसास मात्र एक छोटी सी राइड का अनुभव करा देता है, जैसे कि खुली हवा में चलते पैडल और दिल में रंग बिरंगे सपने। साइकिलिंग के वक्त जब हवा फेस से टकराती है तो स्ट्रेस पूरी तरह पीछे छूट जाता है। साइकिल के लिए ना एक इंटरेस्टिंग ऐसी बात आपसे शेयर करती हूँ। अभी मार्च के ही महीने में 14 वर्षों तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपनी सत्ता का हस्तांतरण नए प्रधानमंत्री डिक शूफ को पदभार सौंपा और फिर अपनी साइकिल का ताला खोला, स्टैंड हटाया और मुस्कुराते हुए अपनी साइकिल पर बैठकर चले गए। उन्होंने ये शो किया कि हेल्थ इज वेल्थ होती है। जी हाँ, उन्होंने अपने पीछे हेल्थ इज वेल्थ का एक खूबसूरत सा संदेश छोड़ दिया। साइकिलिंग यानी कि हेल्थ का सबसे सिंपल और स्टाइलिश नेचुरल रास्ता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है, आपको पता है एम्स्टर्डम को दुनिया की साइकिल राजधानी कहा जाता है। जी हाँ, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर लगभग 515 किलोमीटर तक फैले विशेष साइकिल ट्रैक और लेन का एक सुरक्षित नेटवर्क है। और शहर के जो एम्स्टर्डम शहर है ना, शहर के बुनियादी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कार, पैदल यात्री और साइकिल सवार सुरक्षित रूप से एक साथ यात्रा कर सकें। तो देखिए सेहत के लिए कितना ध्यान रखा जा रहा है। अपने भाई कानपुर शहर के आसपास लखनऊ की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी ना साइकिल ट्रैक कई जगहों पर बना दिए गए हैं। लोग साइकिल ट्रैक पर ही साइकिल चलाते हैं और अपनी हेल्थ को जो है बहुत अच्छी तरह मेंटेन रखते हैं। फिलहाल एक सॉन्ग।

0: आपके दिल की धड़कन, आपका अपना हेलो कानपुर प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं हर रविवार और सोमवार को
1: शाम 4 बजे से 5 बजे तक। सुनिएगा जरूर ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट।
0: तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हर बुधवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच। आपकी आवाज बनेगी रेनबो कानपुर की आवाज।
1: अपनी आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल नोट कीजिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818
0: यानी 0512-254-1818। तो हमें रहेगा
1: आपके फोन कॉल्स का इंतजार।

बजवा दो कनिया आरे कपड़ा के सब।

रस्सी की चारपाई, जी हाँ आपको याद है, जिसको बिछाने और उठाने के लिए कई लोग घर के साथ में मिलजुल कर उठाते थे और उसको बिछाते थे, यानी कि एक कसरत हो जाया करती थी। और बिजली नहीं आने पर सब चारपाई बिछा कर बैठ जाया करते थे अपनी छत पर या अपने लॉन में, और बातों का दौर शुरू हो जाता था और हाथों में होता था झलने वाला पंखा। शायद नीलू ने अभी लिखा भी था, बेना जिसको उसको बेना भी बोलते हैं, बाद में मुझे ध्यान आया तो बहुत से लोग हाथों के झलने वाले जो पंखे होते हैं उसको बेना भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज की हेल्दी लाइफ में हमने जाना कि सेहत सिर्फ जिम की मशीनों में नहीं बल्कि दादी नानी के देसी अंदाज में भी बसती है। हाथ वाला पंखा चलाइए, बाजुओं की एक्सरसाइज हो जाती है और चारपाई पर बैठकर बिताए कुछ पल, जी हाँ वो पल तो वाकई में कभी लौट कर नहीं आते, क्योंकि जो दिल में खुशी बसती है वो उन्हीं पलों से मिलती है और उसी के सादगी में छुपा है आराम और अपनापन। इन्हीं रंग बिरंगी यादों और देसी मुस्कानों के साथ मैं आज लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे एक और म्यूजिक आर या किसी और प्रोग्राम के एपिसोड में। जी हाँ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलूंगी आपकी पसंद प्रोग्राम में इस सॉन्ग के बाद। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्ट बीट।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हो चुके हैं आप, और दोस्तों वायदे के मुताबिक हम आ चुके हैं आपकी पसंद प्रोग्राम के साथ।

और हमारे पास लगातार मेल्स आने का सिलसिला जारी है। और देखिए, सबसे पहली जो मेल हम लेने जा रहे हैं वो दस्तूर फिल्म के गीत के लिए है, आजा बहारों की मलिका। जी हाँ, बहुत प्यारा गाना है, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये गाना। पहले आप चलिए गाना सुन लीजिए। हम बता देते हैं कि ये मेल हमारे पास आई है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमा राज, डुमराओ से वलीउल्लाह अंसारी। तो सबसे पहले हम आपको ये गाना सुना देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि गाना किसने गाया है।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गाना था फिल्म दस्तूर का, और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने, और गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। और इस गीत के लिए हमारे पास और भी मेल्स आ चुकी हैं स्क्रीन पर। हमारे पास मेल आई है, ये प्यार भरा आदाब दीदी जी, आप खैरियत से हो? जी हाँ बिल्कुल खैरियत से हैं, दुआ में याद रखना, बिल्कुल आप याद रहते हैं। सनावर से शेख मूसा मोहसिन ने ये हमें मेल की है, और इसी गाने के लिए हमारे पास एक और मेल आई थी, गाने मतलब ये गाना सुनना चाहते थे, ये वाला दादरी गेट भिवानी से है, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुमार मेहरा। प्यार भरा आदाब दीदी जी, आपकी पसंद का सदाबहार नगमा। जी हाँ, आपकी पसंद का क्या, आप जैसे श्रोताओं की पसंद का ही आपका नाम हमने लीजिए शामिल कर लिया है। खंडवा रोड सनावत से है शहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर, डॉक्टर मोइन शेख, और खंडवा से हैं योगेश गुजराती, आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी। एक और है मेल हमारे पास आई है, हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए, कार्यक्रम बेहद बेहद पसंद आ रहा है, कृपया मेल में हमें भी शामिल कर लीजिए। ये है मंसूर रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। प्यार भरा आदाब दीदी जी, लीजिए आपका भी नाम शामिल हो गया है, खंडवा रोड सनावत से है, जी हाँ, योगेश गुजराती, आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की ओर, जो अगला गाना है वो है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, लता मंगेशकर की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर, गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, और इस गीत के लिए हमारे पास मेल आई है दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से है, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और हैं पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलार वर्मा। और एक और मेल इसी के लिए आई है, ये है बरवट बकाल बुलढाणा से है, नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे, जय हागे, इन सब ने भी इसी गाने को सुनना चाहा है। एक और मेल हमें स्क्रीन पर दिख रही है, प्यार भरा आदाब दीदी जी नमस्ते, नमस्ते जी, ये है खंडवा रोड सनावत से है शहबाज, अरबाज, देखिए आई थिंक आपका नाम हम पढ़ चुके हैं, आप लोग बार बार नाम भेजते हैं, मैं आपसे पहले भी बोलती हूँ जब

प्रोग्राम प्रेजेंट करती हूँ तो एक ही लिसनर लगातार मेल को रिपीट करते जाते हैं, तो अब की बार कोई भी ऐसी मेल आएगी तो फिर मेरी कोशिश यही होगी कि उस मेल को मैं इग्नोर करूँ। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार मेल मत भेजें। एक बार आपकी मेल आई है तो उसको थोड़ा सा वेट करें, आपकी मेल ज़रूर शामिल होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेल की ओर। ये है प्रशांत शिंदे जी, इन्होंने भी कोई भी गाना सुनना चाहे, प्रशांत शिंदे और ये हैं ऋषि शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता शिंदे और रोहित दास चौक पांडरपुर सिटी से हैं। इन्होंने इसी गाने में अपना नाम शामिल करने को कहा है, तो चलिए गाना तो मैं प्ले कर दूं क्योंकि गाना बहुत ही प्यारा सा है, तो गाना पहुंच रहा है आप तक।

अभी जो गाना आपने सुना, इसके लिए हमारे पास और भी मेल्स आई हैं स्क्रीन पर। मैंने सोचा कि चलिए इस मेल्स को और शामिल कर लेते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, नमस्कार। नमस्कार जी, तो चलिए आपकी पसंद का गाना पहुंच चुका है आप तक। और भी हमारे पास मेल आई हैं इसी गाने के लिए। ये मेल हमारे पास आई है नारायण हेगे की। जी हाँ प्रसारक जी, नमस्कार। नमस्कार जी, ये बरवट वकाल बुलढाणा से हैं। नारायण हेगे, नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे, जय हागे, इन्होंने भी इस गाने के लिए फरमाइश भेजी थी। तो देखिए आपका नाम शामिल हो चुका है। अब एक एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललित खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, आराध्या खडसे, वैष्णवी खडसे, तो इन सब का भी देखिए हमने नाम शामिल कर लिया है। आपका भी नाम भाई शामिल हो चुका है। और अब अगली भी मेल चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। बहन जी, आदाब जी, नमस्कार। हमें आप नज़रअंदाज मत करिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, आशा लगाए बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए आपकी आशा हमने पूरी कर दी, आपका नाम शामिल हो गया है। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसेडा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं, बिटिया आसमा नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा,

आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार, तो आप सबका देखिए नाम शामिल हो चुका है। और अब क्या कहते हैं, अगले गीत की ओर बढ़ा जाए। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग भी हम जल्दी से प्ले करते हैं। और नेक्स्ट जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, मोहम्मद अजीज़ और शोभा जोशी की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है हम। तो इस गीत के लिए भी हमारे पास मेल आई है, बहन जी आदाब नमस्कार। तो नमस्कार जी, ये मेल हमारे पास आई है, कहाँ से है ये मेल, रहट गांव कंप अमरावती महाराष्ट्र से है। हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार की, इन्होंने सुनना चाहा है हम फिल्म का गीत। और इसी गीत के लिए हमारे पास मेल आई है, देविन तालाब लालपुर शिवराजपुर से, टीएस चंदेल, खुशबू सिंह चंदेल, निष्ठा रौनक कार्तिक, भारत सिंह चंदेल की, कागज़ कलम दवातला। जी हाँ, हमने बता दिया, अभी ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं। और इन सब का इन्होंने नाम लिया और इन्होंने लिखा है नमस्कार। नमस्कार जी, एक और हमारे पास इसी गाने के लिए मेल आई है, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से है, दीपा वीणा ढींगिया, अनुश्री और देवश्री ढींगरा, और डुमराओ से है वलीउल्ला अंसारी।

एक और मेल सदाबहार लाजवाब कार्यक्रम आपकी पसंद पेशकश करता। मैडम जी नमस्कार, आज गीत बहुत लाजवाब सुनवा रही हैं जी। फिर से हम आपको बता दें, गीत मैं नहीं सुनवा रही हूँ, आप लोगों की पसंद के ही गीत हैं। हमारा भी नाम शामिल कीजिए। तो आपका नाम शामिल हो चुका है राम चबूतरा कालपी से, मोहम्मद इब्तिशाम मंसूरी और अनीश मंसूरी, अमन मंसूरी, अयान मंसूरी और जाकिर बुंदेलखंडी।

इसी गीत के लिए हमारे पास मेल आई है तनु शर्मा की राजधानी लखनऊ से। जीवन का वही रिश्ता अच्छा है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे। मालिनी मैम कैसी हैं आप? आपकी आवाज़ बहुत सुरीली लगती है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। हम तो बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है आप भी अच्छी होंगी। और आपने भी यही गाना सुनना चाहा था और इन्होंने डेडिकेट किया था मालिनी मैम और अपने हस्बैंड को और पूरी हमारे स्टाफ को। थैंक यू सो मच तनु शर्मा जी। एक और इसी गाने के लिए मेल है, सदाबहार लाजवाब कार्यक्रम आपकी पसंद। पेश करता मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आज के गीत बहुत लाजवाब सुनवा रही हैं, हमारा नाम भी शामिल कीजिए। राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद इम्तिशाम मंसूरी, अनीश मंसूरी, अमन मंसूरी, अयान मंसूरी और जाकिर। जी हाँ, आप सबका देखिए नाम शामिल हो चुका है। देखिए शायद आपने दोबारा मेल किया है। एक और है, दीदी जी नमस्कार। नमस्कार जी, हम भी आपका कार्यक्रम बहुत चाव से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप आती हैं तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। थैंक यू सो मच जी, आपने मतलब इतनी शिद्दत से प्रोग्राम को सुनने के लिए वक्त निकाला। और फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका नाम तो शामिल हो ही चुका है और जो गाने देखिए सबकी फरमाइश शामिल हम कर पाएँ तो पॉसिबल नहीं है ना, तो नाम कोशिश यही रहती है कि सभी का शामिल हो जाए। नेक्स्ट टाइम कभी और किसी का भी फरमाइश शामिल हो जाएगी। आदरणीय प्रसारक महोदय जी, प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, आपने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं, ये हैं पीएस नौकर और ये है विशाल नावकर और निर्मला नावकर और ये हैं मलकापुर से हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे,

आशीष मुर्रेकर, इन्होंने थैंक यू भी लिखा हुआ है। अब एक मेल और आई है, मालिनी सिस्टर जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब। नमस्कार जी, प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत ही शानदार है, थैंक यू सो मच जी। ये हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और अब हम सोच रहे हैं आपको अगला गाना भी सुनवा दें। बाजीगर फिल्म का अगला गाना है अलका याग्निक, कुमार सानू की मिली जुली आवाजें, अनु मलिक की धुन है और गीत के बोल लिखे हैं नवाब आरजू ने। इस गीत के लिए हमारे पास मेल आई हमारी रेगुलर लिसनर नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से। खामोश रात के पहलू में सितारे ना होते, इन आंखों में रंगीन नज़ारे ना होते, यकीन मानिए हम भी ना करते परवाह आपकी मनु दी अगर आप इतनी प्यारी ना होती। अरे वाह, आपने देखा है, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना। तो इन्होंने बाजीगर फिल्म का गाना सुनना चाहा है और हमने देखिए बता दिया है, बाजीगर का गाना हम निकाल भी चुके हैं और फिलहाल और भी मेल शामिल कर लेते हैं, देखते हैं। एक और हमारे पास मेल आया, आदरणीय प्रसारक जी आदाब, प्लीज़ मेरा भी नाम शामिल कर लीजिए। तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। मालिनी बहना जी शामिल कर लीजिए ना, रिक्वेस्ट किया, अरे वाह क्या बात है, तो चलिए आपका नाम शामिल हो गया। नमस्कार मालिनी बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी हम भी आपका अभिनंदन करते हैं और आपका नाम देखिए शामिल हो गया। हमारा रिश्ता तो आंख और पलक जैसा गहरा होना चाहिए, जब पलक कुछ देर ना झपके तो आंख रो देती है और अगर आंख में कुछ चला जाए तो पलक तड़प उठती है। वाह क्या बात लिखी है आपने, बड़ी गहरी बात लिखी है। ये है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, तो आपका नाम देखिए सतीश अनेजा जी शामिल हो चुका है। और एक और हमारे पास मेल आई है, ये मेल है आपको मेरा प्यार भरा आदाब। नमस्कार, नमस्कार जी, आप खैरियत से हो? हाँ बिल्कुल खैरियत से हैं। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद अब्बासी, ये है सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और ये हैं यशफ अब्बासी। तो चलिए आपका नाम सबका शामिल हो गया है, गाना भी हम प्ले कर दें। और एक और मेल है सिकंदरा राव से है मुबीन अब्बासी और ये हैं इशरत परवीन।

0: दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गाना था, और इस गाने के लिए हमारे पास और भी मेल आई थी। हमारे पास से जो मेल आई थी इस गाने के लिए वो स्क्रीन पर दिख रही, इंदिरा चौक दिल्ली से है, अजीम वक्कार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। तो इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। और भी हमारे पास मेल आई थी, ये है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अवन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इन्होंने भी इस गाने को सुनने के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी। और एक और मेल आई है, अरे वाह, इन्होंने तो बहुत खूबसूरत सा थैंक यू लिखा है, गोल्डन गोल्डन सा थैंक यू और शाइन कर रहा है, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, और इन्होंने तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया है, अपना नाम शामिल हो गया इसीलिए इन्होंने किया है। तो बहुत खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा था। एक और हमारे पास इसी गाने के लिए मेल आई है, इश्क भरा आदाब मालिनी बुआ जी। देखिए भाई, कुछ रिश्ते होते हैं जो भूल नहीं पाते ही हैं। बुआ जी का रिश्ता तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। हम बच्चों को भी आपके प्रोग्राम में शामिल करने की मेहरबानी करें जनाब, आपका नाम शामिल हो गया है। सनावत से बेबी तस्कीन है, अर्शिल है, मोहम्मद रजा और आरिस शेख हैं। तो सबका नाम देखिए हमने शामिल कर लिया है। फिलहाल तो मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं त्रिशूल फिल्म का गाना। जी हाँ, त्रिशूल फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, यशुदास और किशोर कुमार की मिली जुली आवाजें हैं। खयाम ने धुन बनाई है और साहिर लुधियानवी ने बोल लिखे हैं। और इस गीत के लिए हमारे पास मेल आई है, लिखती है, मैडम जी नमस्कार, हम भी कानपुर के नियमित श्रोता हैं। जी बहुत अच्छी बात है, आप कानपुर का स्टेशन, कानपुर रेनबो या कानपुर का विविध भारती दोनों सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा जान करके। फिर भी हमारी बारी नहीं आती क्योंकि, अरे वाह क्या बात इन्होंने लिखी है भाई, ऐसी ऐसी तो नाराज़गी आपसे कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए आपका नाम आई थिंक मैंने शामिल पहले कर कई प्रोग्राम में किया है। बोधराज खोरवाल जी उत्तम नगर दिल्ली से लिखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मुझे याद है मैंने आपका कई बार नाम शामिल किया। कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इन लोगों ने भी अपना नाम शामिल करने की फरमाइश जाहिर की है। एक और एक गरीब नवाब कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी और नंदिनी रघुवंश, ललित नारायण भाऊ खड से, आराध्या खड से, इन्होंने भी अपना नाम शामिल करने को कहा है। और हम आपको बता दें कि अब हम त्रिशूल फिल्म का गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको। एक और हमारे पास मेल आई जेल रोड जलंधर से है, रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, मक्कार जहां और डुमराव से वलीउल्ला अंसारी। तो गाना मैंने प्ले कर दिया है, आप गाना सुनिए।

जी हाँ, वक्त पर चलना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, वक्त धीरे धीरे भाग रहा है और हम अगले गीत की ओर भी बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, अगला गाना हम आपको जो सुनवाने जा रहे हैं वो है वापस फिल्म का है। आपको बता दें, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की मिली जुली आवाजें हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। और इस गीत के लिए हमारे पास जो मेल आई है, लिखते हैं, प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना। जी हाँ, बिल्कुल खैरियत से हैं। यह है सनावत से शेख मूसा मोहसिन। और इसी गीत के लिए हमारे पास एक मेल और आई है, बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। एक और मेल आई हुई है जेल रोड जलंधर से है, रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, मक्कार जहां, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी। मुंदी चक भागलपुर बिहार से मेल आई है, इसी गाने के लिए दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह के। एक मेल और आई है इसी गाने के लिए, आपको मेरा नमस्कार जी। नमस्कार जी, मुरादाबाद से मेल है, दूल्हापुर उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद के दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, आपका नाम भी देखिए शामिल हो गया।

एक मेल आई है अनुज वर्मा की। जी हाँ, लिखते हैं, मालिनी मैम, कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है, मैं आकाशवाणी कानपुर से प्यार करता हूँ। तो आपका भी नाम देखिए शामिल हो चुका है। तो लीजिए आपका नाम, हमने जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप।

और हमारे पास इसी गाने के लिए एक और मेल स्क्रीन पर दिख रही है। कार्यक्रम आपकी पसंद, आदरणीय मैडम जी बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रही हैं, परंतु काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर कितना इंतज़ार करें और कितने मैसेज भेजने पड़ेंगे? जी हाँ, देखिए मैं यही कहती हूँ, आप ज़्यादा मैसेज मत भेजिए। होता क्या ना, आप भी बहुत सारे भेजते हैं, अगला जो होता है लिसनर वो भी ज़्यादा मैसेजेस भेजता है, तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा इकट्ठे मैसेज आने से आपका नाम जो है कहीं नीचे चला जाता है, खो जाता है। इसलिए आप एक एक मैसेज भेजेंगे तो शायद हम जल्दी शामिल कर लेंगे। तो लीजिए, आपका नंबर आ गया है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार।

सरगुजा मेन पार्ट से हैं विनोद थापा, पूजा रानी, संदीप थापा और डॉली थापा। जेल रोड झांसी से सुमित मोगा, देव मोगा, राधिका मोगा और कबीर मोगा। सहारनपुर जंक्शन से सुरेश पासवान और आशा डुकर। एक बड़ी खूबसूरत सी मेल है, पिपरिया से है, कानपुर का नियमित श्रोता हूँ मैं। ख्यालों को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों में तेरी तलाश रहती है, तेरे बिन कोई कमी नहीं लेकिन तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है। क्या बात है, इन्होंने हमारे चैनल के लिए लिखा है। बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने ड्राइंग बनाकर भेजी हुई है, कलरफुल पिंक और ग्रीन कलर में। भाई बहुत अच्छा, आपका नाम देखिए शामिल हो गया है नेक्स्ट सॉन्ग के लिए। एक और हमारे पास आए हैं शीतल वर्मा, ये हैं मध्य प्रदेश से हैं। तोहित भाई नारायण पेंटर द्वितीय मालाकार, अदलापुर गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। तो इन सब ने हमें मेल की है, इन सब का भी नाम हमने शामिल कर लिया है नेक्स्ट सॉन्ग के लिए। एक और बहुत यूनिक मेल हमें दिख रही, जेल रोड रायगढ़ से है उमा रानी जाघव, बेबी जोई जाघव और डॉली बेलदार जाघव। छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी गौड़िया और चंद्र नगर, महाराष्ट्र से आशा जटोलिया और देवशंकर जटोलिया। तो सबने आपने सुनना चाहा है, जी हाँ, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का गीत। पूर्णिमा और कुमार सानू की मिली जुली आवाजें हैं, आनंद मिलिंद की धुन पर गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता है, एक और गाना हमें शामिल करना है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग के लिए। लेकिन उससे पहले बता दें कि इसी गाने के लिए हमारे पास मेल आई थी जेल रोड शिमला से है, प्रमिला अशोक जाटव, प्रभा रानी और संदीप श्याम जाटव। उमर खेर से हैं सविता डोमिन और आशा डोमिन। और अब चलिए अगला लास्ट सॉन्ग हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है खेल खेल में, और किशोर कुमार आशा भोसले की मिली जुली आवाज़ें हैं। इस सॉन्ग के लिए हमारे पास जो मेल आई है वो है, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड होस्ट, गुड इवनिंग जी, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, इन्होंने हमें मेल करी है गाना सुनने के लिए। और इसी गाने के लिए किशनगंज बिहार से हमारे पास मेल आई है रविंद्र मोहन दास और आशा देवी की।

न्यू दिल्ली से है कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, इन्होंने भी गाना सुनना चाहा है ये वाला। एक और मेल दिख रही है हमें कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल की। और एक और मेल है सेक्टर 24 से, कुंडलेश्वर खंडवा से है योगेश गुजराती, अभय गुजराती की। तो चलिए हम गाना भी प्ले कर चुके हैं, आइए है लास्ट सॉन्ग। और इस गाने के साथ ही आपकी पसंद प्रोग्राम से मैं आरजे मालिनी टाटा बाय बाय करूंगी, यानी कि ये प्रोग्राम अब वाइंड अप होता है। और फिलहाल सुनते रहिए अपना पसंदीदा चैनल 102.2 एफएम रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्ट बीट। और इस सॉन्ग के बाद हम आपको जोड़ेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा

ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। प्रदेश में आगामी दिनों के लिए भीषण गर्मी की स्थिति को लेकर एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांदा लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है, जहां तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश के दक्षिणी भाग में बांदा में भीषण लू के साथ प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, हमीरपुर एवं झांसी के आसपास के क्षेत्रों में आज लू की स्थिति दर्ज की गई। मुजफ्फरनगर के पीनना गांव में ट्रक से कार टकरा गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरनगर के एसपी संजय कुमार ने बताया कि हादसा खड़े ट्रक में कार की टक्कर के बाद आग लगने से हुआ। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्र नायकों एवं महापुरुषों की निर्माणाधीन प्रतिमाएं आगामी 15 अगस्त 2026 तक तैयार कर ली जाएं। उन्होंने वर्ष 2022-23 से अब तक निर्मित एवं स्वीकृत मूर्तियों की वर्षवार संख्या की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जयवीर सिंह ने आज विभाग द्वारा मूर्ति निर्माण को लेकर संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने इस अवसर पर पाश्चात्य मूर्तिकला वीथिका का लोकार्पण एवं संग्रहालय की पुरातत्व पत्रिका 2026 का विमोचन किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों शाम के 5:04 हो गए हैं, प्रोग्राम शुरू हो गया है FM टॉप 10 और एक बार फिर से मैं यानी अनुग्रह हूं आपके साथ। तो वही एक और ऐसा साल जिसने रोमांस, एक्शन और म्यूजिक को नई पहचान दी। एक ऐसा साल जिसमें कई बॉलीवुड के सितारों ने मजबूती से पैर जमाए। ऐसा ही साल रहा 1992 और आज हम करेंगे इसी साल के टॉप 10 सॉन्ग्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 पोजीशन के सॉन्ग से, जो कि फिल्म यलगार से।

मल्टी स्टारर मूवी जिसमें सनी देओल, चंकी पांडे, नसीरुद्दीन शाह एक साथ नजर आए। फिल्म ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और साथ में दिव्या भाटी का ये सॉन्ग जो आज भी प्ले होता है तो कदम खुद ही थिरकने लगते हैं। सही पहचान आपने सात समंदर पार टॉप 10 के आज के इस प्रोग्राम में है, नंबर 9 पोजीशन पे।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़ एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों 5:16 हो गए, प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10, अनुग्रह है आज आपके साथ। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ईयर 92 में रिलीज मूवी जान तेरे नाम की, जिसमें म्यूजिक था नदीम श्रवण का।

90s की फिल्मों की पहचान उनका म्यूजिक होता था। कर्णप्रिय म्यूजिक कानों में शायद घोल देता था और ऐसे ही संगीत था फिल्म संगीत का। संतोष आनंद रचित गीतों को संगीतबद्ध किया आनंद मिलिंद ने और फिल्म में नजर आए जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित। तो चलिए एंजॉय करते हैं नंबर 7 पोजीशन पे संगीत मूवी का ये गीत।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित

0: यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक तरफ माँ बेटे का रिश्ता और एक तरफ सास बहू की तकरार नजर आई फिल्म बेटा में। मुख्य भूमिका में नजर आए अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी। फिल्म के डायरेक्शन की कमान संभाली इंद्र कुमार ने और म्यूजिक दिया आनंद मिलिंद ने। साल 1992 की ये फिल्म उस साल सबसे सफल फिल्म भी रही और इस फिल्म का ये गाना आज है नंबर 6 पोजीशन पे। तो चलिए हम और आप इंजॉय करते हैं 100.7 FM रेनबो पे कोयल सी तेरी बोली।

आशा कपूर डबल रोल में नजर आए फिल्म बोल राधा बोल में। स्क्रीन पे उनका साथ दिया जूही चावला ने। डेविड धवन निर्देशित इस मूवी को म्यूजिक दिया आनंद मिलिंद ने और ये गीत लिखे समीर ने। फिल्म तो सुपरहिट रही, साथ ही सुपरहिट रहा इस फिल्म का ये गीत जो कि नंबर 5 पोजीशन पे है। तो चलिए हम आप इंजॉय करते हैं ये ट्रैक।

अक्षय कुमार को पहचान दिलाई फिल्म खिलाड़ी ने। 1992 में रिलीज इस मूवी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई और इसी फिल्म से अक्षय कुमार के करियर को रफ्तार मिली। इस एक्शन थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट किया अब्बास मस्तान की जोड़ी ने और म्यूजिक की बखूबी जिम्मेदारी निभाई जतिन ललित की जोड़ी ने। फिल्म की तरह इस मूवी का म्यूजिक भी लोगों की जुबान पे चढ़ा और इस मूवी का ये ट्रैक आज भी कुछ अलग ही जादू चलाता है, जो कि है नंबर 4 पोजीशन पे।

साला ऐसो 92 में मूवी रिलीज हुई दिल का क्या कसूर, जिसमें दिव्या भारती के साथ दो नए कलाकार नजर आए, पृथ्वी और सनम। इस मूवी को तो वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, लेकिन इस मूवी के सारे ही गाने लोगों को खूब पसंद आए। तो चलिए हम और आप इंजॉय करते हैं नंबर 3 पोजीशन पे इस मूवी का ये ट्रैक।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: तरफ 1992 साल में लव ट्रायंगल एक्शन थ्रिलर मूवीज देखने को मिली, वहीं इसी साल कुछ अलग स्टोरीज नजर आई। स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म जो जीता वही सिकंदर में, इसमें आमिर खान, आयशा जुल्का अभिनीत। इस फिल्म को डायरेक्ट किया मंसूर खान ने और म्यूजिक की बागडोर संभाली जतिन ललित ने। और आपको बताऊं कि जो जीता वो ही सिकंदर वाज द थर्ड बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम ऑफ 1992। तो आप भी महसूस करिए इस गीत का जादू नंबर 2 पोजीशन पे।

200 साल 1992 में रिलीज हुई मूवी दीवाना, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आए ऋषि कपूर और दिव्या भारती, और इनके साथ बॉलीवुड में दमदार डेब्यू किया शाहरुख खान ने। राजकुमार निर्देशित इस मूवी ने जो है वो दूसरी सबसे सफल फिल्म रही, और अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड में सफल पहचान बनाई शाहरुख खान ने। और दोस्तों, अब समय कह रहा है कि ली जाए इजाजत इस प्रोग्राम से, लेकिन अगले प्रोग्राम यानी शाम अवध में भी रहूंगा आपके साथ, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। और साथ में चलिए सुनते हैं नंबर 1 पोजीशन पे ऐसी दीवानगी फ्रॉम द मूवी दीवाना।

नमस्कार, शाम के 6 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारातघर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मुलाकात करेंगे और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में आज विभागीय योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयासरत और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कृत संकल्पित है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनहितकारी कार्यक्रमों को और अधिक तीव्र गति से संचालित करें। प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2026 के अंतर्गत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रदर्शन और मिनी क्रेडिट योजना के तहत कुल 1,99,000

9,910 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ में सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तीसरे बड़े मंगल पर इस बार पिछले दोनों मंगलों की तुलना में अधिक संख्या में भंडारों का आयोजन किया गया है। लखनऊ स्थित आकाशवाणी केंद्र के कर्मचारियों ने भी आज भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: शाम सुहानी है और आपका साथ है, हवाओं में जैसे मोहब्बत की बात है, चांद भी ठहर कर निहारने लगा हमें, लगता है आज हर लम्हा खास है। और इसी खास लम्हे में मैं यानी अनुग्रह आ चुका हूँ आपका अपना प्रोग्राम लेकर शाम अवध। तो चलिए शाम अवध के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं इस ट्रैक के साथ।

जी दोस्तों, सेल्फी लेने का क्रेज इतना ज्यादा है कि हम कहीं भी जाते हैं तो सेल्फी लेने के लिए परेशान हो जाते हैं। इवन आज मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ भी सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं कई लोग। भाई लेना बुरी बात नहीं है, सेल्फी लेना बुरी बात नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि आपके पीछे जो लाइन है ना वो डिस्टर्ब मत हो। आप पता लगा खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं और पीछे लाइन जो है वो बढ़ती जा रही, थम सी जाती है लाइन। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिससे किसी और को असुविधा हो। 6:16 हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, शाम्यवध अनुग्रह है आज आपके साथ।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया

0: यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

ज्येष्ठ माह के हर मंगल को लखनऊ का नजारा कुछ अलग ही नजर आता है। हर रास्ते पे, हर मंदिरों पे कुछ त्योहार सा नजर आता है और इसी कारण से भीड़ जो है कुछ बढ़ जाती है, और इसी को देखते हुए आज ट्रैफिक जो है वो कुछ बदला हुआ सा नजर भी आ रहा है। आपको बताऊं कि मोती महल तिराहा से हनुमंत धाम मंदिर की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे में मोती महल तिराहा से जो है केडी सिंह स्टेडियम तिराहा से सुभाष चौराहा होते हुए वाहन जा सकेंगे। इसके अलावा इक्का तांगा स्टैंड चौराहा से वाहन जो है हनुमान सेतु की ओर नहीं जाएंगे। इसके लिए इक्का तांगा स्टैंड से आ रहे वाहन डालीगंज चौराहा होकर जा पाएंगे। परिवर्तन चौक चौराहा से वाहनों की हनुमान सेतु की ओर जो है रोक रहेगी। ऐसे में स्टेडियम हजरतगंज या अशोक लाख चौराहा होकर गंतव्य को जाएंगे। सुशीला स्मृति वाटिका से कोई भी वाहन हनुमान सेतु नहीं जा सकेंगे। निषादगंज गोल मार्केट संकल्प वाटिका सिकंदर बाग चौराहा होकर गंतव्य को जा सकेंगे। इसके अलावा अलकापुरी तिराहा से कपूरथला चौराहा की ओर निजी व भारी वाहनों पर रोक रहेगी। वैकल्पिक मार्ग रहेगा अयोध्या रोड से वाहन वायरलेस चौराहा पॉलिटेक्निक से विष्णुपुरी होते हुए जा सकेंगे। उसके अलावा क्लारकवत तिराहा से हनुमंत धाम की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे और इनके लिए वैकल्पिक मार्ग होगा अलकापुरी ओवरब्रिज चौराहा नंबर 8 होकर। जी, यहां से आप जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ट्रैफिक बदला हुआ सा है तो सहयोग दीजिए, सुविधा आप ही को होगी। 6:31 हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, शाम्यवध अनुग्रह है आज आपके साथ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों में।
3: मैं हूँ मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: जी, जब प्यार में दिल गुम होता है तो कुछ पता नहीं लगता। देखिए, आपसे बात करते करते 6:43 हो गए और समय का पता ही नहीं चला। क्यों, आपके साथ भी ऐसा होता है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमें पता है भाई। जहां सड़कों पे दिन में सन्नाटा नजर आ रहा है गर्मी के कारण, वहीं शाम को भीड़ अच्छी खासी नजर आने लगती है। खासकर चौराहों पे ये हाल कुछ ज्यादा ही नजर आता है। तो भाई उपाय ये है कि आप जब चौराहों पे पहुंचे, रेड लाइट देखें, तो इत्मीनान से अपने दिमाग को ठंडा रखें, गाड़ी को बंद करें ताकि आपके ईंधन जो है उसकी बचत हो सके। गुस्साने से कोई फायदा नहीं होता, इरिटेट मत हो, या साथ में पानी की बोतल भी रखिए ताकि गर्मी में आपको थोड़ा सा राहत भी मिले। बाकी यही है कि 12 से 4 बजे तक निकलने से बचें, क्योंकि मौसम में गर्मी ज्यादा है। 6:43 हो गए प्रोग्राम, 44 हो गए और प्रोग्राम चल रहा है। शाम में अवर अनुग्रह है आज आपके साथ, और साथ में कुछ बेहतरीन से ट्रैक और जानकारियां।
1: दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी।

0: तुम्हारे बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

जी दोस्तों, 8:57 हो गए हैं और ये वो समय है जो कि कह रहा है, माफ करिएगा, 6:57। देखो मोहब्बत में ऐसे ही होता है, जुबान फिसल जाती है और ऐसे ही होता है कुछ आपके साथ, समय का पता ही नहीं चलता। तो 6:57 हो गए हैं और ये समय कह रहा है कि ली जाए इजाजत इस प्रोग्राम से, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपसे हेलो कहने के लिए अनुग्रह एक बार फिर रहेगा आपके साथ। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: आपका अपना चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर रिकॉर्डिंग होगी दो दिन बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512-254-1818 पर। हेलो कानपुर,
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस

0: अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: नंबर है 2238852। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 0522223845। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 0522 कोड के साथ 2238852। इन नंबर्स पे कॉल करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो जब तक कोई आता है हमारे पास, चलिए सुनाते हैं आपको ये ट्रैक।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
3: जी दोस्तों, खूबसूरत शाम के इस प्रोग्राम में मैं यानी अनुग्रह हूं आपके साथ आज हेलो कहने के लिए, और हमारे साथ और भी कोई जुड़ चुका है इस प्रोग्राम में, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हेलो
4: हेलो
3: जी, अपना शुभ नाम बताएं। हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, आपसे गुजारिश है कि आप हमें सुन रहे हैं, रेडियो सेट जो आपने ऑन कर रखा है उसको थोड़ा सा दूर कर लीजिए तो आपको आवाज हमारी क्लियर आएगी और हमें भी आपकी आवाज क्लियर मिलेगी। हेलो जी, काफी डिस्टरबेंस है, हमें आवाज मिल नहीं पा रही है आपकी। हेलो
4: हेलो
3: जी, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या नेटवर्क प्रॉब्लम है जिस वजह से बात नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल तो आपको बता दें कि ये थे शफीक जी जिन्होंने हमें कॉल करी थी और इन्होंने सुनना चाहा था ये गीत, तो सुना देते हैं ये ट्रैक और फिर इंतजार करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर का, देखते हैं कौन जुड़ता है हमारे साथ।

0: अच्छा सच बताइए कि मतलब याद आने से पहले अगर कोई चला है तो उसकी याद ही कैसे आएगी, ऐसा हो सकता है? जी मतलब कहना आसान होता है कई बार कि तुम याद ना करो, याद आने से पहले आ जाया करो, डिमांड बढ़ जाती है मोहब्बत में सबकी। फिलहाल तो हमारे साथ कोई और भी आ चुके हैं, चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: सर जी हम ठीक है, आप बताइए कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आपकी आवाज सुन ली तो और अच्छे हो गए। अपना शुभ नाम बता दें।
1: मेरा नाम अल्तमस अली है, मैं गांव भंसरिया जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहा
0: हूँ। जी अल्तमस जी, कैसे हैं आप?
1: सर जी हम ठीक हैं।
0: जी और मौसम कैसा है लखीमपुर का?
1: मौसम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है छत पर।
0: हाँ मतलब हवाएं चल रही है कि नहीं, इतनी गर्मी ज्यादा है?
1: नहीं हवाएं बहुत तेज चल रही
0: है। हवाएं बहुत तेज चल रही है तो राहत की खबर है कि आपके इधर हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं। जी अल्तमस जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम में आप?
1: जी सर यही कहना चाहते हैं कि आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं।
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज सुनने को।
0: जी वही बता रहे थे हम आपको, बताएं कि मतलब जब मोहब्बत होती है ना तो हर चीज मोहब्बत में अच्छी लगती है। आपकी मोहब्बत है हमसे, आपको हमारी हर चीज अच्छी लगती है। जी अल्तमस जी और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: तुमसे अच्छा कौन है
0: और सुनाना किसको चाहेंगे?
1: सुनाना आपको सबसे पहले और सभी को।
0: और सभी को, और किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: सर जी जो लिसनर आपके पास कॉल करते हैं, जैसे मोहम्मद फैज हो गए और मोहन शेख हो गए, उन सभी को।
0: जी तो सभी लिसनर्स हमारे ध्यान से सुन लें कि भाई अल्तमस जी ने गाना सुनाना चाहा है आपको, तुमसे अच्छा कौन है। तो चलिए हम और आप इंजॉय करते हैं अल्तमस जी की पसंद का ये ट्रैक।
1: थैंक यू सर
0: जी।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पेट्रोल और डीजल के कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
3: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूँ कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
5: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बरातघर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा। कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और आज अनुग्रह है आज आपके साथ प्रोग्राम हेलो FM में। तो आप भी कर सकते हैं हमें हेलो, हमारा नंबर है 0522223845। दूसरा नंबर STD कोड सेम रहेगा 2238852। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ और कह सकते हैं हेलो। तो फिलहाल कोई हेलो कहने के लिए हमारे साथ जुड़ चुका है, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो
3: जी सर।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आज आपका।
3: सर आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैं बबलू यादव, मोहन लालगंज लखनऊ धनवा शाम गाँव है मेरा सर।
2: जी बबलू यादव जी, कैसे हैं आप?
3: सर मैं स्वस्थ हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आज भी स्वस्थ होंगे।
2: बिल्कुल, आपकी आशा बिल्कुल सही है, हम भी स्वस्थ हैं और आपकी आवाज़ सुन ली तो और स्वस्थ हो गए।
3: जी मैं माता रानी से आपके आपके स्वस्थ जीवन की कामना भी कर रहा हूँ।
2: क्या बात है बबलू जी, हमारी तरफ से भी आपके लिए मंगल कामनाएं शुभकामनाएं। तो बताइए और क्या कहना चाहेंगे आप?
3: सर मैं कहना कुछ नहीं चाहता, बहुत गर्मी पड़ रही सर। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बस बता के आप काम करते रहे, लोगों को भी आप देते हैं अच्छी अच्छी जानकारियां सर, अब मैं क्या कहूँ।
2: बिल्कुल सही बात है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी नियमित पीते रहिए आप भी और खूब ध्यान रखिए। तो बबलू जी गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज आप?
3: सर मैंने ये 10 लाख फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, जो गरीबों की सुनेगा वो तुमको 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा।
2: क्या बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही, गरीबों की सुन।
3: अक्सर मैं भी थी गाने सुनता हूँ, कभी आपसे रेगुलर सुनता हूँ सर आपका।
2: जी बिल्कुल बबलू जी, आपकी आवाज और आपका अंदाज बता रहा है कि आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं और आपकी मोहब्बत जो है ना आपकी आवाज से साफ झलक के आ रही है।

0: जी
1: सर, आपका अधिक समय न लेते मैं तो नाम लेना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नाम भी नहीं लूंगा।
0: हाँ हाँ, नहीं आप बिल्कुल नाम ले लीजिए। आप किनको सुनाना चाहेंगे गीत?
1: सर मेरे बड़े भाई विजय पाल यादव लखीमपुर से हैं, मेरे सत्यम भाई बहराइच से, मेरी रिंकी तिरकी छोटी बहन है रायबरेली से, सर मेरे शिव भैया इंदिरा नगर से हैं, और सर मेरे श्री प्रकाश चाचा तिवारी उन्ना से। बहुत नाम है लेकिन सबके लिस्ट बड़ी लंबी है, सर आपका नाम नहीं लूंगा।
0: जी लेकिन जिन्होंने भी मतलब आपका ये प्रोग्राम सुन रहे ना, वो समझ गए होंगे कि आप नाम नहीं ले पाए, लेकिन आपके दिल में प्यार बहुत है उन सबके लिए।
1: सर सबके नाम मेरे हृदय में चल रहे, सर के कॉल में मीडियम वाट पे भी सुनता हूँ, सर मैं एफएम रेनबो भी सुनता हूँ, विविध भारती भी सुनता हूँ, सारे प्रोग्राम सुनता हूँ, सबके कॉल लगभग वही आते हैं।
0: जी बबलू जी, इतनी मोहब्बत के लिए बहुत। हाँ हाँ बताएं
1: सर, एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ, जिसकी कॉल लग जाए कम से कम ये जैसे मीडियम वाट पे लगे तो उसको एक सप्ताह ना करे, और रेनबो पे लगे तो एक सप्ताह ना करे, और विविध भारती पे भी लगे तो एक सप्ताह कोई कॉल ना करे, अगले कॉलर जो है उनसे सुने, और मैं कोई मेरी बात हृदय में आहत करती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ उन सभी लिसनरों से, आपसे भी मैं।
0: जी तो बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा आइडिया भी है, तो उम्मीद करते हैं कई सारे लोग इस आइडिया पे अमल करेंगे। तो आपका गाना बिल्कुल तैयार है, चलिए एंजॉय करते हैं आपकी पसंद का ये ट्रैक। थैंक यू फॉर कॉलिंग बबलू जी।
1: ओके सर, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नमस्कार।

0: 5222238845 पे यहाँ पे अनुग्रह आपकी बात सुनेगा। तो फिलहाल तो बात सुनने के लिए जी कोई सुनाने के लिए भी हमारे पास आ चुका है, तो चलिए जानते हैं कौन है वो जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमें हेलो कहने के लिए। हेलो,
1: सभी सुनने वालों को प्यार भरा गुड इवनिंग।
0: क्या बात है, आपका आपकी आवाज में बहुत ज्यादा प्यार है जी। अपना शुभ नाम बता दें जी।
1: सर हम रजनीश चौरसिया नवाबो के शहर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: जी रजनीश जी, कैसे हैं आप?
1: सर हम बहुत ही अच्छे हैं और आज आपके कार्यक्रम हम शाम 4 बजे से सुन रहे हैं सर।
0: क्या बात है, इतनी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम, अच्छा लगा?
1: नहीं, आपके जो भी आपने गाने बजाए बहुत ही अच्छे लगे और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आप पेश करते हैं सर।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रजनीश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और किसको सुनाना चाहेंगे?
1: सर फिल्म है फिर तेरी कहानी याद आई, उसका एक गाना है दिल में सनम की सूरत, यह गाना सुनवा दीजिएगा। राजेश कुमार वर्मा जी हैं और जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए सर।
0: जी रजनीश जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें कॉल करने के लिए, हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। तो आपका गाना बिल्कुल हमने रेडी कर रखा है, तो एंजॉय करिए ये ट्रैक रेडियो सेट पे। तो ये थे रजनीश जी और आप भी जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम से, हमसे कर सकते हैं हेलो। हमारे नंबर हैं 0522223845 और दूसरा नंबर है सेम स्टडी कोड के साथ 2238852। इन नंबर्स पे कॉल करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए फिलहाल एंजॉय करते हैं फिर तेरी कहानी याद आई का ये ट्रैक।

0: जी 90s का ये दौर जब गाने कुछ अलग ही अंदाज में पेश किए जाते थे और यकीनन हमारी जिंदगी से जुड़ जाते थे, ऐसा ही गाना था फिर तेरी कहानी याद आई। तो ये गाने सुनते सुनते ना जाने कितने लोगों को अपनी कहानी याद आ गई होगी। तो फिलहाल तो चलिए हमारे साथ कोई हेलो कहने के लिए आ चुका है हमारे साथ, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, शुभ नाम बता दें अपना।
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में प्रेम जी आपका।
1: जी थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं, आपकी आवाज़ सुन ली और अच्छे हो गए।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: तो और बताइए और क्या कहना चाहेंगे हमारे आज इस प्रोग्राम में?
1: जी कार्यक्रम सुन रहा हूँ मोबाइल ऐप में आपका। जी आप बड़े अच्छे श्रोता से बात कर रहे हैं, अपने गाने भी बड़े अच्छे श्रोताओं के पसंद के।
0: जी जी तो जी, आप कौन सा गाना
1: सर? ये जी आकाशवाणी लखनऊ और आकाशवाणी रेनबो की, आप जैसा भी गाना है उसमें चूज करेंगे ना आपको वही गाना सर्च करके सुनाया जाएगा जी। और जैसे भी आपका कॉल लगता है ना वहाँ पे तुरंत रिसीव किया भी जाता है, ये भी खासियत है इस कार्यक्रम में।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफें करने के लिए। बिल्कुल कोशिश हमारी यही रहती है कि मैक्सिमम लोगों से बातचीत हो जाए, लेकिन समय की कमी और लाइन में हो जाता है कई बार। तो फिलहाल तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन गाने के बोले अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
0: और सुनाना किसको चाहेंगे?
1: जी हमारे दोस्त है भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा कानपुर से, पूनम जी, आशुतोष रविना संगीता जी और आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी जी।
0: जी तो चलिए हम सब मिलके सुनते हैं प्रेम जी की पसंद का ये ट्रैक, आपने हमें कॉल किया बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी।
1: जी थैंक यू सो मच
0: जी।

0: जी तो फिलहाल हमारे साथ और भी कोई श्रोता जुड़ चुके हैं, चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आज आपका।
1: सर जी एक मिनट
0: जी। Hello? हाँ जी,
1: अब आई आवाज
0: हमें आपकी आवाज आ रही है, बस थोड़ा इको करके आ रही है। आपने जो साउंड इफेक्ट के लिए रेडियो लगाया ना, उससे हमें हमारी आवाज मिल रही है।
1: अब देखिए सर।
0: हाँ अभी भी आ रही है।
1: आप ठीक है?
0: आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हालांकि इको आ रही है, आप अगर हो सके तो रेडियो सेट को थोड़ा दूर कर दिए, दूसरे कमरे में रख दिए, या थोड़ा सा बंद कर दिए।
1: सर
0: हाँ हेलो।
1: एक मिनट।
0: जी जी बिल्कुल।
1: हल्का डिम कर दे। उधर देखो।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ जी
1: जी, अब आई सर आवाज।
0: जी आपकी आवाज आ रही है, बताएं अपना शुभ नाम बताएं।
1: जी सर, सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार
0: जी
1: और प्यार भरा सलाम
0: जी।
1: मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला 12 में। किसे बोले सर?
0: क्या बात है फैजी, आपका अंदाज बिल्कुल निराला है।
1: जी जी,
0: और मुझे लगता है कि आपका वक्त बदलने वाला है।
1: जी जी
0: जी फैजी, बताएं और क्या कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में आज।
1: जी सर, कहना चाहेंगे ये कि सर जी आपने जो प्रोग्राम किया दोपहर 4 बजे से 8 बजे तक आप रहेंगे, तो सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही अच्छे लगे और आपका प्रोग्राम तो खास करके बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
0: क्या बात है, इतनी तारीफें मत किया करिए, हमारे बोलना भी मुश्किल हो जाता है।
1: नहीं सर, तारीफ करने वाली है बात, तभी कर रहे हैं।
0: जी आपकी मोहब्बत है। फिलहाल तो गाना कौन सा सुनना चाहेंगे अभी बता दें।
1: जी सर गाना बताएंगे, उसके बाद कुछ लोगों को डेडिकेट करना है वो भी बताएंगे।
0: बिल्कुल बता दीजिए, क्योंकि समय है कम, काम है ज्यादा।
1: गाना सुनना चाहते हैं। बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, ये वाला सॉन्ग है।
0: ठीक है जी, और सुनाना किसको चाहेंगे?
1: जाता हूँ सर।
0: जी
1: जी, सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजे अनुग्रह को आपको।
0: क्या बात है, थैंक यू, शुक्रिया।
1: मोहम्मद जावेद अख्तर भाई हैं
0: जी,
1: और मोहम्मद आसिफ भाई हैं
0: जी,
1: रिंकी पिंकी हैं, समा परवीन अप्पा है, गुलाब साहब भी हैं, साहिबान सारी हैं, साबिया अंसारी हैं, यासिर हमीद भाई हैं, और बाबू अंसारी भाई हैं, और सुरभि सिंह है, और अकबर अंसारी भाई हैं चौखंडी वाले।
0: जी तो बिल्कुल।
1: और हेलो सर।
0: हाँ जी बताएं।
1: सर जी कभी आइए हमारे गांव, डाल जाइए सर।
0: बिल्कुल, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया तो बिल्कुल हम जो आने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो आवाज के थ्रू हम आपके आप तक पहुंच ही रहे हैं। देखिए
1: हेलो।
0: जी जी,
1: मैं ये कहना चाहता हूँ सर कभी आइए, आपको जो है फल फ्रूट खूब खिलाएंगे, सब्जी बढ़िया ताजी ताजी खिलाएंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, और देखिए हम आवाज के थ्रू आप तक पहुंच ही रहे हैं, और जल्दी से आपका गाना भी सुना देते हैं, नहीं तो फिर देर हो जाएगी ना।
1: जी जी जी सर, आप थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फैज जी। तो उनकी पसंद का ये ट्रैक एंजॉय करिए।

0: जी, जिनको आप चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आप ही तक बने रहें, तो वही गाना कुछ ऐसे ही कहते ना, तू जो हंस हंस के बात करती है यही बात, जमाने को बुरी लगती है, जमाने को तो बुरी लगेगी भाई, कुछ ऐसे ही होता है। तो फिलहाल तो हमारे साथ आज लास्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं सर। जिला औरैया ग्राम पुराना चल्ला से गगन जी, कमल बोल रहे सर।
0: कमल जी बात कर रहे हैं?
1: हाँ सर
0: जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आवाज में, तो बताइए और क्या कहना चाहते हैं, कैसे हैं आप, तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक?
1: हाँ सर, तबीयत सही है। आप कैसे हैं सर?
0: हम भी अच्छे हैं, आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए।
1: आज भागवत का भंडारा खाने आए हैं।
0: हाँ जी,
1: आज भंडारा खाने आए हैं, वही कॉल लाइन पर
0: भंडारा खाने आए। बिल्कुल, अब तो रात हो गई, अब तो आएंगे तो मिलेगा भी नहीं ना कुछ।
1: मिलेगा पर आइए।
0: जी जी बिल्कुल, आपने इतनी मोहब्बत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम जी बताएं गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: भरोसा सुनूंगा, आज की मुलाकात बस इतनी।
0: जी, आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना, कल चाहे बातें जितनी। जी, और किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: आपको सर, चंद्र कमल को
0: जी,
1: जितने सुन रहे हैं सभी को।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी पसंद का ट्रैक बिल्कुल तैयार है, तो एंजॉय करिए अपने रेडियो सेट पे। ओके कमल जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। नमस्ते जी। तो ये थे कमल जी, जिनकी पसंद का ट्रैक बिल्कुल तैयार है, और इस ट्रैक के थ्रू हम भी यही कहना चाहेंगे कि आज की मुलाकात बस इतनी, और चलते चलते और क्या कहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, गर्मी बहुत है, अपना भी ध्यान रखिए, साथ में पशु पक्षियों का भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि उनके लिए आसरा आप ही हैं। हो सके तो पक्षियों के लिए आप पानी भर के रखिए छतों पे, बालकनी पे, और पशुओं के लिए भी रोटी वगैरह जो भी है, पानी वगैरह आप खास तौर पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करिए, और अनुग्रह चलता है। फिर किसी और दिन मिलेंगे आपसे, फिलहाल तो कोई और है बिल्कुल तैयार अगले प्रोग्राम के साथ, हंसती खनकती आवाज के साथ। कौन है वो, ये सस्पेंस क्रिएट रहने देते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, रात के 8 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन गया जाएगा। आज बस्तर में संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल रहे। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्व कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वाराणसी में केंद्रीय पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात, मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार मौजूद रहे। बैठक में धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को और मजबूत बनाने, पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, ट्रैफिक प्रबंधन तथा पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय पर्यटन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि देशी और विदेशी पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ बांदा देश में एक बार फिर सर्वाधिक गर्म जिला रहा। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के दौरान प्रदेश में अगले दिन लू से भीषण लू का रेड अलर्ट और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक उष्ण रातें रहेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम एवं 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जनपद के इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग

जिक्र जब जब होगा मोहब्बत का तो नाम तेरा आएगा। जिक्र जब जब होगा मोहब्बत का तो नाम तेरा आएगा। हर महफिल हर नजर हर लब से पैगाम तेरा आएगा। रात के 8:21 का वक्त, महफिल आबशार में इस वक्त आप हैं आपकी मेजबान आपकी दोस्त रिचा के साथ।

इसीलिए शायर ने ठीक ही कहा है कि गजल के बारे में कहा जाए जितना उतना ही कम है। गजल वो खुशबू है जो कागज पर बिखर जाए तो शायरी और दिल में उतर जाए तो इश्क बन जाती है, वो इश्क जो आपको उसके जैसा बना देती है।

कहते हैं कि बात बिल्कुल सच है कि तन्हाई में गजल से बेहतर हम सफर और कोई नहीं होता। गजल सुनते वक्त लगता है जैसे कोई अपना हाथ थामे बैठा है, दिल को बेसाख्ता करार देता हुआ। ठीक वैसे जैसे आप हमारे साथ जब होते हैं तो कुछ ऐसा ही हमें भी महसूस होता है। रात के 8:41 का वक्त हो चुका है। आप शार को यहीं पर रोकने की बस आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन ठीक 9 वापस हाजिर होंगे लेकर हम आपके लिए आपका फेवरेट शो जिसे आप कहते हैं रेनबो कैफे। तो कहीं मत जाइए, 8:45 पर समाचार संध्या और फिर यह सिलसिला आपके साथ रहेगा रात 12 बजे तक जारी। सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard।

0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और

0: लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: Japan in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आ चुके हैं और आराम से इस वक्त आपके प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और आपके साथ सभी अंसारी और सजिया अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी और महक सब मिलकर इस शो को एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा कहती हूँ जब साथ बैठते हैं सबके सब तब वाकई मजा आता है जिंदगी का। फिलहाल मनोज विश्वकर्मा भी हैं मेरे साथ और लिख रहे हैं रेनबो कैफे प्रस्तुत करने वाली मीठी आवाज को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो वेरी मच। इतनी खूबसूरती के साथ आपका ईमेल हम तक पहुंचाने के लिए आपने लिखा कि आप शार सुना बहुत अच्छा लगा आपको, रेनबो कैफे का आप मजा ले रहे हैं काम करते करते और छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम ताराश्रिफ से इस वक्त आप हमारे साथ हैं। कृष्णकांत सिंह जी भी आ चुके हैं हमेशा की तरह, बड़ा प्यारा सा ईमेल है आपका और आपने लिखा कि रात के 9 बजे प्रोग्राम जैसे ही शुरू होता है तन मन थिरक उठता है, ऐसा ही बताइए। तो कोशिश तो यही रहती है कि ये जो तन और मन है ना ये सब थिरके, बस धन बचाइएगा, ऐसा ना जेब में सिक्के पड़े उछल उछल करके बाहर आ जाए फिर दो चार लोग और आ जाए उसको लेने के लिए, अरे अरे देखो सिक्के गिरे पैसे गिरे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। आप लिख रहे हैं कि हर मूड के ढिंचक म्यूजिक इस प्रोग्राम की जान होते हैं और हमारे होस्ट आजेस भी इस प्रोग्राम में खूब खूब इंजॉय करते हैं, नो डाउट। ये तो बात है, अगर हम नहीं करेंगे तो आप तक कैसे उस चीज को पहुंचाएंगे ना, हम जब फील करेंगे तभी तो आप तक उस एहसास को पहुंचा पाएंगे। और आपने लिखा कि ऐसी ही शानदार प्रस्तुति के लिए फेम रेनबो हर श्रोता के दिल में लखनऊ की म्यूजिकल धड़कन बन के धड़कता है, इसीलिए कहते हैं साथ साथ बोलिए कि आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और आपने हमें कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल भेजा हमेशा की तरह, बहुत शुक्रिया धन्यवाद इस खूबसूरत प्यारे से ईमेल के लिए। रॉयल अमित हैं, लिख रहे हैं बहुत खूब, क्या बहुत खूब अभी तो हमने रजनीकंदा शुरू भी नहीं किया, लिख दिया बहुत खूब, चलो अच्छी बात है। इन एडवांस आपकी शुभकामनाएं मिल गई, ये बहुत जरूरी होता है जब कोई आपसे ये कह दे गुड लक बेस्ट ऑफ लक आप किसी ऐसे काम पर जा रहे हो, तो वाकई ये बहुत काम आती हैं चीजें। पता नहीं आपने इस चीज को कभी महसूस किया है या नहीं, ऐसा होता है, हमने तो इस चीज को बड़ा अच्छे से महसूस किया, अभी हाल ही में किया जब शो के लिए आ रहे थे ना तब हमसे किसी ने कहा गुड लक, हमने कहा बस ठीक किसी की जरूरत थी और वही गुड लेकर लक लेकर हम आपके साथ वापस आ गए। वापस ईमेल आया है रॉयल अमित यादव जी का और लिख रहे हैं कभी आप दोनों एक साथ आओ ना प्लीज, कौन दोनों, अच्छा आपकी अंजू मैम, हाँ जल्दी आएंगे जरूर आएंगे लेकिन अभी क्या करें वो मॉर्निंग शोज कर रही है और हम रात में आपके साथ, आपने लिखा धमाल मचा रही है, हाँ तो ये हम मान सकते हैं शायद ऐसा हो, कितना है कितना नहीं ये आप हमें बताइएगा ठीक है। और आपने हमें लिखा है कहाँ से ये बता दे, हम विलेज बाराबंकी से हैं आपका गनगंज रोड से और आपके साथ श्रिया यदुवंशी भी हैं। अच्छा रॉयल अमित यादव इस आईडी से श्रिया यदुवंशी ने हमें ईमेल किया, तो श्रिया थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए, बस आ जाना चाहिए, किसके ईमेल से आए ये अलग बात है, आप जुड़ गए हैं साथ में ये जरूरी है। रेनू आ चुकी है, रेनू देवी गुड मॉर्निंग लिख रही हैं आप, फिलहाल ये गुड इवनिंग है मैं, हाँ हाँ गुड इवनिंग ये सॉरी हमने पढ़ने में गलती कर दी थी, और लिख रही हैं दुकानें उनकी भी लुट जाती हैं जो दिन भर में न जाने कितने ताले बेच देते हैं और आपके तरफ बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी तो यहाँ भी हो रही है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां भी और यहाँ भी है। और हसनपुर और रास उन्नाव से आपने आपका ईमेल किया, थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए। बस ये सिलसिला आप यूं ही जारी रखिए, 9:18 का वक्त हो चुका है, रेनबो कैफे इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, वो रेनबो कैफे जहां पर आपके प्यार, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती वो तो शो शुरू होने से पहले ही आप अभी देखो ना कृष्णकांत सिंह जी कह रहे थे कि नाचना गाना शुरू कर दिया तो हमने कहा कि पैसे सिक्के बचा लीजिए बस बाकी तो सब बढ़िया है, फिलहाल गाना आप तक लौट करके आएंगे फिर आपके ईमेल्स बहुत सारे गाने रेनबो कैफे आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

अच्छा इनको जहाँ जाना है जाने दीजिए, लेकिन हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरे साथ जुड़े रहे, आपके अपने 107 FM रेनबो के साथ, क्योंकि हमेशा ही कहती हूँ आप होते हैं तभी मजा आता है। देखो सुल्तान रजा साहब का भी ईमेल आ चुका है, लिख रहे हैं रॉकिंग रचापी को प्यार भरा नमस्कार सलाम, थैंक यू सो वेरी मच इतने खूबसूरत अंदाज में आपका सलाम हम तक पहुंचाने के लिए। और आप आगे आप लिख रहे हैं कि मंजिल दूर है किनारा क्यों नहीं आया, मंजिल दूर है किनारा क्यों नहीं आया, आज दोस्त SMS तुम्हारा क्यों नहीं आया, तुम भूल गए नंबर या आपको मिल गया हमसे भी कोई प्यारा। अब देखो इसके पीछे तो बड़े सारे राज हैं, ये है इसका खुलासा, हम यहाँ कर नहीं सकते। हाँ कह भी सकते हैं कोई बहुत प्यारा मिला, वही जैसे जो आप है ना वैसे कोई प्यारा, हालांकि ये बात आप भी जानते हैं कि आपसे प्यारा तो कोई वैसे भी नहीं है। फिलहाल आपने ईमेल किया इसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ आपके भाई इकबाल रजा, अफजाल रजा और दोस्त मोनिश रजा, सादिक रजा, जीशान रजा और नदीम, ये सब मिलकर मुझे सुन रहे हैं, और साथ में आपने बड़ी प्यारी सी शायरी भी हमेशा की तरह लगा के भेजती है कि इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, इश्क के बाजार में हुस्न का मेला रह गया, भीड़ है लाखों की मगर दिल अकेला रह गया, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, अर्ज किया है कि दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत का खिताब, शिद्दत से चाहने वाला इंसान अकेला रह गया। अब वैसे हम इसका बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे क्योंकि आपके साथ हम है ना, और जब हम हैं तो फिर काहे का गम है, आप बस चुपचाप आंखें बंद करके इंजॉय करते, नहीं आंखें बंद मत करिए अभी, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारे डांस करना है मेरे साथ, और आंख बंद करके सुनेंगे तो कहीं गिर वर जाएंगे तो फिर नाम हमारा लगा देंगे, ये हम चाहते नहीं है बिल्कुल भी। शिव सदाशिव का ईमेल है मेरे पास और लिख रहे हैं कि नींद कहती है सो जाओ वरना सुबह उठ नहीं पाओगे, नींद कहती है सो जाओ वरना सुबह उठ नहीं पाओगे, पर रेनबो कैफे कहता है 9 बज गए हैं उठ जाओ बाबू नहीं तो पछताओगे। एकदम सही बात आपने बोली, इसीलिए पहले से बता देते कि भैया रेनबो कैफे है मंडे नहीं ट्यूजडे एंड सैटरडे, और यहाँ पर आपका रहना बेहद जरूरी होता है। कहाँ से ईमेल किया ये बताते हैं आपको, आपने हमें जिला सीतापुर से आपका ईमेल भेजा है पोस्ट मुंडेरी, थैंक यू सो वेरी मच सदाशिव जी आपके ईमेल के लिए, आगे भी आपके ईमेल का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। मोनू सेठ आ चुके हैं, लिख रहे हैं पॉप टाइम, नहीं नहीं नहीं मोनू सेठ जी रेनबो कैफे है, आज ट्यूजडे है ना कैसे भूल गए आप, और आपने लिखा कि गाँव भी हिलत बा क्योंकि रेनबो कैफे बजट बा, जाहिर सी बात है ये जो आप अपने अंदाज में लिख करके भेजते हैं ना हमें थोड़ी पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन हमें पता है आपने लिखा है हम पढ़ भी देंगे, सही सही जैसा आपने लिख करके भेजा है। विनीत कुमार जी आ चुके हैं हमारे साथ और आपने हमें अर्थापुर और रामगढ़ से आपका ईमेल भेजा है सीतापुर से रेनबो कैफे, आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो वेरी मच, सुपर हिट लाजवाब प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद गाने पसंद आ रहे हैं इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं ये अच्छी बात है, और आप जब सुनते हैं आपके ईमेल्स वापस आते हैं और फिर जब आप बताते हैं ये अच्छा वो बुरा तो हमें लगता है कि चलो अब इसको ठीक कर लेते हैं क्या अच्छा क्या बुरा। फिलहाल अभी अगला ईमेल किसका है ये देख लेते हैं, मेरे पास नीलू शर्मा हमेशा की तरह है रूपपुर चंदेला से और लिख रही है कैसे हैं आप, मेरे ख्याल से मैं ठीक हूं, और आपने लिखा है कि आज अंदाजा लगा लिया था कि आप आएंगी, देखो इसको कहते हैं दिल से दिल को रहा होना, और आपको शायद ये अंदाजा इसीलिए हुआ क्योंकि आप हमें दिल से चाहती हैं और आपको लगा कि हम आ गए, और आपने कहा कि बबीता से और रोशनी से आपने इस बारे में बात की और देखो हम आ गए, थैंक यू सो वेरी मच धन्यवाद। जीमेल में कब आएंगे गुड मॉर्निंग में हमें भी इंतजार है, जिस दिन आएंगे हम आपको सुनाई पड़ जाएंगे, फिलहाल तो यही सुनिए, अभी 9:33 का वक्त है। रवि कान का भी ईमेल मेरे पास है और लिख रहे हैं कहां से, दिल्ली परिवहन विभाग DTC से, और लिख रहे हैं एकदम गर्दा उड़ा रखे हैं हम बस आप तक गाने पहुंचा रहे हैं, आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो इसके लिए बहुत शुक्रिया, और आपने हमें लिखा DTC दिल्ली परिवहन विभाग से, बहुत शुक्रिया रवि जी आपकी ईमेल के लिए। वकील अहमद भी आ चुके हैं, आपकी आवाज अच्छी लगती है सच बताइए गाने अच्छे बज रहे हैं, गर्मी बहुत तेज है नो डाउट वो तो है बहुत ज्यादा है, और अभी देखिए रेड अलर्ट और फिर ऑरेंज अलर्ट भी है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना ही पड़ेगा है ना। आपने लिखा है कि आम के बाग से ना आए हैं खाने जा रहे हैं, क्या खाना खाने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है खाइए, अभी तो हम फिलहाल यहाँ रहने वाले हैं 12 बजे तक आपके साथ, उसके बाद ही जो होगा सो होगा अभी।

तो फिलहाल रेनबो कैफे है और आपने लिखा है, आपके साथ सुन रही है साजिया, शमा, रिंकी, पिंकी और महक। तो सभी से बोलिए ऐसे ही बिल्कुल बैठे रहें सबके सब और सुनते रहें हमें आपके अपने 107 FM रेनबो के साथ। अगले ईमेल की तरफ बढ़ेंगे। चलो अच्छा पढ़ देते हैं, उसके बाद आप तक गाना पहुंचाएंगे। रोशनी का ईमेल आ चुका है। मुझे बड़ी शिकायत रहती है रोशनी, इतनी देर से क्यों आती है भाई आप? आपसे हमेशा कहते हैं, आप जब आती है तो रोशनी बिखरती है हमेशा आपके नाम के साथ, इंतजार करवा देती हैं, जल्दी आ जाए करिए। आपने लिखा है गजल का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और आज की सारी गजलें बहुत लाजवाब थी हैं सच में। आप लिख रही हैं कि आप बोल रही थी जल्दी आया करो तो मैं आ गई हूँ कहाँ। देखो मैंने अभी आपका ईमेल पढ़ा और आपने लिखा है कि रात 12:02 तक आपका साथ निभाने को बिल्कुल तैयार है। पता है बहुत अच्छा लगता है जब आप ये लिख देती हैं कि रात के 12:02 तक आप मेरे साथ रहेंगी। दिल को सुकून आता है कि हम अकेले नहीं है, यूं ही नहीं बस बोले जा रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं और उसमें भी रोशनी है जो बहुत देर तक हमें सुनने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच रोशनी। और आपका हमेशा की तरह ईमेल है ग्राम व पोस्ट पमना तहसील सफीपुर जिला उन्ना से। थैंक यू सो वेरी मच। चंडीगढ़ में है इस वक्त, आप वहां से प्रोग्राम सुनती हैं और लिख रही हैं अर्ज किया है स्पेशल हमारे लिए। क्या अर्ज किया है सुन ले, बस इंतजार रहता है आपके आने का, कभी सब्र से तो कभी बेसब्री से, तो बस ये इंतजार बना के रखिए। कहते हैं इंतजार का जो मजा है ना बहुत अच्छा होता है, सब्र का फल वैसे भी बहुत मीठा माना जाता है, लेकिन अब आपके सब्र को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए ले चलते हैं वहां जहां से अगला गाना बिल्कुल हमने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। इट्स 9:35 बाय स्टूडियो क्लॉक एंड दिस इज आरजे रिचा विद यू ऑल गाइस, आपके अपने 107 FM रेनबो पर। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड keep listening to 100.7 FM Rainbow.

अच्छा भले ही वहाँ ओढ़नी सर सर सरक रही हो, लेकिन यहाँ तो भर भर भर के ईमेल्स आ रहे हैं आपके। इतने सारे ईमेल्स मेरे पास होंगे, चलिए वापस आपके ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद कुमार दुबे जी का ईमेल आ चुका है और लिख रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ इस वक्त आप इस शो को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच हमेशा की तरह आपके ईमेल के लिए। लिख रहे हैं कि रेनबो कैफे प्रोग्राम आप पसंद करते हैं, रही बात पॉप टाइम की और रेनबो कैफे की, तो यहाँ एक से बढ़कर एक हिट गाने सुनने को मिलते हैं, नो डाउट। तभी तो कहती हूँ कि आपका फेवरेट शो है, कहीं मत जाया करिए, सिर्फ और सिर्फ यहीं जुड़े रहा करिए। उसके बाद देखिए आपको बड़ी सारी वैरायटी यहाँ मिल जाती है। आपने लिखा है कि श्रोताओं की दिलचस्प टिप्पणी भी अच्छे ढंग से हैंडल की जाती है। दीपा, तन्वी, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, श्याम कुमारी, अरविंद दुबे, आप सभी सुन रहे हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। विजय पाल यादव का ईमेल लिख रहे हैं, मेरा ईमेल भी ढूंढ लीजिए। हाँ हमने ढूंढ लिया, इतने सारे ईमेल्स के बीच में कहीं नीचे चला गया था, लेकिन हम उसको निकाल कर वापस पकड़ कर ले आए हैं। और आपने लिखा कि आपको शो अच्छा लग रहा है, गजल का प्रोग्राम आप शायद अच्छा लगा, इस वक्त आप रेनबो कैफे सुन रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है। और आपने लिखा कि आज आप आए थे यहाँ पर, हम आपसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई क्योंकि हम तो रात में आए थे, तो कोई नहीं फिर किसी दिन किसी रोज जरूर से मुलाकात होगी, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम मानते हैं। इत्तेफाक देखिए जिंदगी में हो जाते हैं, कई बार आप सोचते हैं कुछ और है और लाइफ में कुछ और होता है और फिर वही बड़ा खूबसूरत सा इत्तेफाक बन जाता है। बहरहाल आप हमें सुन रहे हैं ग्राम पोस्ट जिला खीरी से और आपके साथ हैं बबलू यादव जो प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। गुलफ्सा वापस आई है मेरे पास और लिख रही आए हाय। आपने लिखा बहुत ही मजा है आ रहा है इस वक्त और आपको मस्त गाने बज रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, धन्यवाद।

आज शुक्रिया, दिल लूट लिया आपने, लूट लिया आपने, अच्छी बात है। अच्छा लगता है जब आप कुछ ऐसा लिख देते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने जो कोशिश की वो पूरी हो गई, ठीक ठाक जाके तीर निशाने पर लग गया है, ऐसा हमको लगता है। फिर तो एम के राज भी आ चुके हैं, एल एम पी यानी लखीमपुर खीरी से, और आपने लिखा है जिला लखीमपुर खीरी से आप हैं, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, हर घंटे बहुत ही लाजवाब रहता है, और इस घंटे हर रोज आपका कार्यक्रम लाइव सुनता हूं। देखो ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी, लाइव प्रोग्राम आप सुनते हैं, अच्छा बुरा गलत सही, और आपके साथ हम सब यही होते हैं और आप तक चीजों को पहुंचाते हैं। उसके बाद आपने लिखा है कि आवाज सुनकर दिन बन जाता है, धन्यवाद, हमारी आवाज सुनकर अगर ऐसा हो रहा है तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती, किसी तो काम आ रही है हमारी आवाज, किसी का दिन बना रही है, तो इससे बेहतर बात और क्या ही हो सकती है। आपने लिखा कि बालाजी के दर्शन करने मंदिर आए हैं, और महाराज से आप सभी श्रोताओं और आरजेएस टीम के लिए सुख शांति खुशहाली की प्रार्थना की, इससे बिल्कुल अच्छा किया आपने। और कहते हैं ना कि जब दिल से कोई दुआ मांगी जाती है तो वो पूरी हो जाती है, उम्मीद करती हूँ कि आपने दिल से मांगी है दुआ, ये जरूर से पूरी होगी। जीशान खान है हमारे साथ, और आपने हमें संडीला से ईमेल किया है, और आप लिख रहे हैं कि सऊदी में है इस वक्त, वहां से सुन रहे हैं। देखो भला हो ये ऑन AIR ऐप का कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव रेडियो के जरिए जुड़ सकते हैं, बाकी FM तो है ही आपके साथ, और ये जो दूर दराज से, तभी तो हमने कहा था बस लहराने दो रेनबो कैफे का परचम, यहां से वहां तक दुनिया में, देश में, जहां जहां कहीं आप हमें सुन रहे हैं, तो रेनबो कैफे की जो आवाज है ना, इसकी जो गूंज है वो उस दूर तक पहुंचनी चाहिए। और आप लिख रहे हैं कि आपकी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है, पसंद आती है आपकी आवाज, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अरे वाह क्या बात है, आवाज लिखा इन्होंने आप लिख रहे हैं मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से सभी सुनने वालों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं एडवांस में बकरीद की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी इन एडवांस, आपने ईमेल किया इसके लिए भी आपका बहुत दिल से शुक्रिया। जावेद अख्तर साहब आ गए, और जब ये ऐसे कुछ नाम आते हैं ना तो हमारी आवाज में अपने आप एक चहक आ जाती है, और फिर हमको लगता है कि जोर से पढ़ दें, जावेद अख्तर साहब हैं अभी भी हमारे साथ। और आप लिख रहे हैं कि इस वक्त थोड़ी देर से जुड़ पाए हैं, लेकिन शादी में गया था, लेकिन कार्यक्रम आप सुन पाए, जितना भी सुन पाए, और अंदर से तबीयत मचल रही थी सुनने के लिए चलो अच्छी बात है। और रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने आपका ईमेल लिखा है, शमशूल, कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा और शाहीन भी हैं आपके साथ। आयुषी मिश्रा हैं, क्या लिख रही हैं, चलो पढ़ते हैं। गुड इवनिंग लिखा है आपने, आपने लिखा है कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज अच्छी लग रही है, धन्यवाद शुक्रिया इसके लिए, क्यूट है, ये अच्छी वाली लाइन आपने लिखी, सभी लिखते हैं अच्छी, आपने लिखा क्यूट है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बजे क्लास करके आए थे, रेस्ट कर रहे थे, और अब खाना खा लिया है, और साथ में FM रेनबो सुन रही हैं, बस सुनिएगा रात के 12 बजे तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। और आपने हमें जिला उन्नाव न्यू अशोकनगर से आपका ईमेल भेजा है, थैंक यू आपके ईमेल के लिए आयुषी। महादेव है ना, महादेव नहीं, माधव राज भी हैं हमारे साथ, और अच्छा काफी कुछ लंबा ईमेल लिखा है, तो 2 मिनट का वक्त दीजिएगा वापस पढ़ के, तब आप तक पहुंचा देंगे ताकि कुछ गलत ना हो जाए, जाने से पहले ही हमारा वादा है। अवधेश कुमार जी ने भी ईमेल किया है, लिख रहे हैं कि रेडियो हमारे जीवन का अनूठा और सुलभ हिस्सा है, और यहाँ संगीत सुनना, जुड़ना वाकई दिल को बहुत तरोताजगी देता है। अब आपने हमें बाराबंकी माधोपुर से आपका ईमेल किया है, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। सुधांशु जी का ईमेल आ गया, लिख रहे मेरा नया रेडियो आया, वाह वाह क्या बात है, आपने उसकी एक तस्वीर भी खींचकर मैं भेज दी, बस अब इसी में फुल वॉल्यूम करके हमें सुनिएगा, और फिर देखिएगा कितना मजा आएगा जब वॉल्यूम होगी फुल ऐसे ऐसे और उस पर सुनाई पड़ेंगे आपको हम वॉल्यूम के साथ, तो फिर मजा आएगा। शो होगा रेनबो कैफे, साथ में होंगे हम और आपका रेनबो होगा आपके साथ, और फिर क्या ही कहने, आप हमें खुद बताएंगे कि आहा बड़ा मजा आया आज। रणधीर गुप्ता जी आ चुके हैं, और आपने लिखा है सबको नमस्कार, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, और आपके साथ रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ये सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए फिलहाल अभी जो है 9:53 का वक्त हो चुका है, एक गाना आप तक भेजे देते हैं, इस गाने को सुनिए और उसके बाद वापस लौटेंगे, बचे हुए ईमेल्स और वो जो हमने ईमेल बोला था ना अभी बड़ा लंबा सा है उसको पढ़ने के लिए वापस आऊंगी, फिलहाल गाना सीधा राजस्थान से।

एग्जैक्टली जब आपके ईमेल्स हमारे पास आते हैं ना, इतने प्यार से भरे ईमेल्स आते हैं, तो यकीन मानिए कहीं हमारा भी जो है कहीं क्या ही बोलूं, 9:56 का वक्त हो चुका है, लेकिन वो ईमेल जो मैंने आपसे कहा था महादेव राज जी का, उसको पढ़ना वाकई जरूरी है। आपने लिखा, यूं तो गुजर जाता है दिन मसरूफियतों में अक्सर, मगर आपकी आवाज आते ही शाम हसीन हो जाती है। आपका एक ऐसा दीवाना श्रोता हूं जिसके दिन की शुरुआत ढलती हुई शाम आपके स्टेशन की शुरू के बिना अधूरी है, नो डाउट। तभी तो कहती हूँ रेनबो से आप जुड़े रहिए, रेनबो से बेहतर आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं। लखनऊ की नजाकत, तहजीब और आपके आरजेस का खूबसूरत अंदाज सीधे बहराइच तक हमारे दिल में उतर जाता है। बहराइच ही नहीं, दुनिया के सारे कोनों में पहुंचते हैं हम, और जब ये आवाजें गूंजती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सारी भाग दौड़ के बीच सुकून का झोंका आ गया है। बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से ईमेल के लिए माधव जी, आपने वाकई दिल से लिखा है और दिल से इसके लिए आपका धन्यवाद। 9:56 का वक्त हो चुका है, शो को वाइंड अप करने की है बिल्कुल बारी। वो तमाम सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, एक एक बार जल्दी से उनका भी नाम ले लेते हैं। अच्छा, जगदीश राज भी आ गए और लिख रहे हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया, गाने आपको पसंद आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आपका ईमेल है। और इसके साथ साथ सुमित हैं, डॉक्टर सुमित भी हैं, और आपने हमें उत्तराखंड से उधम सिंह नगर से आपका ईमेल भेजा है, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, स्टाइल और तरीका, आप आवाज सब अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, और आप सुनते रहें, जुड़े रहें। सुल्तान रजा ने वापस बहुत ढेर सारा धन्यवाद भेजा, थैंक यू सो वेरी मच सुल्तान जी। आकाश जी हैं मलिहाबाद से, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए भी आपका दिल से धन्यवाद, और आगे भी आप अपने ईमेल यूं ही पहुंचाते रहे, हम तो यही चाहते हैं। जय भी है हमारे साथ होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, और आपको गाने पसंद आ रहे हैं, तो बस गाने ऐसे ही पसंद आते रहे और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, और ये जो दिलों से दिलों का रिश्ता है ये यूं ही बना रहे, इतनी सी हमारी आपसे दरखास्त है। तो 9:57 का वक्त रेनबो कैफे को वाइंड अप करने की है बारी, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगला घंटा भी हमें आपका रहेगा बेसब्री से इंतजार, तब जब दिलों के किस्से मोहब्बत की बातें फिजाओं में खुलती हैं, रजनीगंधा जो हम लेकर के आते हैं। तो कहीं नहीं जाना है आपको, जुड़े रहना है आपके अपने 107 FM रेनबो के साथ। यस, मैं रहूंगी आपके साथ।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की संकल्पना का साकार रूप हम सभी को प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बस्तर छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह महत्वपूर्ण बैठक इसका नवीनतम उदाहरण है। अतीत में चुनौतीपूर्ण रहा यह अंचल आज राष्ट्रीय नीति निर्धारण की मुख्य धारा में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद पर आधारित टीम भारत का विजन दिया है। इस दिशा में क्षेत्रीय परिषदें महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री आज बस्तर छत्तीसगढ़ में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए धाम परिसर में व्यापक व्यवस्थाएं लागू की हैं। वर्तमान में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के बावजूद प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा धाम परिसर में विभिन्न स्थानों पर RO वाटर कूलर लगाए गए हैं, जबकि अन्य स्थानों पर बड़े मटकों में ठंडे पानी की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं को निरंतर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मंदिर कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसके साथ ही ORS घोल और ग्लूकोज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जनपद शाहजहांपुर के समस्त परिषदीय विद्यालयों में 13 से 19 मई 2026 तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आयोजित इस 7 दिवसीय शिविर का उद्देश्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में बहुभाषिकता को बढ़ावा देना और उन्हें देश की विविध भाषाओं एवं संस्कृतियों से जोड़ना रहा। जिला भाषिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में गतिविधियों को जनपद की स्थानीय भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हुए रोचक तरीके से संचालित किया गया। जनपद सुल्तानपुर में आगामी गंगा दशहरा मेला एवं ईद उल जुहा क्रीत पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आज नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह एवं पुलिस अधीक्षक चारू निगम की संयुक्त अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष तथा पीस कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में त्योहारों के दौरान साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, परिवहन, चिकित्सा सहायता एवं कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो,

और फिर उस मध भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM।

मोहब्बत कहते हैं। तो रात के दोस्त 10:09 का वक्त आपके साथ वापस, मैं आपकी दोस्त आपके रचा आपके अपने कार्यक्रम रजनीगंधा में। रात का ये पहर, हवा में हल्की सी सहरन और आपके दिल की धड़कनों की गूंज जो सीधा आकर टकराती है उस दरवाजे से जहां मोहब्बत की खुशबू रजनीगंधा बनकर बिखरती है। वो रजनीगंधा जहां बातें हैं दिलों की, किस्से हैं मोहब्बत के, और उन्हीं किस्सों और बातों को समेट कर वापस लेकर आप तक हम आ जाते हैं। तो चलिए इस सफर में आपके साथ आज की इस रात में हम और आप दोनों मिलकर गढ़ेंगे वापस उन्हीं किस्सों को जो है आपके दिलों के हिस्से, वो जो है आपकी जिंदगी के किस्से। रजनीगंधा 100.4 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रजा के साथ।

वैसे सच है ये बात, जब जब बाहर कभी ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं ना, तो अकेले नहीं आते, अपने साथ साथ किसी खास की याद भी ले आते हैं। वो जो आपके दिल के बेहद करीब हो, वो जो आपके दिल में बसने वाले उन अरमानों के करीब हो जिसे आप प्यार, इश्क

वैसे अगर गौर से देखें ना तो यकीन ये बात बिल्कुल सही लगती है कि जब आप किसी की मोहब्बत में होते हैं तो आपको आपके आसपास सब कुछ बस ऐसे ही खुशनुमा सा लगता है। ठंडी हवा के झोंके जैसे आपको छूते हुए से गुजरते हैं और जैसे किसी के प्यार की सदाएं कानों में आकर कुछ प्यार से कहती गाती गुनगुनाती जाती हैं, ठीक जैसे रजनीगंधा के सदाबहार नगमे आपके कानों तक गुजरते हैं। रजनीगंधा यानी रात की रानी, एक ऐसा फूल जो सूरज ढलने के बाद अपनी खुशबू को बिखेरता है, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया के सो जाने के बाद किसी की यादें हमारे दिल के बंद कमरों को महका देती हैं। बहुत बार आपने भी महसूस किया होगा जरूर इस बात को। तो अगर आपके सिरहाने किसी की याद में आज कोई फूल इस वक्त भी रखा हुआ है ना, जो रजनीगंधा की महक से भरा हुआ हो, या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसे बंद आंखों से आप छूना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी याद जो आपके दिल के किसी कोने में आज भी बसी हो, या फिर कोई ऐसा इत्तफाक जिसे आप बार बार अपनी जिंदगी में जीना चाहते हो, जिसे आप बार बार वापस दिल के किसी कोने का हिस्सा बनाना चाहते हो, अगर हाँ तो आज की हसीन रात सिर्फ और सिर्फ आपके और आपकी उसी मोहब्बत के नाम, वो मोहब्बत जिसके किस्से जिसके फसाने आप हर रात 10 बजते ही रजनीगंधा के इस सफर में साझा करते हैं, सुनते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह आपके रहने की दरकार को साथ लिए रजनीगंधा के सफर को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे और इस उम्मीद में कि हाँ अगर दिल के किसी कोने में ये तमाम सारी यादें हैं जो आपके दिल का हिस्सा हैं, तो बस ये वक्त ये सफर ये लम्हा ये घड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: अच्छा, कभी आपने इस काले का जो का रंग है ना, इसको गौर किया है ना? कहते हैं कभी कभी बेहद खूबसूरत लगता है जब आंखों में अगर काजल बनकर बस जाए तो क्या ही कहने, या फिर कभी अगर होठों के पास काला तिल बनकर आ जाए तो क्या ही कहने। बाहर जाकर देखिए जरा, रात ने भी अपना काला लिबास पहन लिया है। वो रात जो हर रात हर रोज चांद का हाथ लेकर, चांद का साथ लेकर आसमान में धीरे धीरे बढ़ती है मोहब्बत के किस्म के साथ। और वो जो उसमें सफेद सफेद सितारे जड़े हुए ना, चांद ने उस पर अपनी चांदनी की जैसे कढ़ाई कर दी है। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका अभी अभी आया होगा अंदर, एक रूहानी महक के साथ। हाँ, रजनीगंधा ही है ये, वो रजनीगंधा जो एक ऐसा फूल जो दुनिया के शोर में अपनी खुशबू छुपा कर रखता है और फिर जैसे ही रात का सन्नाटा गहराता है चुपके से महक उठता है। मोहब्बत भी तो कुछ ऐसी होती है ना, दुनिया के सामने खामोश और तन्हाई में सबसे ज्यादा असरदार, एक दूसरे से खामोशी से बातें करती हुई, पूछती हुई, ये कहती हुई कि तुम होते तो ऐसा होता या तुम होती तो वैसा होता। हाँ, खामोश मोहब्बत का असर यकीनन कुछ ऐसा ही होता है। रात के 10:26 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रजा के साथ।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

वैसे ही बात बिल्कुल सच भी है कि आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं पर अपनी धड़कनों से नहीं। वो धड़कनें जो ये कहना चाहती हैं कि आप किसी की मोहब्बत में हैं, जो बताना चाहती हैं कि आप किसी की मोहब्बत में हैं, लेकिन जब बात दुनिया, समाज, रीति रिवाज की आती है तो कई बार डर जाती हैं। लेकिन फिर वही बात कि अपनी धड़कनों से आप लड़ नहीं सकते। रात के 10 बजते ही जब सदाबहार गीतों का दौर शुरू होता है तो ये धड़कनें जैसे खुद से बातें करने लगती हैं। दूर कहीं रेडियो पर बजते ये गाने कई बार दिल के बेहद करीब से मालूम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं आपके आसपास कहीं कोई सुरीला राग बज रहा हो। न जाने कितने हसीन और यादगार लम्हान भी साथ ले आते हैं अपने साथ ये गाने, जब आप कभी इन्हें सुनते हैं तो। कई बार महसूस भी किया होगा आपने कि ये गाने अक्सर आपको कभी किसी बारिश का जिक्र याद दिलाते हैं, तो कभी चांदनी रात का जिक्र, कभी कहीं कोई हंसी शाम है इसमें, तो कभी कहीं किसी अजनबी से मुलाकात, वो मुलाकात जो किसी रोज इत्तफाकन होती है और उसके बाद जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। तो अगर कभी आपके साथ भी किसी दौर में ऐसा हुआ है तो हाँ, आज का रजनीगंधा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसे आप इस वक्त सुन रहे हैं आपकी दोस्त आपके रचा के साथ आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।
1: हाँ।

तो इसे ही तो खूबसूरत इत्तेफाक कहते हैं ना, कभी किसी से दो पल की मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन के साथ चली आती है। एक ऐसा साथ जो वाकई आपको बेहद सुकून देता है। सच है बात ही कि जहां एक तरफ किसी की मोहब्बत दिन की कड़ी तपती धूप में रात की ठंडी चांदनी का एहसास कराती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये

बात भी उतनी ही सच है कि दिन की रोशनी में हम चाहे जितने मसरूफ क्यों ना रहें, लेकिन ये जो रात का सन्नाटा है ना, इससे हम बच नहीं पाते। ये हमसे हमारी बातें करता है और फिर हमें उस चेहरे के करीब ले जाता है जिससे दूर रहकर भी हम दूर नहीं हो पाते। उस एहसास के करीब ले जाता है जहां कोई भूला सा ख्वाब सच होकर मुस्कुराता हुआ मालूम होता है। ठीक इस गीत की तरह जो ये कहता है कि तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता है, तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता है, तुम्हारी याद के साए मेरे दिल में रहते हैं।

प्यार की पहली कशिश भी कितनी अजीब होती है ना, जब किसी का चेहरा सामने आए बिना ही धड़कनें तेज हो जाती हैं, जब मोबाइल की हर रिंगटोन पर लगता है कि शायद उसका ही कॉल होगा।

0: भी कभी दरवाजे की घंटी बजती है तब हर बार यही लगता है कि शायद उसके नाम का खत होगा। जब भी कभी किसी गाने की धुन बजती है तो जहन में सिर्फ और सिर्फ वही याद आता है। आंखों के सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं आके तैर जाता है। तो अगर आप भी इस वक्त किसी की यादों की खुशबू में डूबे हैं तो आज की ये शाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। खो जाइए उन यादों में और सुनिए नगमा जो शायद आपकी ही दास्तां कहता हो, जो कहीं आपके दिल की ही बात को आप तक पहुंचाता हो।
1: अंकल ये कौन गा रहा है?
2: हमारा एक कैदी है अमर।

लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक पाक जज्बा है, वो जज्बा जिसे दिल की गहराइयों से, रूह की गहराइयों से महसूस किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आजकल के दौर को देखें ना, तो आजकल के राइट स्वाइप जमाने में हम शायद वो पुरानी वाली मोहब्बत कहीं भूल से गए हैं। वो चिट्ठी लिखना, वो घंटों इंतजार करना, वो नजरें मिलते ही पलकों का झुक जाना, शायद आज के दौर में नहीं मिलता देखने को, क्योंकि मोहब्बत को हमने डिजिटल जो बना दिया है। पर सच तो ये है कि मोहब्बत डिजिटल नहीं होती, मोहब्बत तो एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। और अगर आपके पास है ऐसा कोई एहसास जिसे देखकर आपकी सारी थकान मिट जाती हो, जिसकी मुस्कान आपके होठों पर भी एक बड़ी सी मुस्कान ले आती हो, या फिर किसी के रोने से आपका दिल भर आता हो, तो मुबारक हो आपको, आपने इश्क का वो मकाम पा लिया है जिसे लोग किताबों में ढूंढते हैं। कहते हैं जिसकी इबारत दिल की कलम को फूलों के रंग की स्याही में डुबो कर लिखी जाती है।

पता है कभी कभी सच में लगता है कि वाकई बहुत खुशकिस्मत है वो जिनकी जिंदगी में मोहब्बत का एहसास समाता है, जहाँ दो दिल एक जान हो जाते हैं, जहाँ अपना पराया जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ होता है तो बस मोहब्बत, और उस मोहब्बत का वो एहसास जो दिलों को जोड़ देता है, बांध देता है उन्हें एक बंधन में। उस बंधन में नहीं जहाँ आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, बल्कि उस बंधन में जो आपको आजादी का भाव देता है। क्योंकि कहते हैं सच्चा प्रेम बंधन नहीं होता, बल्कि एक आजादी है, खुद को बेहतर बनाने की आजादी, जहां मैं और तुम का भेद नहीं बल्कि हम का एहसास साथ चलता है। ठीक वैसे जैसे आपके होने से हमारे होने से वो एहसास एक साथ चलता है। तो इस एहसास को हम आगे भी आपके साथ यूं ही जिएंगे। रात के 10:57 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा के फर्स्ट हाफ को यहीं पर वाइंड अप करने की है बारी। रात कहीं मत जाइए। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश इल्तिजा कि रहना है आपको इस सफर को पूरा करने के लिए उस दौर तक जहां रजनीगंधा का ये सफर रहेगा आपके साथ। फिलहाल मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी रचा रजनीगंधा के इस खूबसूरत सफर में। सुनते रहिए, जुड़े रहिए।